0: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज़ रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड। जॉइन मी गार्गी रावत एज आई ट्रैक ऑल द डेवलपमेंट्स एज दे ब्रेक। लाइव फ्रॉम द NDTV न्यूज़ रूम, वीकडेज एट 4 PM।
2: As India's mobility story is racing into a new future, it's in search for a new fuel map. Electric, ethanol, hydrogen, CNG, hybrid. What will power India next?

0: denied the allegations. BJP leader Ravinder Raina has dismissed the claims as baseless and misleading and even challenged Umar Abdullah to make the evidence public.
1: अगर मेरे जम्मू के एक एमएलए ने मुझे कमरे में आके ये बात नहीं कही, सुप्रीम कोर्ट का बीजेपी का एक अहदेदार, सुप्रीम कोर्ट का वकील, बीजेपी का अहदेदार मेरे एक जम्मू के एमएलए को बंद कमरे में कहता है, हम 20 से 30 करोड़ एक मिनिस्ट्री और रियासत का दर्जा, आप हमारे साथ चलो।
2: उमर साहब उन लीडरों में से लीडर नहीं जो झूठ मारते हैं। उमर साहब जो बात कहते हैं पहले उसके पूरा फैक्ट्स तक जाते हैं, फिर उमर साहब बयान देते हैं। अब बीजेपी पे हमने ये सवाल खड़ा किया है तो कहीं ना कहीं कोई सच्चाई तो है। हाँ, अब चोर खुद थोड़ा कहेगा मैं चोरी करता हूँ, तो अब चोर मचाए शोर, बीजेपी का हाल वही है, तो इसलिए अब वो शोर मचा रहे हैं तो मचाने दीजिए। लेकिन इतनी जरूर है कि आज बीजेपी को उमर साहब ने, जम्मू कश्मीर की बीजेपी को उमर साहब ने एक्सपोज कर दिया।
3: आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने एक बेहद ही गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय बयान दिया है, जब उन्होंने बगैर किसी तथ्य के आधार पर यह अनर्गल आरोप लगाने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई ने इस वक्तव्य की तीव्र निंदा करते हुए उनसे सीधे सीधे कहा है कि या तो वो सबूत प्रस्तुत करें अथवा वो माफी मांगे।
4: बहुत ही भ्रमित करने वाला बयान कि उनकी सरकार को गिराने की साजिश हो रही है और 20 करोड़ 30 करोड़ का इल्ज़ाम जो उन्होंने लगाया है ये पूरी तरह से बेबुनियाद है, आधारहीन, तथ्यहीन है, ये मिसलीडिंग है और बेसलेस एलिगेशंस हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो ज़बरदस्त हंगामा उठा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्रियों के खिलाफ, शायद उस भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने की ये कोशिश है। उमर अब्दुल्ला साहब का ये बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सत्य से बहुत दूर है, भ्रमित करने वाला है।
0: Let's take you through more updates coming in at this hour. Let's take you to Punjab now. Now, rift in Punjab Congress has intensified after the Chandi faction meet yesterday. The Charanjit Singh Chandi faction met the Punjab Congress in charge Bhupesh Baghel, demanding the removal of current Punjab LOP Raja Vade. Now, Chandi demonstrated his strength at the meeting. 12 MLAs and 82 former candidates were present in this meeting. Bhupesh Baghel assured that the message would be conveyed to the party high command and also told media that there is no one that's upset and that there's no infighting in the Punjab Congress. The Congress member Parliament Sukhjinder Singh Randhawa said that the party must reverse its decision and sometimes and they do not want to compromise leader. Meanwhile, Raja Varing told the media that he and Randhawa will sort out their problems very soon.
5: पार्टी के हाई कमान का फैसला है, उस पे किसी का एतराज नहीं है, सब हाई कमान के साथ है। कुछ बातें हैं जिसको हमारे साथियों ने रखा और मैंने सभी साथियों से को विश्वास दिलाया कि जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होने के नाते मैं सभी के हितों का ध्यान रखूंगा। कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि उनके ऊपर किसी बड़े नेता को बर्दाश्त नहीं है, लेकिन यदि वो जीतने के लायक है तो निश्चित रूप से टिकट मिलेगी, ये मैंने विश्वास दिलाया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, कुछ बातें साथियों ने रखी है, उसको मैं हाईकमान तक पहुंचा दूंगा।
6: देखो, सारिया ने अपनी गल कह ली है और उस गल दे विचों बघेल साहब ने सारिया की गल सुन ली है। देखो, हमेशा मैं भी एक स्टेट दे विच सैकटरी हैगा, सानू सारे ही कहिंदे आ, पर असी अप्रोप्रिएट लैवल ते जाके वो कन्वे करदे कि आ प्रॉब्लम्स हैगी आ, इहदा सल्यूशन जिहड़ा आ इदां दा सल्यूशन हैगा, और मेरा ख्याल है कि वह सारिया चीज़ां जिहड़ियां कन्वे करनगे।
0: And that was the interview, a very short break. More news and updates on the other side. Stay with us on the broadcast.

0: insulting a woman's dignity and unlawfully entering a residence. The woman claimed that despite her repeated refusal, the agent tried to enter her house on the pretext of using her washroom. But according to her, the delivery agent, he forced his way in. Moments later, he came out of the washroom and he allegedly exposed his private parts to her, leaving her in complete and utter shock. Let's listen in to her ordeal.
1: पुलिस स्टेशन जाऊंगी और इसके खिलाफ में पुलिस कंप्लेंट करूंगी और फ्लिपकार्ट मिंत्रा रिक्वेस्ट हूँ कि किस टाइप के डिलीवरी बॉय आप लोग हायर करते हो, क्या आप लोग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं करते हो? पार्सल लेके पेमेंट कर रही थी, मेरे को बोलता मैम मेरे को वॉशरूम जाना है, मैं बोली नहीं भैया मैं अलाउड नहीं करूंगी, सॉरी, बहुत फोर्स करने लगे, नहीं मैम प्लीज प्लीज प्लीज मेरे को जाना है, बहुत इमरजेंसी, थोड़ा करना और एक दिन मिक्स करके बात करना, मैं बोली नो सर मैं आपको नहीं अलाउ करूंगी, आई एम सॉरी, बहुत फोर्स किया तो बोली नहीं सर मैं अकेले रहती हूँ, मेरे घर में फैमिली भी नहीं है, अभी मैं आपको नहीं अलाउ करूंगी, मैं किसी को नहीं अलाउ करती हूँ, अभी उनका सिचुएशन अच्छा नहीं चल रहा है, आई एम सॉरी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इतना फोर्स किया मैं नहीं नहीं बोली, उसके बाद मैं दरवाजे के पास खड़ी थी, अंदर शूज निकाल के फोर्सफुली वॉशरूम चले गया, मैं उसको मना नहीं करी, फोर्सफुली चले गया।
0: Let's get you an update in the Ayodhya Ram Temple theft case. According to sources, the interrogation has revealed that the accused carried out the theft in a highly organized manner. The roles of all the accused were decided before going to work each day. The entire planning was done in the morning over the phone, deciding who would take out the notes, who would hide them, and who would stand in front of the CCTV camera and block the view so that the theft could not be recorded. CCTV footage obtained during the investigation has also confirmed the confessions of the accused. The footage shows Avinash and Manish repeatedly straightening the notes and hiding them under their clothes whenever they got the opportunity. Himanshu, my colleague, joining us in order to get us details. Himanshu, take us through the roles that these people played and the confessions that have been made so far.
2: Well, Divya, the investigators have found crucial evidence of how the methodology of this theft was actually, and the role that was assigned to different accused. This is a very crucial piece of evidence that has come out in the investigation so far. Yes. Sources say, and there are a few points I wish to put before you. One, that they have found CCTV footage which reveals the methodology and how every day in the morning, the accused used to talk to each other on phone, and specific roles were assigned to different accused in terms of who will collect the note, who will hide it, who will straighten it, and where it will be transported out of the complex. In fact, sources say that all planning, as I said, was done on phone, who would take out the note, who would hide it, who would stand in front of the CCTV, and Avinash and Manish, two of the key accused, have been caught on CCTV footage, actually planning and executing the entire theft case. So I think in this context, it is a very crucial piece of evidence, which is video evidence, I would say, which clearly confirms the role of different accused so far. And this will be, of course, a very crucial piece of evidence against all the accused in the Ram Mandir theft case. Divya.
0: Right. Thank you so much for getting us those details. Big news coming in, and this is in regard to the former Chief Minister of Delhi, Arvind Kejriwal, performing a puja. Now, the BJP is training guns at him and firing up the former Chief Minister, calling him a Chunavi Hindu. That is the jibe that they're using in order to attack the ex-Chief Minister of Delhi, saying whenever elections are around the corner, whenever elections are coming up, is when Arvind Kejriwal's actions prove that he is a Hindu, a Chunavi one at that, a selective Hindu at best. The BJP, they're saying that Arvind Kejriwal and his entire gang are trying to project themselves as Hindus only because there are elections coming up in the state of Punjab. And that is the allegation that's being made by the BJP. We have my colleague joining us in order to get us. Kanika will be with us. But first, let's listen into the allegations being made by the BJP.
3: Arvind Kejriwal Chunavi Hindu hai. And we are not saying this for the first time. When the elections come, अरविंद केजरीवाल के जो कर्म होते हैं वो प्रूफ कर देते हैं कि वो चुनावी हिंदू है। आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और एक कैंपेन चलाने की बात कर रहे हैं कि हम लोग जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसको लेके हम सिग्नेचर कैंपेन करेंगे। ये सब दिखाता है कि चूंकि वहां उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं, इसलिए आज अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा गैंग चुनावी हिंदू बनकर हिंदू बनने का एक सॉन्ग रच रहा है।
4: पहली बार नहीं करा रहे, हम तो हर मंगलवार को पार्टी ऑफिस उत्तरकांड कराते थे, लेकिन आज मुझे लग रहा है सवाल आप इसलिए पूछ रहे हैं कि सनातन धर्म के चाड़ो रोड के जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग धर्म हमारे राम मंदिर में लूटने की कोशिश कर रहे हैं, लूटा है उसको प्रभु श्री राम ने एक्सपोज किया है। तो अब ये समय आ गया है कि ऐसे राक्षस जो सनातन धर्म का चादर का सनातनी बन रहे थे उससे हमारा धर्म बचे। आज हम ये पूजा अर्चना भी करेंगे कि ऐसे लोगों से जो हमारे धर्म का नुकसान कर रहे हैं, जो भगवान के श्री राम के मंदिर को नहीं छोड़ा वो हमारे धर्म को के खाक छोड़ेंगे। तो इसलिए ये सवाल बीजेपी के लोग खड़े कर रहे हैं। अब देखिए, अगर ये सनातनी होते तो उनको खुशी होती ना कि भाई सनातन धर्म और फैल रहा है, हर जगह प्रभु का नाम लिया जा रहा है, लेकिन नहीं, वो बिलबिला रहे हैं।
0: Right, we have Kanika, my colleague, with us. Kanika, of course, this is coming close on the heels of that announcement that's been made by the Aam Aadmi Party that signature campaign seeking strict punishment for the Ram Temple donation theft culprits is when the BJP decides to hit out at the Aam Aadmi Party.
5: देखिए, बिल्कुल इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है उसी जगह पे है जहाँ पर आम आदमी पार्टी ने सुंदरकांड का आयोजन करवाया है। राम मंदिर मुद्दे को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी को टारगेट कर रही है, उनके खिलाफ जो है लगातार आरोप लगा रही है। लेकिन इसी बीच में अरविंद केजरीवाल आपको दिखाई देंगे पिक्चरों में, सुंदरकांड का जो प्रोग्राम है वो इस वक्त यहाँ पे हो रहा है। अरविंद केजरीवाल, उनकी वाइफ सुनीता केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, तमाम जो आम आदमी पार्टी के वर्कर्स हैं वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो पिक्चर्स है वो यहाँ पे लगाई गई है, भगवान श्री राम और हनुमान की तस्वीरों के साथ अरविंद केजरीवाल की तस्वीर को यहाँ पे लगाया गया है। बड़े बड़े कटआउट और पोस्टर जो है वो यहाँ पे लगाए गए हैं। और बिल्कुल इस पूरे प्रोग्राम को लेकर बीजेपी लगातार बोल रही है कि अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू बन जाते हैं, जब जब चुनाव आते हैं उससे पहले अरविंद केजरीवाल अपने आप को हिंदू बनाने लगते हैं और इस तरह के कार्यक्रम अरेंज करते हैं। और बिल्कुल पंजाब के इलेक्शन से ठीक पहले जो है आज दिल्ली में रोहिणी में आम आदमी पार्टी ने सुंदरकांड कार्यक्रम का आयोजन किया है। लेकिन आप तस्वीरों में से किस तरह से तमाम जो कार्यकर्ता और जो लोग हैं वो यहाँ पे बुलाए गए हैं, और क्योंकि रोहिणी में ज़्यादातर जो है पंजाबी लोग भी रहते हैं इसीलिए इस लोकेशन को चूज़ किया गया है, और तमाम जो कार्यकर्ता हैं और आम लोग हैं उनको बुलाया गया है। लेकिन बिल्कुल इस पूरे मामले को लेकर लगातार बीजेपी जो है वो केजरीवाल को हमलावर है।
0: Right, that is Arvind Kejriwal coming under attack by the BJP for following Hindu rituals, calling him a Chunavi Hindu, a selective Hindu, only because elections are coming about in the state of Punjab. And here we have the news coming in from FIFA. It's Jude Bellingham, who was England's hero once more by scoring twice as the Sri Lions came from behind to end Norway's historic run and reach the World Cup semi-finals with a 2-1 win after extra time.
6: In a tight and tense encounter, Andreas Schjelderup gave Norway the lead in the 36th minute, Martin Odegaard providing the assist. Thomas Tuchel's side rode their luck in a quarter-final played in the fierce heat and humidity of Miami. Jude Bellingham equalised in the first half stoppage time. The Norwegian players protested about it, but the referee ruled it legal. Norway had a second goal controversially disallowed after a VAR review in the second half for a foul by Erling Haaland.
7: How we put Norway on the map, I think, is maybe one thing that touches me the most. I think with the role, with how good people we are, I think we're good people. I think that really touches me. And we put Norway on the map, and hopefully now we can establish something. When it comes to Euros, World Cups and everything, because our generation is amazing. And I also hope this gives motivation to young people back in Norway that it's possible. It's possible to to play at the biggest stage in the world with

या जिटाणी है जी, या भी पाड़ती है, मैं भी पाड़ती हूँ, सभी पाड़ते हैं। अब बच्चे परेशान, 4-5 दिन काम पे गए, 2 महीने हो गए, अभी 8 तारीख।

0: को लेके गया तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला था कि बच्चे के मुंह में पानी चल गया, और उस वजह से उन्होंने बोला कि इमरजेंसी में डिलीवरी करनी पड़ेगी। मैं 5 तारीख की मॉर्निंग को 4-4:30 बजे के आसपास उसकी तबीयत एकदम डाउन होने लग गई, बीपी एकदम लो हो गया और घबराहट से होने लग गई। पंखा हमने सारे पंखे वंखे सब वहाँ पे लगा दिए। डॉक्टर को कंपाउंडर को बोला तो उन्होंने बोला वेट करते करते सुबह 6-6:30 बजे डॉक्टर आया वहाँ पे। उन्होंने डायरेक्ट में बोला कि नीचे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर आईसीयू में शिफ्ट किया हमने उसको, उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार तक। तो उसके दूसरे दिन तो उन्होंने मृत्यु घोषित ही कर दिया उसको सुबह मॉर्निंग में 10 बजे 7 तारीख को। और लास्ट में आगे बताते हमें कि किडनी फेल हो रही है इनकी, ये हॉस्पिटल की लापरवाही है पक्का, हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही है।
1: आने के बाद फिर वो बाहर बैठा रहा मैं, मेरी मम्मी ने कहा कि भाई बहू ख़त्म है। मैंने कहा मैं देख कर आ रहा हूँ बहू कैसे ख़त्म है, कि नहीं ख़त्म हो तो मुझे डॉक्टरों की लापरवाही लग रही है। अब ना तो बच्चे के लिए कुछ है ना मेरे लिए कुछ है, 3 महीने से घर बैठा हूँ, मकान किराए का मेरे पास, नौकरी करता हूँ 3-3.5 हज़ार रुपये महीने की मजदूरी टाइप। अब यहाँ के जितने भी कर्मचारी थे वो संतुलन दे रहे हैं मेरे को, हाँ करेंगे हाँ करेंगे, कब करेंगे, मैं मर जाऊँगा या मेरा बच्चा मर जाएगा जब करेंगे।
2: हमारा तो इंसान गया है, इसमें दोषी कौन है? या कोई दवा कंपनी है, या कोई डॉक्टर्स हैं, या कोई सरकार है, या कोई उसके कंपनी से कोई पैसा खा के इसको चला रहे हैं सरकारी, इसमें कौन है इसका जिम्मेदार? उसमें कोई कार्रवाई नहीं है, दोषी हमारा इंसान गया है तो उसको दोषी तो मर्डर है। मेरे दो जनों का मर्डर हुआ है मैम। मेरा
3: हाई रिस्क प्रेगनेंसी था?
4: नहीं मैम, बिल्कुल जितनी भी नॉर्मल जाँचें थी सब नॉर्मल थी, शुरू से लेकर एंड तक हमने ट्रीटमेंट बराबर जाँचें कराई है। जब हम यहाँ आए थे बिल्कुल नॉर्मल थी, शाम को 4:30 बजे करीब डिलीवरी हुई थी। डिलीवरी के बाद ये बिल्कुल नॉर्मल निकली थी, फिर ब्लीडिंग हो गई तो स्टाफ ने ध्यान नहीं दिया, मम्मी ने फिर देखा, फिर इसको लेके आनंद फानंद में सुबह वहाँ लेकर गई ऑपरेशन थिएटर में। 4 दिन तक समथिंग ये वेंटिलेटर पर रही
3: किडनी का।
4: हाँ हमें भी नेक्स्ट डे न्यूज़ से ही पता लगा कि इनकी किडनियाँ फेल हो चुकी है सबकी, सब छूट गया। टैक्सी चलाता था मेरे पास, गाड़ी थी खुद की, वो बेच दी मैंने उसी टाइम, तब से 2 महीने से इन्हीं के साथ हूँ। हर तीसरे दिन तो डायलिसिस होती है।
3: कितनी बार डायलिसिस हो चुकी है?
4: मैम 24-25 तो हो ही होंगे।
5: Sources have alleged that there were issues with monitoring the urine output of the new mothers after delivery, a critical parameter that they stated was not tracked adequately in some cases at the Kota Medical College Hospital. It was flagged that there was poor tracking of blood pressure levels, ECG functions, hydration, liver and kidney function tests. Recommendations have also been made for better infection control mechanisms. The emergency operation theatre, where 6 of the deliveries took place, has now been shut and is being renovated. The labour room had a seepage. However, officials say bacteriological cultures from the OT showed no signs of contamination. In the aftermath of the Kota maternal deaths, drug controller officials also found that some oxytocin vials contained water instead of the drug. However, NDTV has come to know that doctors and investigators now believe oxytocin is unlikely to have directly been the cause of these deaths. Attention has shifted to other possible factors for the deaths. Sources say reports on surgical items, IV sets and IV cannulas are still awaited, while tests on samples of the used antibiotics and several other medicines have come clear. Fresh samples of medicines linked to patients developing such symptoms as shivering have also been sent for analysis. Some findings have already been submitted to the Health Ministry, but sources say investigators increasingly believe the tragedy may have been multifactorial, involving a combination of patient condition, medical consumables, environmental factors, as well as a variety of other factors. As the probe continues, there is still no clear answer. 2 doctors, including 1 contractual doctor, have been suspended.
6: उसके बाद मतलब मेरे को यूरिन नहीं आया, फिर 9 तारीख को फिर मुझे सवेरे यहाँ लेकर आए थे 7 बजे के आसपास, फिर उसके बाद का फिर मुझे कुछ भी याद नहीं है। मेरा पहले का भी बच्चा नॉर्मल ही है,
3: कुछ नहीं
6: कुछ भी इशू नहीं था मेरा। तो
3: डॉक्टर ने क्या बोला कैसे ये
6: वहाँ पर, तो क्या नाम से ऐसा कुछ हुआ नहीं।

0: Instead, doctors believe the complications may have been multifactorial, involving a combination of underlying illnesses like diabetes, severe anemia, dehydration and poor nutrition, as well as environmental factors such as extreme heat. Investigators say a final conclusion can only be drawn once all the pending reports are received.
1: Clear gaya jad bate main bharti kara di jad ke bachcho to huna lo jad me ek theek raat bhar bin bharti ra ke subah 9 baje bhi ar patient ho ar patient ho jad babu yo jad me sab khush hua hai baad me kai main gayi me asar dakhane jad me kyu kai yo ke bhai ka apne shikcha dodi ke man sardi lage delivery hu 2-3 ghanta baad
2: delivery ke baad bachche se mili
1: thi ha bachche mili maau mili ke papa ne bulo jan me papa ne phone kari me kaho ज़्यादा दिक्कत होगी जब मैं खाई हो क्या ये खत्म होने वाली है जब मैं एकदम रही खाई हो
2: नॉर्मल डिलीवरी थी
3: नॉर्मल
2: डिलीवरी के बाद सब कुछ नॉर्मल था
3: हाँ
2: फिर आपको कहाँ लेके गए
3: पेशेंट रूम में
2: वहाँ पे क्या हुआ
3: वहाँ पता नहीं बेहोश करते था पता नहीं चला हुआ
4: 7 घंटे तक बिल्कुल नॉर्मल थी कोई दिक्कत नहीं थी डिलीवरी होने के बाद में भी फिर हमें बोला गया ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है इनको ऑपरेशन में लेके जाना पड़ेगा उसके बाद में वहाँ से लेके आए बाहर निकाले फिर बोले वहाँ लेके जाओ ये फाइल लेके जाओ आप वहाँ डॉक्टर से हम दे रहे हैं वहाँ पे जाके दिखा के आओ फाइल दिखा के आए हम वहाँ पे तो वहाँ लेके गए तो उन्होंने बोला कि भाई पहले तो वार्ड का बोला हमें वार्ड में लेके जाएंगे उन्होंने बोला नहीं हम सीधा आईसीयू में लेके जाएंगे इनको
5: क्या ऑपरेशन हो बच्चे ने दिल भाई हाथ में मिस्टेक बन गई उल्टे पर सर रहा था उल्टे सदर बचपन काट दिया ऊपर लवाड़ ऊपर लवाड़ पूरे दिन उल्टे हुए रात रहा 10 बजे ले गए ट्रक में सेटर डायलिसिस कराया रात 2 बजे पाछा है
6: गणित को ने शुगर थे
2: शुगर है अच्छा और ये बस जब वो पेट से है होती है तभी शुगर है कि ऐसे भी शुगर है
6: शुगर है
2: थोड़ी बहुत शुगर है
6: फिर तबीयत डिलीवरी हुई बाद हुई पहले सही है डिलीवरी हुई जिन ऑपरेशन डिलीवरी हुई सही 8 तारीख डिलीवरी हुई 21 तारीख बाद में खराब गलत
7: आते हैं तो खुशी के लिए लेकिन जाते हैं तो रो के निकलते हैं क्या अभी 26 दिन हो गए
8: द पेशेंट्स हु डाइड दे वर पेशेंट्स हुज फाइल रिपोर्ट्स यू सी वर कोमॉर्बिड यू नो लाइक इन जोधपुर जॉन्डिस हाई डायबिटीज हाई ब्लड शुगर आई मीन योर हाइपरटेंशन एम्स टीम केम दे डिड अ फुल इंस्पेक्शन एंड दे डिड टेल अस दैट यू हैव टू tighten your SOPs. In Bikaner, one lady had gone to Nagaur, then she got into complications and she got onto ventilator. From ventilator, she came down to Bikaner. She was even more sick. And so, again in Bikaner, she was put onto ventilator. So, all these ladies who came there were already in a critical state. They never came as normal deliveries.
0: For many in Rajasthan, including senior doctors, the events unfolding today bring back memories of 2011, when contaminated IV fluids at a government hospital in Jodhpur claimed the lives of 18 women. That tragedy exposed deep cracks in the public healthcare system and prompted promises of reform. 15 years later, another series of unexplained maternal complications is under investigation. Sources say investigators are also examining the IV fluids administered to these women, though the reports are still awaited. Whether history is repeating itself remains unclear. Until those answers come, one question continues to haunt Rajasthan. Were the lessons of 2011 ever truly learned?
9: वो इंफेक्शन हो गया था शरीर के अंदर वो ब्लीडिंग और यूरिन की प्रॉब्लम हो गई थी
2: अच्छा
9: यूरिन नहीं आ रहा था
2: अच्छा
9: तो फिर वो खून की कमी ब्लेडनेस गिर गए पीलिया वगैरह वो सब कुछ हुआ है किडनी लिवर पे असर ये तो कोई जहाँ पता चला है कि कोई दवाई वगैरह ऐसी हुई आई होगी जिससे हो
10: यहाँ आने के बाद इलाज अच्छा हुआ तो अब मेरा थोड़ा उम्मीद जागी है बहुत परेशानी हुई हमको और हर चीज़ के लिए हमें वहाँ पे बहुत वेटिंग करना पड़ता था रिपोर्ट के जरिए, और हो सके तो दूसरे दिन मिलती शाम को भी। बहुत परेशानियाँ थी, हाँ बच्चा भी है उनका भी बहुत परेशानी का है अभी, कौन उनकी देख रेख, माँ तो यहाँ पे है उनकी।
11: MDM मेडिकल ICU में रेफ़र करा दिया गया, और जो बाकी 6 पेशेंट हमारे यहाँ थे उनको एहतियात तौर पे प्रिकॉशनरी तौर पे हायर एंटीबायोटिक्स पे ले लिया गया। 20 जून को जो ये सैंपल्स लिए थे OT के, गायनी OT के, वो सभी नॉर्मल हैं, और पेशेंट्स के भी 20 जून को सैंपल ले लिए गए थे। उसी दिन प्रॉम्प्टली सभी पेशेंट्स के वेजाइनल स्वैब, उनका ब्लड कल्चर के लिए ब्लड लिया था, यूरिन लिया था, वो रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आई हैं।
12: बहुत सारी चीज़ें हैं जो ड्रग्स है, IV फ्लूड है, और इसके सिवाय जो इसमें पेशेंट में जितने भी इंजेक्शन वगैरह जो भी काम लिए हैं वो सारे सील कर लिए, सस्पेक्शन है उन पे। ये IV फ्लूड जो हमने उस दिन काम लिया वो एक नया बैच ही था, उस दिन ही खोला था, नए बैच की हमने IV फ्लूड काम लिया था, बाकी मेडिसिन तो रूटीन काम ले ही रहे थे, पहले से काम ले रहे थे।
13: 2 घंटे बाद तबीयत खराब हो गई,
2: 2 घंटे बाद क्या होने लगी,
13: ब्लीडिंग हो गई थी, दूसरे दिन फिर सांस की तकलीफ हो गई थी, ऑक्सीजन लगाया था,
2: ब्लड चढ़ा था।
13: रात को उसी दिन
14: वो ऑपरेशन किया था, उसके बाद तो सही बता रहे थे, फिर अचानक से वार्ड में पता नहीं क्या हुआ उनको, तो नॉर्मल कुछ हुआ था, BP डाउन हो गई थी वगैरह, और बाकी वाले को है जो किसी के ब्लीडिंग हो रही थी, फिर एक के होने शुरू हुए, दूसरे के हो गई, दूसरे के तीसरे के होगी।
15: टू नो वॉट कैन बी द पॉसिबल और एग्जैक्ट कॉज ऑफ दीज टाइप्स ऑफ हैपनिंग्स इन दीज patients who has been clustered on that particular day, it is a little premature to say, because we have taken the samples of most of these drugs and surgical items and we have sent it for the evaluation. Usi cheez ko humko investigate karna hai ki is tarah ke happenings mein humko ye lagta hai ki koi cheez aisi cheez gayi hai jisko बहुत प्रीफॉर्म्ड फॉर्म में गई है, जिससे हमको तो उसको टेस्ट करने के लिए जब तक हमारे पास में जब टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं आ जाती तो उसको हम नहीं कह सकते, पर हमें इन चीज़ों का जब तक रिपोर्ट नहीं आती तो हमें सस्पिशन रहता है।
8: कैन सी द मेडिकल रिकॉर्ड एंड द मेडिकल रिकॉर्ड इज ओनली हैंडेड ओवर वंस यू आर डिस्चार्ज्ड, सो व्हेन दे आर डिस्चार्ज्ड होपफुली गॉड विलिंग दे विल बी डिस्चार्ज्ड, दे आर रिकवरिंग ऑलराइट, मेडिकल रिकॉर्ड्स विल बी गिवन। But if they want to access the medical record, there's nothing hidden about it. There's no secret about it, about the medical record. They can be shown immediately. AIIMS team came, they did a full inspection, and they did tell us that you have to tighten your SOPs. They have told us certain SOP measures, which Pan Rajasthan, we are putting SOPs to improve. You know, the government is giving everything free. We are spending so many thousands of rupees each day, you know, trying to give them the best care and try to make them recovery. The government is doing their best for them.
0: These cases raise serious questions on Rajasthan's healthcare system. Families are demanding answers. New mothers are forced to undergo repeated dialysis instead of holding their newborn babies. As for some newborns, they will now have to continue their lives without their mothers. The question no longer is on whether something went wrong, but is on how this all transpired. With camera person Ashwini Mehra, this is Bismi Taskin for NDTV.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: The Shiv Sena Shinde faction corporator is seen assaulting a female doctor and nurses at a hospital in Dombivli.
5: The thug you see is Shinde Sena corporator Ramesh Mhatre of Dombivli. Deputy Chief Minister Eknath Shinde, I have a direct question for you tonight. Will your government immediately arrest this rowdy Ramesh Mhatre?
6: We learned that the action has been taken against the thug neta that we see on our screens right now. FIR has been registered against this man.
7: And joining me live from Mumbai is Ramesh Mhatre. Kya aapko zara bhi sharam nahi aati hai? Aapko kisne haq diya haath uthane ka?
8: Humko haq हमारे पार्टी के बालासाहेब ठाकरे ने दिया। जहाँ भी अन्याय हो,
7: आप कॉपरेटर हो या गुंडे हो सर, नेशनल टीवी पर हैं आप, क्या आप माफी मांगेंगे कि आप
8: अगर हमारे कॉर्पोरेशन में एक पेशेंट के लिए, पेशेंट को इलाज करने के लिए अगर ऐसा हमको करना पड़ता है, उसका हमको अफसोस है।
7: इसका मतलब कि आगे जाके भी अगर अगर अगर अगर चाहे तो ऐसे ही करेंगे। क्या आप उनसे माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे?
8: प्रशिक्षण हम हमारे
7: नहीं मांगेंगे
8: सर।
9: Had it not been for NDTV's coverage, none of this would have happened. And today, 9 hours after I spent 26 minutes questioning him, Ramesh Mhatre, co-operator of the ruling Shinde Sena, has finally been arrested.
10: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day. India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and

0: We're starting this edition with the breaking news that's coming in. We learned that there has been a fresh war of words that's erupted between the BJP and the Aam Aadmi Party. This is after Kejriwal performed a puja. The BJP then trained guns on him and called him a Chunavi Hindu. That means an opportunist and a Hindu opportunist at times when it comes to his need. Now, the jibe at the ex-Delhi Chief Minister Kejriwal has been taken by the BJP. The BJP has also said that whenever elections are around the corner, it is Arvind Kejriwal's action to prove that he is a Chunavi Hindu. The BJP has also said that Arvind Kejriwal and his entire gang are trying to protect themselves as Hindus. Here is a reaction that's coming in from the BJP MLA Harish Khurana on say.
1: Arvind Kejriwal चुनावी हिंदू हैं और ये हम पहली बार नहीं बोल रहे. जब जब चुनाव आते हैं अरविंद केजरीवाल के जो कर्म होते हैं वो प्रूफ कर देते हैं कि वो चुनावी हिंदू हैं. आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और एक कैंपेन चलाने की बात कर रहे हैं कि हम लोग जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसको लेके हम सिग्नेचर कैंपेन करेंगे. ये सब दिखाता है कि चूंकि वहां उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं इसलिए आज अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा गैंग चुनावी हिंदू बनकर हिंदू बनने का एक स्वांग रच रहा है.
0: My colleague Kanika is joining me live from the national capital. Kanika, this is a fresh war of words, of course, that's been erupted between the BJP and the Aam Aadmi Party. Talk to us about the context that came in. Where were Arvind Kejriwal at this point in time where he was seen offering prayers and the reaction that came after from the BJP? Also tell us if the Aam Aadmi Party has reacted to those comments that have come in.
2: देखिए बिल्कुल, जिस तरह से राम मंदिर का चुनावी घोटाला सामने निकल के आया है और जांच हो रही है उसको लेकर जो है आम आदमी पार्टी जो है लगातार जो है वो बीजेपी पे हमलावर है. और इसी कड़ी में आज जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की ओर से सुंदरकांड कार्यक्रम का आयोजन किया गया जो कि रोहिणी में हुआ था, जहाँ पर अरविंद केजरीवाल, उनकी वाइफ सुनीता केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और तमाम जो आम आदमी पार्टी के वर्कर्स और वहाँ के जो लोकल रेसिडेंट थे वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे. और इसी को लेकर जो है अब बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को चुनावी हिंदू के तौर पर बता रही है, क्योंकि जब जब देखा है कि जब जब चुनाव आते हैं अरविंद केजरीवाल कई बार आपको मंदिरों में जाते हुए दिखाई देंगे, कई बार इस तरह के कार्यक्रम करते हुए दिखाई देंगे. लेकिन इस बार जब सुंदरकांड का कार्यक्रम आम आदमी पार्टी की ओर से किया जा रहा है तो बीजेपी लगातार जो है वो आम आदमी पार्टी पे अटैकिंग मोड पे है और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू के तौर पर बताती हुई दिखाई दे रही है. साफ तौर पर बीजेपी हरीश खुराना हो, तमाम नेता हो, वो लगातार ये बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इसीलिए इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं क्योंकि यूपी का चुनाव है और उससे पहले पंजाब का इलेक्शन है. कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू बन के काम कर रहे हैं. लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि लगातार वो राम भक्तों के मुद्दे को उठा रही है क्योंकि जिस तरह से राम मंदिर में एक बड़ा घोटाला, एक बड़ा करप्शन हुआ है उस मामले को उठाते हुए वो राम मंदिर के इशू को अरेज कर रही है और तमाम जो वोटर्स हैं उन तक इस मैसेज को पहुंचाने की कोशिश कर रही है. तो कहीं ना कहीं अगर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में देखा जाए तो अब इस पूरे मामले को लेकर जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो देखने को मिल रहा है. तमाम जो लोग हैं वो एलिगेशन भी लगा रहे हैं लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो लगातार जो है राम मंदिर के मुद्दे को उठा रही है क्योंकि वाकई राम मंदिर में करप्शन हुआ है और इसीलिए वो इस संदेश के साथ, इस मैसेज के साथ आगे बढ़ना चाहती है. फिलहाल पूरे मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा अनाउंसमेंट भी किया है.
0: बिल्कुल कानिका, जैसे आप बोल रही थी हमें कि दिस इज लेडीज एंड जेंटलमैन अ फॉल आउट ऑफ द राम टेम्पल थेफ्ट प्रोब. केजरीवाल गोइंग ऑल आउट देयर ऑफरिंग प्रेयर्स, द बीजेपी कॉलिंग हिम अ चुनावी हिंदू, द पॉलिटिक्स इज कंटिन्यूइंग ओवर द सेम. And moving on to the other stories that we're tracking, this one is from Punjab, where the Congress versus Congress battle is intensifying. The rift in Punjab Congress has intensified after the Channi faction met yesterday. Now, the Channi faction met the Punjab Congress in charge, Bhupesh Baghel, demanding the removal of the current Punjab leader of opposition, Raja Waring. Now, Channi has demonstrated his strength at the meeting. 12 MLAs and 82 former candidates were also present. This also came as a big show of strength that Channi was trying to put out there to send a message. Bhupesh Baghel had assured that the message would be conveyed to the party high command and has also told media that there were no one who's upset and that there is no infighting in the BJP Congress. However, the picture speaks for themselves. MP Randhawa has now said that the party must reverse its decision sometimes and

0: that they do not want a compromised leader. Meanwhile, Raja Waring told the media that Randhawa will sort out other problems soon. Here are a couple of reactions coming in.
1: देखो सारिया ने अपनी गल कह ली है और उस गल दे विचों बघेल साहब ने सारिया की गल सुन ली है। देखो हमेशा मैं भी एक स्टेट दे विच सैकटरी हैगा, सानू सारे ही कहिंदे आ पर असी अप्रोप्रिएट लैवल ते जाके वो कन्वे करदे कि आ प्रॉब्लम्स हैगी आ, इहदा सल्यूशन जिहड़ा आ इदां दा सल्यूशन हैगा और मेरा ख्याल है कि वो सारिया चीज़ां जिहड़ियां कन्वे करनगे।
2: हाई कमान का फैसला है, उस पे किसी का एतराज नहीं है, सब हाई कमान के साथ है। कुछ बातें हैं जिसको हमारे साथियों ने रखा और मैंने सभी साथियों से को विश्वास दिलाया कि जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होने के नाते मैं सभी के हितों का ध्यान रखूंगा। कोई व्यक्ति ये ना सोचे तो उनके ऊपर किसी बड़े नेता का गौरव हस्त नहीं है, लेकिन यदि वो जीतने के लायक है तो निश्चित रूप से टिकट मिलेगी, ये मैंने विश्वास दिलाया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, कुछ बातें साथियों ने रखी है, उसको मैं हाई कमान तक पहुंचा दूंगा।
3: ये वो अगर आपको ही बता दिए फिर मीटिंग में क्या बोलेंगे? कोई कोई शर्त नहीं है, नहीं बड़े राजा बड़े प्रेसिडेंट है, उसको आप ही आ जाना चाहिए था। मेरी कोई नाराजगी नहीं है, मैं उसके साथ ही रहा हूँ, तो उसको देखना चाहिए कि किसकी नाराजगी
4: है। नहीं, कौन है कॉम्प्रोमाइज लीडर? उन्होंने नाम लिया?
5: नाम तो नहीं।
4: अगर नाम नहीं लिया तो फिर तुसी ये क्यों कह रहे हो कि कॉम्प्रोमाइज लीडर? तुसी मेरे वाल क्यों इशारा कर रहे हो? दूजी सुखजिंदर सिंह रंधावा बिल्कुल ठीक कह रहे ने, क्योंकि मैं तो सुखजिंदर सिंह रंधावा नाल ते जां ओ मेरे नाल साढ़े चार साल पौने पांच साल इकट्ठे रहे हैं, और जे कोई साढ़े चो कॉम्प्रोमाइज़ हुंदा तो असी इन्ना चिर इकट्ठे नहीं रह सकते सी जो उन्हां दी उन्होंने बयान दिते। पर उन्हां दी गल बिल्कुल ठीक है कि कोई भी स्लीपर सैल पार्टी दे विच कॉम्प्रोमाइज लीडर नहीं होना चाहिए।
0: Well, the Jammu and Kashmir politics has erupted into a fresh war of words. Chief Minister Omar Abdullah has alleged that a National Conference MLA from Jammu was offered between rupees 20 to 30 crore to defect. Omar claims that the alleged offer was also included a birth cabinet, a promise of restoring the Jammu and Kashmir statehood if the MLA switched sides. The BJP has strongly denied these allegations. BJP leader Ravinder Raina has dismissed the claims as baseless and misleading. He has also challenged Omar Abdullah to make any evidence that he has public. Here is what Omar Abdullah said, followed by the reactions that came in from the BJP.
6: आज ये बीजेपी वाले कहते हैं हम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे। अरे ना, आपकी बात पे यकीन कौन करेगा? आप तो साजिश करते हुए थकते नहीं हो, आप जमात को तोड़ते हुए थकते नहीं हो। इस मुल्क के किस कोने में आपने जमातों को नहीं तोड़ा? हम किस मुंह से, आप किस मुंह से कहोगे कि झूठ हम बोल रहे हैं? देखिए महाराष्ट्र का हाल, क्या किया आपने शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे साहब की पार्टियों को। देखिए वेस्ट बंगाल का हाल, क्या किया आपने ममता बनर्जी की पार्टी को। देखिए आम आदमी पार्टी हमारे हमसाय में पंजाब में, कितने एमपी लिए आपने वहां से।
7: लीडर नहीं जो झूठ मारते हैं। उमर साहब जो बात कहते हैं पहले उसके पूरा फैक्ट्स तक जाते हैं फिर उमर साहब बयान देते हैं। अब बीजेपी पे हमने ये सवाल खड़ा किया है तो कहीं ना कहीं कोई सच्चाई तो है। हाँ, अब चोर खुद थोड़ा कहेगा मैं चोरी करता हूँ, तो अब चोर मचाए शोर, बीजेपी का हाल वही है, तो इसलिए अब वो शोर मचा रहे हैं तो मचाने दीजिए। लेकिन इतनी जरूर है कि आज बीजेपी को उमर साहब ने, जम्मू कश्मीर की बीजेपी को उमर साहब ने एक्सपोज कर दिया।
8: आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने एक बेहद ही गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय बयान दिया है, जब उन्होंने बगैर किसी तथ्य के आधार पर यह अनर्गल आरोप लगाने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई ने इस वक्तव्य की तीव्र निंदा करते हुए उनसे

0: ओवर जिमी।
1: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।
5: बाय नाउ सेल इमीडिएटली।
6: होल्ड इट बॉस।
7: बाय नाउ सेल।
8: होल्ड होल्ड।
7: बाय
8: सेल
9: इमीडिएटली। कंफ्यूज्ड? What to buy? What to sell? What to hold? Ask Profit with Mahima and Puneet, Monday to Friday, 10:30 a.m. only on NDTV Profit.

0: उमर साहब ने जम्मू कश्मीर की बीजेपी को उमर साहब ने एक्सपोज कर दिया।
1: आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने एक बेहद ही गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय बयान दिया है, जब उन्होंने बगैर किसी तथ्य के आधार पर यह अनर्गल आरोप लगाने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई ने इस वक्तव्य की तीव्र निंदा करते हुए उनसे सीधे सीधे कहा है कि या तो वो सबूत प्रस्तुत करें अथवा वो माफी मांगे।
2: बहुत ही भ्रमित करने वाला बयान कि उनकी सरकार को गिराने की साजिश हो रही है और 20 करोड़ 30 करोड़ का इल्ज़ाम जो उन्होंने लगाया है ये पूरी तरह से बेबुनियाद है, आधारहीन तथ्यहीन है, ये मिसलीडिंग है और बेसलेस एलिगेशंस हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो ज़बरदस्त हंगामा उठा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्रियों के खिलाफ, शायद उस भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने की ये कोशिश है। उमर अब्दुल्ला साहब का ये बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सत्य से बहुत दूर है, भ्रमित करने वाला है।
3: The Delhi police has once again turned into a battle, once again a battle over faith and optics. And the Delhi politics yet again is brewing with allegations and counter-allegations between AAP and the BJP. Arvind Kejriwal today participated in a Sundarkand part in Delhi, but the BJP has launched a sharp attack, calling it a political gimmick. The AAP said that the prayers were organized in keeping with the tradition and they were meant to seek blessings and safeguard religion. BJP has alleged that Kejriwal has become a Chunavi Hindu and whenever elections approach, the move is aimed at projecting a pro-Hindu image, especially ahead of UP polls. Aam Aadmi Party has hit back, saying that the party has been organizing the Sundarkand part every Tuesday, insisted that the prayers have nothing to do with elections.
4: Kejriwal sahab राजनीतिक हिंदू हैं, आज उनको भगवान राम भी याद आ रहे हैं। इन्होंने भी अवसरवादी भगत बनते हुए दिल्ली में सुंदरकांड पाठ 2200-2400 जगह पे होगा, हर महीने के पहले मंगलवार में होगा। कब कहा था ये? जब 2024 का चुनाव आने वाला था तो जनवरी 2024 में इन्होंने कहा, और ये कहा था कि हम लंबा चलाएंगे इसको। कितना लंबा चला है इसका जवाब भी केजरीवाल साहब दे दें। ये केवल और केवल राजनीतिक हिंदू हैं, बगुला भगत केजरीवाल, इस समय उनको फिर राम याद आया है।
5: अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं और ये हम पहली बार नहीं बोल रहे, जब जब चुनाव आते हैं अरविंद केजरीवाल के जो कर्म होते हैं वो प्रूफ कर देते हैं कि वो चुनावी हिंदू हैं। आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और एक कैंपेन चलाने की बात कर रहे हैं कि हम लोग जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसको लेके हम सिग्नेचर कैंपेन करेंगे। ये सब दिखाता है कि चूंकि वहां उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं इसलिए आज अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा गैंग चुनावी हिंदू बनकर हिंदू बनने का एक सॉन्ग रच रहा है।
6: आप लोगों ने सुंदरकांड का ये जो आयोजन किया है राम मंदिर मुद्दे को उठाते हुए, बीजेपी लगातार बोल रही है कि आप लोग चुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व का लाइन पे काम करना शुरू कर देते हैं, बीजेपी के आरोपों पे क्या आपका जवाब हो?
7: देखिए, कोई चुनाव है ही नहीं दिल्ली में, तो अभी एक साल पहले चुनाव हुआ है, दिल्ली में चार साल बाद चुनाव है, वो कौन से चुनाव की बात कर रहे हैं? और अगर किसी और राज्यों की बात कर रहे हैं तो भारत में तो हर साल कम से कम 4-5 राज्यों में हर साल चुनाव होते हैं। और अरविंद केजरीवाल ने, मुझे लगता है कि भारत में पहली बार ऐसा हुआ, लाखों बुज़ुर्गों को तीर्थयात्रा पे भेजा, तब कौन से चुनाव थे? क्या भारतीय जनता पार्टी चंदा चोरों के साथ खड़ी है? अगर चंदा चोरों के ऊपर कोई बात हो रही है, उनको फांसी की सज़ा मांगी जा रही है, उन पे कार्रवाई की मांग हो रही है, तो भाजपा के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्या वो चंदा चोरों के साथ खड़े हैं?
8: पहली बार नहीं करा रहे, हम तो हर मंगलवार को पार्टी ऑफिस सुंदरकांड कराते थे। तो अब ये समय आ गया है कि ऐसे राक्षस जो सनातन धर्म का चादर होकर सनातनी बन रहे थे उससे हमारा धर्म बचे, आज हम ये पूजा अर्चना भी करेंगे। अब देखिए, अगर ये सनातनी होते तो उनको खुशी हो ना कि भाई सनातन धर्म और फैल रहा है, हर जगह प्रभु का नाम लिया जा रहा है, लेकिन नहीं, वो बिलबिला रहे हैं।
3: And a routine delivery parcel turned into a nightmare for a Bengaluru woman after a delivery agent allegedly flashed his private parts inside her home. A Bengaluru woman has alleged that a delivery agent entered her home without permission, claiming he wanted to use the washroom. She further alleged that the accused flashed his private parts before leaving. And in a big NDTV impact, police have arrested the accused and further investigation is underway. The accused delivery agent is facing three charges under Bharatiya Nyaya Sanhita, include allegations of sexual harassment, insulting a woman's dignity, and unlawfully entering a residence. The woman claimed that despite her repeated refusal, the agent entered the house on the pretext of using the washroom, and the delivery agent forced his way inside. Moments later, after coming out, he allegedly exposed himself to her, leaving her in shock and dismay.
9: मैं नहीं छोड़ूंगी इसको, मैं पक्का पुलिस स्टेशन जाऊंगी और मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी और फ्लिपकार्ट मिंत्रा रिक्वेस्ट हूँ कि किस टाइप के डिलीवरी बॉय आप लोग हायर करते हो, क्या आप लोग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं करते हो? पार्सल लेके पेमेंट कर रही थी, मैं को बोलता मैम मेरे को वॉशरूम जाना है, मैं बोली नहीं भैया मैं अलाउड नहीं करूंगी, सॉरी बहुत फोर्स करने लगे, नहीं मैम प्लीज प्लीज प्लीज मेरे को जाना है, बहुत इमरजेंसी, थोड़ा करना और इंग्लिश मिक्स करके बात करनी, मैं बोली नो सर मैं आपको नहीं अलाउ करूंगी, आई एम सॉरी बहुत फोर्स किया, तो बोली नहीं सर मैं अकेले रहती हूँ, मेरे घर में फैमिली भी नहीं है, अभी मैं आपको नहीं अलाउ करूंगी, मैं किसी को नहीं अलाउ करती हूँ, अभी इनका सिचुएशन अच्छा नहीं चल रहा, आई एम सॉरी ट्राई टू अंडरस्टैंड, इतना फोर्स किया मैं नहीं नहीं बोली, उसके बाद मैं दरवाजे के बंद करे थे, अंदर शूज निकाल के फोर्सफुली वॉशरूम चले गया, मैं उसको मना नहीं करी, फोर्सफुली चले गए।
3: The Twisha death investigation has taken a significant turn. A major breakthrough has emerged in the Twisha death case, with AIIMS submitting its final 11-page forensic report to the CBI. The report is set to strengthen a crucial piece of evidence in the investigation, a gym belt allegedly linked to Twisha's death. Forensic experts have found that the injury pattern on Twisha's neck matches the belt recovered during investigation. The report also states that the skin tissue matches with Twisha, which was detected on the belt, further reinforcing its evidentiary value. The findings also establish a possible link between the belt and the injuries. The AIIMS report does not rule out any foul play. The exact cause and the circumstances of her death remain under investigation. The investigation into Vietnam's deadly speedboat tragedy is now gathering pace. Vietnamese authorities have officially launched criminal proceedings into the incident. The Provincial Police Criminal Investigation Agency has registered a criminal case. The key question now is whether the captain ignored severe weather warnings before setting sail. Police is also questioning representatives of the boat, which were operating firm, the Ocean Pearl Island Company. They are checking whether the vessel underwent mandatory safety inspections before the departure. Even as Vietnam's probe moves forward, India is focused on bringing the victims home. The Indian Embassy in Hanoi has confirmed that the mortal remains of the 15 Indian nationals killed in the tragedy are being transported to Ho Chi Minh City. Once all official formalities are completed, the bodies will be flown back to India at the earliest.
10: The Indian consulate in Ho Chi Minh City has just confirmed that the mortal remains of the 15 Indian nationals who tragically lost their lives yesterday have officially arrived in Ho Chi Minh City from the island. Consular officials state that upon the completion of local formalities in the city, the remains will be transported back to India at the earliest possible date. The Vietnamese government has pledged to fully cover all travel and accommodation expenses for grieving families traveling to Vietnam under expedited emergency visa. Medically, 16 out of the 17 hospitalized survivors have now been discharged. Diplomatic teams note they continue to pray for the final remaining survivors, who is currently stable at Sun Phu Quoc Hospital. Meanwhile, following the arrest and criminal detention of the vessel's captain, the Vietnam Maritime Administration has launched a massive nationwide safety crackdown, ordering immediate technical and insurance audits on all high-risk shore-to-island tourist routes across the country.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
3: We are over, Jimmy.
4: Hey, life mein scratches to aayenge. Gaadi ke scratches ko to Cosmo PP ab samal lega. Aap apna dekh lo.
5: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
6: बाय नाउ, सेल इमीडिएटली। होल्ड इट बॉस,
7: बाय नाउ, सेल,
6: होल्ड, होल्ड,
7: बाय,
6: सेल इमीडिएटली।
5: कंफ्यूज्ड? व्हाट टू बाय, व्हाट टू सेल, व्हाट टू होल्ड? आस्क प्रॉफिट विद महिमा एंड पुनीत, मंडे टू फ्राइडे, 10:30 AM. Only on NDTV Profit.

0: where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
1: We are over, Jimmy.
2: Hey, life mein scratches to aayenge. गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा।
6: बाय नाउ सेल इमीडिएटली। होल्ड इट बॉस।
7: बाय नाउ सेल।
6: होल्ड होल्ड।
7: बाय
6: सेल इमीडिएटली।
8: कंफ्यूज्ड? What to buy, what to sell, what to hold? Ask Profit with Mahima and Puneet, Monday to Friday, 10:30 a.m. only on NDTV Profit.

0: The Delhi politics has once again turned into a battle over faith and optics. Arvind Kejriwal today participated in a Sundarkand part in Delhi, but BJP has launched a sharp attack, calling the event a political gimmick. AAP said that the prayers were organized in keeping with the tradition and were meant to seek blessings and as safeguard religion. BJP has alleged that Kejriwal becomes Chunavi Hindu whenever elections approach, claiming that the move is aimed at protecting and projecting AAP as a Hindu favorable party ahead of the UP polls. AAP has hit back, saying party has been organizing Sundarkand part every Tuesday, insisting prayers have nothing to do with elections. Listen in to some reactions on the story.
1: Kejriwal sahab rajnitik Hindu hain. आज उनको भगवान राम भी याद आ रहे हैं. इन्होंने भी अवसरवादी भगत बनते हुए दिल्ली में सुंदरकांड पाठ 2200-2400 जगह पे होगा, हर महीने के पहले मंगलवार में होगा. कब कहा था ये? जब 2024 का चुनाव आने वाला था तो जनवरी 2024 में इन्होंने कहा, और ये कहा था कि हम लंबा चलाएंगे इसको. कितना लंबा चला इसका जवाब भी केजरीवाल साहब दे दें. ये केवल और केवल राजनीतिक हिंदू हैं, बगुला भगत केजरीवाल. इस समय उनको फिर राम याद आया है.
2: अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं, और ये हम पहली बार नहीं बोल रहे. जब जब चुनाव आते हैं, अरविंद केजरीवाल के जो कर्म होते हैं वो प्रूफ कर देते हैं कि वो चुनावी हिंदू हैं. आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और एक कैंपेन चलाने की बात कर रहे हैं कि हम लोग जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसको लेके हम सिग्नेचर कैंपेन करेंगे. ये सब दिखाता है कि चूंकि वहां उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं, इसलिए आज अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा गैंग चुनावी हिंदू बनकर हिंदू बनने का एक सॉन्ग रच रहा है.
3: आप लोगों ने सुंदरकांड का ये जो आयोजन किया है राम मंदिर मुद्दे को उठाते हुए, बीजेपी लगातार बोल रही है कि आप लोग चुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व का लाइन पे काम करना शुरू कर देते हैं. बीजेपी के आरोपों पे क्या आपका जवाब हो?
4: देखिए, कोई चुनाव है ही नहीं. दिल्ली में तो अभी एक साल पहले चुनाव हुआ है, दिल्ली में चार साल बाद चुनाव है. वो कौन से चुनाव की बात कर रहे हैं? और अगर किसी और राज्यों की बात कर रहे हैं तो भारत में तो हर साल कम से कम 4-5 राज्यों में हर साल चुनाव होते हैं. और अरविंद केजरीवाल ने, मुझे लगता है कि भारत में पहली बार ऐसा हुआ, लाखों बुजुर्गों को तीर्थयात्रा पे भेजा. तब कौन से चुनाव थे? क्या भारतीय जनता पार्टी चंदा चोरों के साथ खड़ी है? अगर चंदा चोरों के ऊपर कोई बात हो रही है, उनको फांसी की सज़ा मांगी जा रही है, उन पे कार्रवाई की मांग हो रही है, तो भाजपा के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्या वो चंदा चोरों के साथ खड़े हैं?
5: पहली बार नहीं करा रहे हैं हम तो, हर मंगलवार को पार्टी ऑफिस सुंदरकांड कराते थे. तो अब ये समय आ गया है कि ऐसे राक्षस जो सनातन धर्म का चादर का सनातनी बन रहे थे, उससे हमारा धर्म बचे. आज हम ये पूजा अर्चना भी करेंगे. अब देखिए, अगर ये सनातनी होते तो उनको खुशी होती ना कि भाई सनातन धर्म और फैल रहा है, हर जगह प्रभु का नाम लिया जा रहा है. लेकिन नहीं, वो बिलबिला रहे हैं.
0: जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटिक्स हैज इरप्टेड इनटू अ फ्रेश वॉर ऑफ वर्ड्स. Chief Minister Omar Abdullah has alleged that National Conference MLA from Jammu was offered between 20 to 30 crore to defect. Omar claims the alleged offer also included a cabinet berth and a promise of restoring Jammu and Kashmir's statehood if the MLA switched sides. The BJP has strongly denied allegations. BJP leader Ravinder Rena has dismissed the claims as baseless and misleading and challenged Omar Abdullah to make any evidence public.
6: आज ये बीजेपी वाले कहते हैं हम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे. अरे ना, आपकी बात पे यकीन कौन करेगा? आप तो साजिश करते हुए थकते नहीं हो, आप जमात को तोड़ते हुए थकते नहीं हो. इस मुल्क के किस कोने में आपने जमातों को नहीं तोड़ा? हम किस मुंह से, आप किस मुंह से कहोगे कि झूठ हम बोल रहे हैं? देखिए महाराष्ट्र का हाल, क्या किया आपने शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे साहब की पार्टियों को. देखिए वेस्ट बंगाल का हाल, क्या किया आपने ममता बनर्जी की पार्टी को. देखिए आम आदमी पार्टी हमारे हमसाये में पंजाब में, कितने एमपी लिए आपने वहां से.
7: उमर साहब उन लीडरों में से लीडर नहीं जो झूठ मारते हैं। उमर साहब जो बात कहते हैं पहले उसके पूरा फैक्ट्स तक जाते हैं, फिर उमर साहब बयान देते हैं। अब बीजेपी पे हमने ये सवाल खड़ा किया है तो कहीं ना कहीं कोई सच्चाई तो है। हाँ, अब चोर खुद थोड़ा कहेगा मैं चोरी करता हूँ, तो अब चोर मचाए शोर, बीजेपी का हाल वही है, तो इसलिए अब वो शोर मचा रहे हैं तो मचाने दीजिए। लेकिन इतनी जरूर है कि आज बीजेपी को उमर साहब ने, जम्मू कश्मीर की बीजेपी को उमर साहब ने एक्सपोज कर दिया।
8: आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने एक बेहद ही गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय बयान दिया है, जब उन्होंने बगैर किसी तथ्य के आधार पर यह अनर्गल आरोप लगाने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई ने इस वक्तव्य की तीव्र निंदा करते हुए उनसे सीधे सीधे कहा है कि या तो वो सबूत प्रस्तुत करें अथवा वो माफी मांगे।
9: बहुत ही भ्रमित करने वाला बयान कि उनकी सरकार को गिराने की साजिश हो रही है और 20 करोड़ 30 करोड़ का इल्जाम जो उन्होंने लगाया है ये पूरी तरह से बेबुनियाद है, आधारहीन, तथ्यहीन है, ये मिसलीडिंग है और बेसलेस एलिगेशंस हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो जबरदस्त हंगामा उठा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्रियों के खिलाफ, शायद उस भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने की ये कोशिश है। उमर अब्दुल्ला साहब का ये बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सत्य से बहुत दूर है, भ्रमित करने वाला है।
0: And there's a rift in Punjab Congress that has intensified after the Channi faction met. Channi faction met the Punjab Congress in charge Bhupesh Baghel, demanding removal of the current Punjab LOP Raja Wari. Channi demonstrated his strength at the meeting. 12 MLAs and 82 former candidates were present. Bhupesh Baghel assured that the message would be conveyed to party high command and also told media that there is no one upset and there is no infighting in Punjab Congress. MP Randhawa said that the party must reverse its decision sometimes and they don't want a compromise leader. Raja Waring told the media that he and Randhawa will sort out their problems very soon.
10: Dekho saryan ne apni gal keh li hai aur us gal de vichon Baghel saab ne saryan di gal sun li hai. Dekho hamesha main vi ik state de vich secretary hega, sanu sare hi kehnde aa पर असी अप्रोप्रिएट लैवल ते जाके वो कन्वे करते हैं कि आ प्रॉब्लम्स हैगी आ, इहदा सल्यूशन जिहड़ा आ इदां दा सल्यूशन हैगा और मेरा ख्याल है कि वो सारियां चीजां जिहड़ियां कन्वे करनगे।
11: हाई कमान का फैसला है, उस पे किसी का एतराज नहीं है, सब हाई कमान के साथ है। कुछ बातें हैं जिसको हमारे साथियों ने रखा और मैंने सभी साथियों से को विश्वास दिलाया कि जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होने के नाते मैं सभी के हितों का ध्यान रखूंगा। कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि उनके ऊपर किसी बड़े नेता का गौरव हस्त नहीं है, लेकिन यदि वो जीतने के लायक है निश्चित रूप से टिकट मिलेगी, ये मैंने विश्वास दिलाया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, कुछ बात साथियों ने रखी है उसको मैं हाईकमान तक पहुंचा दूंगा।
12: ये वो अगर आपको बता दिए फिर मीटिंग में क्या बोलेंगे? कोई शर्त नहीं है। नहीं, बड़े राजा बड़े प्रेसिडेंट है, उसको आप ही आ जाना चाहिए था। मेरी कोई नाराजगी नहीं है, मैं उसके साथ ही रहा हूँ, तो उसको देखना चाहिए कि किसकी नाराजगी
13: है। नहीं, कौन है कॉम्प्रोमाइज लीडर? उन्होंने नाम लिया?
14: नाम तो नहीं।
13: अगर नाम नहीं लिया तो फिर तुम ये क्यों कह रहे हो कि कॉम्प्रोमाइज लीडर? तुम मेरे वाल क्यों इशारा कर रहे हो? दूजी सुखजिंदर सिंह रंधावा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैं तो सुखजिंदर सिंह रंधावा नाल ते जां ओ मेरे नाल साढ़े चार साल पौने पांच साल इकट्ठे रहे हैं। और जे कोई साढ़े चो कॉम्प्रोमाइज हुंदा तां असीं इन्ना चिर इकट्ठे नहीं रह सकते सी जो उन्हां दी उन्होंने बयान दिते। पर उन्हां दी गल बिल्कुल ठीक है कि कोई भी स्लीपर सैल पार्टी दे विच कॉम्प्रोमाइज लीडर नहीं होना चाहिए।
0: The Twisha death investigation has taken a significant turn. A major breakthrough has emerged in Twisha death case, with AIIMS submitting its final 11-page forensic report to CBI. The report is set to strengthen a crucial piece of evidence in the investigation, a gym belt allegedly linked to Twisha's death. Forensic experts have found that the injury pattern on Twisha's neck matches the belt recovered during the investigation. The report also states that skin tissue matching Twisha was detected on the belt, further reinforcing the evidentiary value. While the findings establish a possible link, the AIIMS report does not rule out any foul play at this moment. The exact cause and the circumstance of Twisha's death remain under investigation. The DMK has rejected BCK's push for a joint front with TVK against the BJP. The party has made it clear that there is no proposal to join hands with Vijay's TVK at the national level. DMK said VCK should direct the alliance proposal to Vijay, who has been calling DMK his main political rival. The party also continued its attack on Congress, alleging it was betrayed over political interests. DMK said that the Congress failed to act as a true India bloc partner, further highlighting growing differences within opposition. VCK chief has been battling and talking about the fact that perhaps DMK and TVK alliance on the national front is good for the state of Tamil Nadu.
15: Our leaders, look, this problem is between DMK and Congress. Actually, Congress backstabbed DMK just after the defeat. Just for a couple of ministership in the state politics, in the state government, they failed to view it as a national, point of view, national politics, as India bloc, because they'll be losing if DMK is coming out of India bloc, that will cost them 22 MPs out of this. So VCK is trying to patch it up, but our leaders, I don't think they will go along with the VCK's proposal.
16: Right, that may be his view, but where he should say, he is with the TVK in the alliance now, he is a man, is a minister. He should talk to Vijay, not to us, or just express the public. He should

0: talk to Vijay. Why should he talk to us? Vijay says that we are his main enemies. When Vijay's stand is that, how can we both be in the same alliance? So he may wish anything. It is Thirumavaram's view. But how is it possible when Vijay's attack is directly against DMK? What can we do?
1: Let's listen in to what VCK chief Thol Thirumavalavan has said.
2: TVK என்ன சொல்றாங்க எங்க கொள்கை எதிர்ப்புன்றாங்க ஓகே டிஎம்கே என்ன சொல்றாங்க இவ்வளவு நாள நாங்க எதிர்த்துக்கிறோம் தொடர்ந்து எதிர்ப்புன்றாங்க இந்தியா பிளாக் என்ன சொல்றது அவங்களை எதிர்ப்பது தான் அரசியல் இல்லை அப்ப ஏன் இங்க ஒரே அணிக்கு வரக்கூடாது இதுதான் திருமாவளவன் எடுத்து வந்திருக்கிறேன் என்ன தப்பு இது கேரளாவில் காங்கிரஸ் இடதுசாரிகளும் பயங்கரமான மோதல் பினராயி விஜயன் ஆர்எஸ்எஸ் காரவனே பேசுறாரு ராகுல் காந்தி அங்கே இந்தியா பிளாக்கில் கூட்டணியில் மார்க்சிஸ்டும் உட்கார்ந்து காங்கிரஸும் உட்கார் மேற்கு வங்கத்தில் மம்தா பானர்ஜிக்கும் காங்கிரஸுக்கும் சண்டை ஆனால் இந்தியா பிளாக்கில் ரெண்டு பேரும் வந்து ஒன்றா உட்கார்றாங்க தமிழ்நாட்டில் அப்படி ஒரு அரசு நடக்கக்கூடாதா இதை திருமாவளவன் சொன்னால் உங்களால் அதை புரிந்து கொள்ள முடியாதா
1: Now talking about what has happened so far as the Bengaluru delivery horror story is concerned. A routine parcel delivery turned into a nightmare for a Bengaluru woman after a delivery agent allegedly flushed his private parts inside her home. A Bengaluru woman has alleged that the delivery agent entered her home without permission, claiming he wanted to use the washroom. She accused that he flushed his private parts before leaving. It's a big NDTV impact. The police have arrested the accused and further investigation is underway. The delivery agent is facing three charges under Bharatiya Nyaya Sanhita. These include allegations of sexual harassment, insulting and outraging a woman's modesty, unlawfully entering a residence. And the woman has claimed that despite a repeated request and refusal to allow him to enter the house, he entered her premises. The delivery agent allegedly forced his way inside and moments later after coming out, he exposed himself to her.
3: मैं नहीं छोड़ूंगी इसको मैं पक्का पुलिस स्टेशन जाऊंगी और इसके खिलाफ मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी और फ्लिपकार्ट मिंत्रा रिक्वेस्ट हूँ कि किस टाइप के डिलीवरी बॉय आप लोग हायर करते हो क्या आप लोग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं करते हो क्या पार्सल लेके पेमेंट कर रही थी मेरे को बोलता मेरे को वॉशरूम जाना है मैं बोली नहीं भैया मैं अलाउड नहीं करूंगी सॉरी बहुत फोर्स करने लगे नहीं मैम प्लीज प्लीज प्लीज कुछ आना ही बहुत इमरजेंसी थोड़ा करना और एक दिन मिक्स करके बात करना बोली नो सर मैं आपको नहीं अलाउ करूंगी आई एम सॉरी बहुत फोर्स किया तो बोली नहीं सर मैं अकेले रहती हूँ मेरे घर में फैमिली भी नहीं है अभी मैं आपको नहीं अलाउ करूंगी मैं किसी को नहीं अलाउ करती हूँ अब इनका सिचुएशन अच्छा नहीं चल रहा आई एम सॉरी ट्राई टू अंडरस्टैंड इतना फोर्स किया मैं नहीं नहीं बोली उसके बाद मैं दरवाजे के बंद कर रही थी अंदर शूज निकाल के फोर्स बोली वॉशरूम चले गया
1: We'll continue tracking that story and much more on the other side of a quick break.

0: नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: बाय नाउ सेल इमीडिएटली। होल्ड इट बॉस।
2: बाय नाउ सेल। होल्ड होल्ड। बाय सेल इमीडिएटली।
0: कंफ्यूज्ड? व्हाट टू बाय, व्हाट टू सेल, व्हाट टू होल्ड? Ask Profit with Mahima and Puneet, Monday to Friday, 10:30 a.m. only on NDTV Profit.

0: 2400 जगह पे होगा, हर महीने के पहले मंगलवार में होगा। कब कहा था ये? जब 2024 का चुनाव आने वाला था, तो जनवरी 2024 में इन्होंने कहा, और ये कहा था कि हम लंबा चलाएंगे इसको। कितना लंबा चला इसका जवाब भी केजरीवाल साहब दे दें। ये केवल और केवल राजनीतिक हिंदू हैं, बगुला भगत केजरीवाल। इस समय उनको फिर राम याद आया है।
1: अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं, और ये हम पहली बार नहीं बोल रहे। जब जब चुनाव आते हैं, अरविंद केजरीवाल के जो कर्म होते हैं वो प्रूफ कर देते हैं कि वो चुनावी हिंदू हैं। आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और एक कैंपेन चलाने की बात कर रहे हैं कि हम लोग जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसको लेके हम सिग्नेचर कैंपेन करेंगे। ये सब दिखाता है कि चूंकि वहां उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं, इसलिए आज अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा गैंग चुनावी हिंदू बनकर हिंदू बनने का एक सॉन्ग रच रहा है।
2: आप लोगों ने सुंदरकांड का ये जो आयोजन किया है राम मंदिर मुद्दे को उठाते हुए, बीजेपी लगातार बोल रही है कि आप लोग चुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व का लाइन पे काम करना शुरू कर देते हैं, बीजेपी के आरोपों पे क्या आपका जवाब हो?
3: देखिए, कोई चुनाव है ही नहीं। दिल्ली में तो अभी एक साल पहले चुनाव हुआ है, दिल्ली में 4 साल बाद चुनाव है, वो कौन से चुनाव की बात कर रहे हैं? और अगर किसी और राज्यों की बात कर रहे हैं तो भारत में तो हर साल कम से कम 4-5 राज्यों में हर साल चुनाव होते हैं। और अरविंद केजरीवाल ने, मुझे लगता है कि भारत में पहली बार ऐसा हुआ, लाखों बुजुर्गों को तीर्थयात्रा पे भेजा, तब कौन से चुनाव थे? क्या भारतीय जनता पार्टी चंदा चोरों के साथ खड़ी है? अगर चंदा चोरों के ऊपर कोई बात हो रही है, उनको फांसी की सज़ा मांगी जा रही है, उन पे कार्रवाई की मांग हो रही है, तो भाजपा के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्या वो चंदा चोरों के साथ खड़े हैं?
4: पहली बार नहीं करा रहे, हम तो हर मंगलवार को पार्टी ऑफिस उत्तरकांड कराते थे। तो अब ये समय आ गया है कि ऐसे राक्षस जो सनातन धर्म का चादर का सनातनी बन रहे थे, उससे हमारा धर्म बचे। आज हम ये पूजा अर्चना भी करेंगे। अब देखिए, अगर ये सनातनी होते तो उनको खुशी होती ना कि भाई सनातन धर्म और फैल रहा है, हर जगह प्रभु का नाम लिया जा रहा है, लेकिन नहीं, वो बिलबिला रहे हैं।
5: जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटिक्स हैज इरप्टेड इनटू अ फ्रेश वॉर ऑफ वर्ड्स। Chief Minister Omar Abdullah has alleged that National Conference MLA from Jammu was offered between 20 to 30 crore to defect. Omar claims the alleged offer also included a cabinet berth and a promise of restoring Jammu and Kashmir statehood if the MLA switched sides. The BJP has strongly denied allegations. BJP leader Ravinder Rena has dismissed the claims as baseless and misleading and challenged Omar Abdullah to make any evidence public.
6: आज ये बीजेपी वाले कहते हैं हम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे। अरे ना, आपकी बात पे यकीन कौन करेगा? आप तो साजिश करते हुए थकते नहीं हो, आप जमात को तोड़ते हुए थकते नहीं हो। इस मुल्क के किस कोने में आपने जमातों को नहीं तोड़ा? हम किस मुंह से, आप किस मुंह से कहोगे कि झूठ हम बोल रहे हैं? देखिए महाराष्ट्र का हाल, क्या किया आपने शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे साहब की पार्टियों को? देखिए वेस्ट बंगाल का हाल, क्या किया आपने ममता बनर्जी की पार्टी को? देखिए आम आदमी पार्टी हमारे हमसाये में पंजाब में, कितने एमपी लिए आपने वहां से?
7: उमर साहब उन लीडरों में से लीडर नहीं जो झूठ मारते हैं। उमर साहब जो बात कहते हैं पहले उसके पूरा फैक्ट्स तक जाते हैं, फिर उमर साहब बयान देते हैं। अब बीजेपी पे हमने ये सवाल खड़ा किया है तो कहीं ना कहीं कोई सच्चाई तो है। हाँ, अब चोर खुद थोड़ा कहेगा मैं चोरी करता हूँ, तो अब चोर मचाए शोर, बीजेपी का हाल वही है, तो इसलिए अब वो शोर मचा रहे हैं तो मचाने दीजिए। लेकिन इतनी जरूर है कि आज बीजेपी को उमर साहब ने, जम्मू कश्मीर की बीजेपी को उमर साहब ने एक्सपोज कर दिया।
8: आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने एक बेहद ही गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय बयान दिया है, जब उन्होंने बगैर किसी तथ्य के आधार पर यह अनर्गल आरोप लगाने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई ने इस वक्तव्य की तीव्र निंदा करते हुए उनसे सीधे

0: है कि या तो वो सबूत प्रस्तुत करें अथवा वो माफी मांगे।
1: बहुत ही भ्रमित करने वाला बयान कि उनकी सरकार को गिराने की साजिश हो रही है और 20 करोड़ 30 करोड़ का इल्ज़ाम जो उन्होंने लगाया है ये पूरी तरह से बेबुनियाद है, आधारहीन, तथ्यहीन है, ये मिसलीडिंग है और बेसलेस एलिगेशंस हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो ज़बरदस्त हंगामा उठा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्रियों के खिलाफ, शायद उस भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने की ये कोशिश है। उमर अब्दुल्ला साहब का ये बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सत्य से बहुत दूर है, भ्रमित करने वाला है।
2: And there's a rift in Punjab Congress that has intensified after the Channi faction met. Channi faction met the Punjab Congress in charge Bhupesh Baghel, demanding removal of the current Punjab LOP Raja Wari. Channi demonstrated his strength at the meeting. 12 MLAs and 82 former candidates were present. Bhupesh Baghel assured that the message would be conveyed to party high command and also told media that there is no one upset and there is no infighting in Punjab Congress. MP Randhawa said that the party must reverse its decision sometimes and they don't want a compromise leader. Raja Waring told the media that he and Randhawa will sort out their problems very soon.
3: Dekho saryan ne apni gal keh li hai aur us gal de vichon Baghel saab ne saryan di gal sun li hai. Dekho hamesha main vi ik state de vich secretary hega, sanu sare hi kehnde aa पर असी अप्रोप्रिएट लैवल ते जाके वो कन्वे करते हैं कि आ प्रॉब्लम्स हैगी आ, इहदा सोल्यूशन जिहड़ा आ इदां दा सोल्यूशन हैगा और मेरा ख्याल है कि वो सारियां चीजां जिहड़ियां कन्वे करनगे।
4: हाई कमान का फैसला है, उस पे किसी का एतराज नहीं है, सब हाई कमान के साथ है। कुछ बातें हैं जिसको हमारे साथियों ने रखा और मैंने सभी साथियों से को विश्वास दिलाया, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होने के नाते मैं सभी के हितों का ध्यान रखूंगा। कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि उनके ऊपर किसी बड़े नेता का बरदस्त नहीं है, लेकिन यदि वो जीतने के लायक है निश्चित रूप से टिकट मिलेगी, ये मैंने विश्वास दिलाया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, कुछ बातें साथियों ने रखी है, उसको मैं हाईकमान तक पहुंचा दूंगा।
5: ये वो अगर आपको ही बता दिए फिर मीटिंग में क्या बोलेंगे? कोई शर्त नहीं है। नहीं, बड़े राजा बड़े प्रेसिडेंट है, उसको आप ही आ जाना चाहिए था। मेरी कोई नाराजगी नहीं है, मैं उसके साथ ही रहा हूँ, तो उसको दिखाना चाहिए कि किसकी नाराजगी
6: है। कौन है कॉम्प्रोमाइज लीडर? उन्होंने नाम लिया है?
7: नाम तो नहीं।
6: अगर नाम नहीं लिया तो फिर तुसी ये क्यों कह रहे हो कि कॉम्प्रोमाइज लीडर? तुसी मेरे वाल क्यों इशारा कर रहे हो? दूजी सुखजिंदर सिंह रंधावा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैं तो सुखजिंदर सिंह रंधावा नाल ते जां वो मेरे नाल साढ़े चार साल पौने पांच साल इकट्ठे रहे हैं, और जे कोई साढ़े चो कॉम्प्रोमाइज हुंदा तो असी इन्ना चिर इकट्ठे नहीं रह सकते सी, जो उन्होंने बयान दिते। पर उन्हां दी गल बिल्कुल ठीक है कि कोई भी स्लीपर सैल पार्टी दे विच कॉम्प्रोमाइज लीडर नहीं होना चाहिए।
2: The Twisha death investigation has taken a significant turn. A major breakthrough has emerged in Twisha death case, with AIIMS submitting its final 11-page forensic report to CBI. The report is set to strengthen a crucial piece of evidence in the investigation, a gym belt allegedly linked to Twisha's death. Forensic experts have found that the injury pattern on Twisha's neck matches the belt recovered during the investigation. The report also states that skin tissue matching Twisha was detected on the belt, further reinforcing the evidentiary value. While the findings establish a possible link, the AIIMS report does not rule out any foul play at this moment. The exact cause and the circumstance of Twisha's death remain under investigation. The DMK has rejected BCK's push for a joint front with TVK against the BJP. The party has made it clear that there is no proposal to join hands with Vijay's TVK at the national level. DMK said BCK should direct the alliance proposal to Vijay, who has been calling DMK his main political rival. The party also continued its attack on Congress, alleging

0: It was betrayed over political interests. DMK said that the Congress failed to act as a true India bloc partner, further highlighting growing differences within opposition. VCK chief has been battling and talking about the fact that perhaps DMK and TVK alliance on the national front is good for the state of Tamil Nadu.
1: Our leaders, look, this problem is between DMK and Congress. Actually, Congress backstabbed DMK just after the defeat. Just for a couple of ministership in the state politics, in the state government, they failed to view it as a national, what to say, point of view, national politics as India bloc, because they'll be losing, if DMK is coming out of India bloc, that will cost him 22 MPs out of this. So VCK is trying to patch it up, but our leaders, I don't think they will go along with the VCK's proposal.
2: Right, that may be his view. But where he should say, he is with the TVK in the alliance now. He is a man, is a minister. He should talk to Vijay, not to us, or just express the public. He should talk to Vijay. Why should he talk to us? Vijay says that we are his main enemies. When Vijay's stand is that, how can we both be in the same alliance? So he may wish anything. It is Thirumavaran's view. But how is it possible when Vijay's attack is directly against DMK? What can we do?
0: Let's listen in to what VCK chief told Thirumavaran has said.
3: TVK என்ன சொல்றாங்க எங்க கொள்கை எதிர்ப்புன்றாங்க ஓகே டிஎம்கே என்ன சொல்றாங்க இவ்வளவு நாள் நாங்கள் எதிர்த்துக்கிறோம் தொடர்ந்து எதிர்ப்புன்றாங்க இந்தியா பிளாக் என்ன சொல்றது அவங்களை எதிர்ப்பது தான் அரசியல் இல்லை அப்போ ஏன் இங்கே ஒரே அணிக்கு வரக்கூடாது இதுதான் திருமாவளவன் எடுத்து வருகிறேன் என்ன தப்பு இது கேரளாவில் காங்கிரஸ் இடதுசாரிகளும் பயங்கரமான மோதல் பினராயி விஜயன் ஆர்எஸ்எஸ் காரவனே பேசுறார் ராகுல் காந்தி அங்கே இந்தியா பிளாக்கில் கூட்டணியில் மார்க்சிஸ்டும் உட்கார்ந்து காங்கிரஸும் உட்கார்ந்து மேற்கு வங்கத்தில் மம்தா பானர்ஜிக்கும் காங்கிரஸுக்கும் சண்டை ஆனால் இந்தியா பிளாக்கில் ரெண்டு பேரும் வந்து ஒன்றா உட்கார்றாங்க தமிழ்நாட்டில் அப்படி ஒரு அரசியல் நடக்கக்கூடாதா இதை திருமாவளவன் சொன்னால் உங்களால் அதை புரிந்து கொள்ள முடியாதா
0: Now, talking about what has happened so far as the Bengaluru delivery horror story is concerned. A routine parcel delivery turned into a nightmare for a Bengaluru woman after a delivery agent allegedly flashed his private parts inside her home. A Bengaluru woman has alleged that the delivery agent entered her home without permission, claiming he wanted to use the washroom. She accused that he flashed his private parts before leaving. It's a big NDTV impact. The police have arrested the accused and further investigation is underway. The delivery agent is facing three charges under Bharatiya Nyaya Sahita. These include allegations of sexual harassment, insulting and outraging a woman's modesty, unlawfully entering a residence. And the woman has claimed that despite a repeated request and refusal to allow him to enter the house, he entered her premises. The delivery agent allegedly forced his way inside and moments later after coming out, he exposed himself to her.
4: मैं नहीं छोड़ूंगी इसको मैं पक्का पुलिस स्टेशन जाऊंगी और इसके खिलाफ मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी और फ्लिपकार्ट मिंत्रा रिक्वेस्ट हूँ कि किस टाइप के डिलीवरी बॉय आप लोग हायर करते हो क्या आप लोग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं करते हो पार्सल लेके पेमेंट कर रही थी मैं को बोलता मैम मेरे को वॉशरूम जाना है मैं बोली नहीं भैया मैं अलाउड नहीं करूंगी सॉरी बहुत फोर्स करने लगे नहीं मैम प्लीज प्लीज प्लीज कुछ आना है बहुत इमरजेंसी थोड़ा करना और इंडियन मिक्स करके बात करना बोली नो सर मैं आपको नहीं अलाउ करूंगी आई एम सॉरी बहुत फोर्स किया तो बोली नहीं सर मैं अकेले रहती हूँ मेरे घर में फैमिली भी नहीं है अभी मैं आपको नहीं अलाउ करूंगी मैं किसी को नहीं अलाउ करती हूँ अब इनका सिचुएशन अच्छा नहीं चल रहा आई एम सॉरी ट्राई टू अंडरस्टैंड इतना फोर्स किया मैं नहीं नहीं बोली उसके बाद मैं दरवाजे के बंद करे थे अंदर शूज निकाल के फोर्सफुली वॉशरूम चले गया
0: We'll continue tracking that story and much more on the other side of a quick break.

0: The Delhi politics has once again turned into a battle over faith and optics. Arvind Kejriwal today participated in a Sundarkand part in Delhi, but BJP has launched a sharp attack, calling the event a political gimmick. AAP said that the prayers were organized in keeping with the tradition and were meant to seek blessings as safeguard religion. BJP has alleged that Kejriwal becomes Chunavi Hindu whenever elections approach, claiming that the move is aimed at protecting and projecting AAP as a Hindu favorable party ahead of the UP polls. AAP has hit back, saying party has been organizing Sundarkand part every Tuesday, insisting prayers have nothing to do with elections. Listen in to some reactions on the story.
1: Kejriwal sahab rajnitik Hindu hain. Aaj unko Bhagwan Ram bhi yaad aa rahe hain. Inhone bhi avsarvadi bhagat bante hue Delhi mein Sundarkand part 2200-2400 जगह पे होगा, हर महीने के पहले मंगलवार में होगा। कब कहा था ये? जब 2024 का चुनाव आने वाला था तो जनवरी 2024 में इन्होंने कहा, और ये कहा था कि हम लंबा चलाएंगे इसको। कितना लंबा चला इसका जवाब भी केजरीवाल साहब दे दें। ये केवल और केवल राजनीतिक हिंदू हैं, बगुला भगत केजरीवाल। इस समय उनको फिर राम याद आया है।
2: अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं, और ये हम पहली बार नहीं बोल रहे। जब जब चुनाव आते हैं, अरविंद केजरीवाल के जो कर्म होते हैं वो प्रूफ कर देते हैं कि वो चुनावी हिंदू हैं। आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और एक कैंपेन चलाने की बात कर रहे हैं कि हम लोग जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसको लेके हम सिग्नेचर कैंपेन करेंगे। ये सब दिखाता है कि चूंकि वहां उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं, इसलिए आज अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा गैंग चुनावी हिंदू बनकर हिंदू बनने का एक सॉन्ग रच रहा है।
3: आप लोगों ने सुंदरकांड का ये जो आयोजन किया है राम मंदिर मुद्दे को उठाते हुए, बीजेपी लगातार बोल रही है कि आप लोग चुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व का लाइन पे काम करना शुरू कर देते हैं, बीजेपी के आरोपों पर क्या आपका जवाब होगा?
4: देखिए, कोई चुनाव है ही नहीं दिल्ली में, तो अभी एक साल पहले चुनाव हुआ है। दिल्ली में चार साल बाद चुनाव है, वो कौन से चुनाव की बात कर रहे हैं? और अगर किसी और राज्यों की बात कर रहे हैं तो भारत में तो हर साल कम से कम 4-5 राज्यों में हर साल चुनाव होते हैं। और अरविंद केजरीवाल ने, मुझे लगता है कि भारत में पहली बार ऐसा हुआ, लाखों बुजुर्गों को तीर्थयात्रा पर भेजा, तब कौन से चुनाव थे? क्या भारतीय जनता पार्टी चंदा चोरों के साथ खड़ी है? अगर चंदा चोरों के ऊपर कोई बात हो रही है, उनको फांसी की सज़ा मांगी जा रही है, उन पर कार्रवाई की मांग हो रही है, तो भाजपा के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्या वो चंदा चोरों के साथ खड़े हैं?
5: पहली बार नहीं करा रहे, हम तो हर मंगलवार को पार्टी ऑफिस उत्तरकांड कराते थे। तो अब ये समय आ गया है कि ऐसे राक्षस जो सनातन धर्म का चादर का सनातनी बन रहे थे, उससे हमारा धर्म बचे। आज हम ये पूजा अर्चना भी करेंगे। अब देखिए, अगर ये सनातनी होते तो उनको खुशी होती ना कि भाई सनातन धर्म और फैल रहा है, हर जगह प्रभु का नाम लिया जा रहा है, लेकिन नहीं, वो बिलबिला रहे हैं।
0: जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटिक्स हैज इरप्टेड इनटू अ फ्रेश वॉर ऑफ वर्ड्स। Chief Minister Omar Abdullah has alleged that National Conference MLA from Jammu was offered between 20 to 30 crore to defect. Omar claims the alleged offer also included a cabinet berth and a promise of restoring Jammu and Kashmir statehood if the MLA switched sides. The BJP has strongly denied allegations. BJP leader Ravinder Rena has dismissed the claims as baseless and misleading and challenged Omar Abdullah to make any evidence public.
6: आज ये बीजेपी वाले कहते हैं हम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे। अरे ना, आपकी बात पे यकीन कौन करेगा? आप तो साजिश करते हुए थकते नहीं हो, आप जमात को तोड़ते हुए थकते नहीं हो। इस मुल्क के किस कोने में आपने जमातों को नहीं तोड़ा? हम किस मुंह से, आप किस मुंह से कहोगे कि झूठ हम बोल रहे हैं? देखिए महाराष्ट्र का हाल, क्या किया आपने शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे साहब की पार्टियों को? देखिए वेस्ट बंगाल का हाल, क्या किया आपने ममता बनर्जी की पार्टी को? देखिए आम आदमी पार्टी हमारे हमसाये में पंजाब में, कितने एमपी लिए आपने वहां से?
7: उमर साहब उन लीडरों में से लीडर नहीं जो झूठ मारते हैं। उमर साहब जो बात कहते हैं पहले उसके पूरा फैक्ट्स तक जाते हैं, फिर उमर साहब बयान देते हैं। अब बीजेपी पे हमने ये सवाल खड़ा किया है तो कहीं ना कहीं कोई सच्चाई तो है। हाँ, अब चोर खुद थोड़ा कहेगा मैं चोरी करता हूँ, तो अब चोर मचाए शोर, बीजेपी का हाल वही है, तो इसलिए अब वो शोर मचा रहे हैं तो मचाने दीजिए। लेकिन इतनी जरूर है कि आज बीजेपी को उमर साहब ने, जम्मू कश्मीर की बीजेपी को उमर साहब ने एक्सपोज कर दिया।
8: आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने एक बेहद ही गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय बयान दिया है, जब उन्होंने बगैर किसी तथ्य के आधार पर यह अनर्गल आरोप लगाने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई ने इस वक्तव्य की तीव्र निंदा करते हुए उनसे सीधे सीधे कहा है कि या तो वो सबूत प्रस्तुत करें अथवा वो माफी मांगे।
9: बहुत ही भ्रमित करने वाला बयान कि उनकी सरकार को गिराने की साजिश हो रही है और 20 करोड़ 30 करोड़ का इल्जाम जो उन्होंने लगाया है ये पूरी तरह से बेबुनियाद है, आधारहीन, तथ्यहीन है, ये मिसलीडिंग है और बेसलेस एलिगेशंस हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो जबरदस्त हंगामा उठा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्रियों के खिलाफ, शायद उस भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने की ये कोशिश है। उमर अब्दुल्ला साहब का ये बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सत्य से बहुत दूर है, भ्रमित करने वाला है।
0: And there's a rift in Punjab Congress that has intensified after the Channi faction met. Channi faction met the Punjab Congress in charge Bhupesh Baghel, demanding removal of the current Punjab LOP Raja Wari. Channi demonstrated his strength at the meeting. 12 MLAs and 82 former candidates were present. Bhupesh Baghel assured that the message would be conveyed to party high command and also told media that there is no one upset and there is no infighting in Punjab Congress. MP Randhawa said that the party must reverse its decision sometimes and they don't want a compromise leader. Raja Waring told the media that he and Randhawa will sort out their problems very soon.
10: Dekho saryan ne apni gal keh layi hai aur us gal de vichon Baghel saab ne saryan di gal sun layi hai. ਦੇਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਨਵੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਵੇ ਕਰਨਗੇ।
11: हाईकमान का फैसला है, उस पे किसी का एतराज नहीं है, सब हाईकमान के साथ है। कुछ बातें हैं जिसको हमारे साथियों ने रखा और मैंने सभी साथियों से को विश्वास दिलाया, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होने के नाते मैं सभी के हितों का ध्यान रखूंगा। कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि उनके ऊपर किसी बड़े नेता का गौरव नहीं है, लेकिन यदि वो जीतने के लायक है निश्चित रूप से टिकट मिलेगी, ये मैंने विश्वास दिलाया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, कुछ बातें साथियों ने रखी है, उसको मैं हाईकमान तक पहुंचा दूंगा।
12: ये वो अगर आपको बता दिए फिर मीटिंग में क्या बोलेंगे? कोई कोई शर्त नहीं है, नहीं बड़े राजा बड़े प्रेसिडेंट है, उसको आप ही आ जाना चाहिए था। मेरी कोई नाराजगी नहीं है, मैं उसके साथ ही रहा हूँ, तो उसको दिखाना चाहिए कि किसकी नाराजगी
13: है। नहीं, कौन है कॉम्प्रोमाइज लीडर? उन्होंने नाम लिया?
14: नाम तो नहीं।
13: अगर नाम नहीं लिया तो फिर तुसी ये क्यों कह रहे हो कि कॉम्प्रोमाइज लीडर? तुसी मेरे वाल क्यों इशारा कर रहे हो? दूजी सुखजिंदर सिंह रंधावा बिल्कुल ठीक कह रहे ने, क्योंकि मैं तो सुखजिंदर सिंह रंधावा नाल ते जां ओ मेरे नाल साढ़े चार साल पौने पांच साल इकट्ठे रहे, और जे कोई ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
0: The Twisha death investigation has taken a significant turn. A major breakthrough has emerged in Twisha death case, with AIIMS submitting its final 11-page forensic report to CBI. The report is set to strengthen a crucial piece of evidence in the investigation, a gym belt allegedly linked to Tushar's death. Forensic experts have found that the injury pattern on Tushar's neck matches the belt recovered during the investigation. The report also states that skin tissue matching Tushar was detected on the belt, further reinforcing the evidentiary value. While the findings establish a possible link, the AIIMS report does not rule out any foul play at this moment. The exact cause and the circumstance of Tushar's death remain under investigation. The DMK has rejected BCK's push for a joint front with TVK against the BJP. The party has made it clear that there is no proposal to join hands with Vijay's TVK at the national level. DMK said BCK should direct the alliance proposal to Vijay, who has been calling DMK his main political rival. The party also continued its attack on Congress, alleging it was betrayed over political interests. DMK said that the Congress failed to act as a true India bloc partner, further highlighting growing differences within opposition. VCK chief has been battling and talking about the fact that perhaps DMK and TVK alliance on the national front is good for the state of Tamil Nadu.
15: Our leaders, look, this problem is between DMK and Congress. Actually, Congress backstabbed DMK just after the defeat. Just for a couple of ministership in the state politics, in the state government, they failed to view it as a national, what to say, point of view, national politics, as India bloc, because they'll be losing if DMK is coming out of India bloc, that will cost him 22 MPs out of this. So VCK is trying to patch it up, but our leaders, I don't think they will go along with the VCK's proposal.
16: Right, he's that may be his view. But where he should say, he is with the TVK in the alliance now. He is a man, is a minister. He should talk to Vijay, not to us, or just express the public. He should talk to Vijay. Why should he talk to us? Vijay says that we are his main enemies. When Vijay's stand is that, how can we both be in the same alliance? So he may wish anything. It is Thirumavalam's view. But how is it possible when Vijay's attack is directly against DMK? What can we do?
0: Let's listen in to what VCK chief told Thirumavalam has said.
17: TVK enna solraga enga kolgai edirindraanga okay DMK enna solraga ivula naala naan eduthukkom thodandhu edirkumraanga India bloc enna solrudhu avangala edirpadhu dhaan avasiyam illai. அப்போ ஏன் இங்கே ஒரே அணிக்கு வரக்கூடாது? இதுதான் திருமாவளவன் எடுத்து வந்திருக்கிறேன். என்ன தப்பு இது? கேரளாவில் காங்கிரஸ் இடதுசாரிகளும் பயங்கரமான மோதல். பினராயி விஜயன் ஆர்எஸ்எஸ் காரவனே பேசுறார். ராகுல் காந்தி அங்கே இந்தியா பிளாக்ல கூட்டணியில் மார்க்சிஸ்டும் உட்கார்ந்து காங்கிரஸும் உட்கார்ந்து. மேற்கு வங்கத்தில் மம்தா பானர்ஜிக்கும் காங்கிரசுக்கும் சண்டை. ஆனா இந்தியா பிளாக்ல ரெண்டு பேரும் வந்து ஒன்னா உட்கார்றாங்க. தமிழ்நாட்டில் அப்படி ஒரு அரசு நடக்கக்கூடாதா? இதை திருமாவளவன் சொன்னா உங்களால் அதை புரிந்து கொள்ள முடியாதா?
0: Now talking about what has happened so far as the Bengaluru delivery horror story is concerned. A routine parcel delivery turned into a nightmare for a Bengaluru woman after a delivery agent allegedly flushed his private parts inside her home. A Bengaluru woman has alleged that the delivery agent entered her home without permission, claiming he wanted to use the washroom. She accused that he flushed his private parts before leaving. It's a big NDTV impact. The police have arrested the accused and further investigation is underway. The delivery agent is facing three charges under Bharatiya Nyaya Sahita. These include allegations of sexual harassment, insulting and outraging a woman's modesty, unlawfully entering a residence. And the woman has claimed that despite a repeated request and refusal to allow him to enter the house, he entered her premises. The delivery agent allegedly forced his way inside, and moments later, after coming out, he exposed himself to her.
18: मैं नहीं छोड़ूंगी इसको. मैं पक्का पुलिस स्टेशन जाऊंगी और इसके खिलाफ मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी. और फ्लिपकार्ट मिंत्रा रिक्वेस्ट हूँ कि किस टाइप के डिलीवरी बॉय आप लोग हायर करते हो, क्या आप लोग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं करते हो? पैसे लेके पेमेंट कर रही थी, मेरे को वॉशरूम जाना है। मैं बोली नहीं भैया, मैं अलाउड नहीं करूँगी, सॉरी। बहुत फोर्स करने लगे, नहीं मैम प्लीज प्लीज प्लीज मेरे को जाना है, बहुत इमरजेंसी, थोड़ा करना और इंडियन मिक्स करके बात करना। मैं बोली नो सर, मैं आपको नहीं अलाउ करूंगी, आई एम सॉरी, बहुत फोर्स किया। तो बोली नहीं सर, मैं अकेले रहती हूँ, मेरे घर में फैमिली भी नहीं है अभी, मैं आपको नहीं अलाउ करूंगी, मैं किसी को नहीं अलाउ करती हूँ, अब इनका सिचुएशन अच्छा नहीं चल रहा, आई एम सॉरी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इतना फोर्स किया, मैं नहीं नहीं बोली, उसके बाद मैं दरवाजे के बंद कर रही थी, अंदर शूज निकाल के फोर्सफुली वॉशरूम चले गया, मैं उसको मना नहीं करी, फोर्सफुली चले गया।
0: We'll continue tracking that story and much more on the other side of a quick break.
19: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
20: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Raisha Sehgal. What's happening?
19: The show that sets the prime time agenda.
20: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
19: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
21: Your first move sets the day. And in markets, being early is the edge. The edge begins the night before.
22: Before India wakes up, the newsroom is already buzzing because the market rewards those who are prepared.
23: That's where we come in, tracking momentum and where the markets could move next.
21: I decode the global pulse, shaping the market mood.
22: I bring insights that help you make decisions that matter.
23: Insight by insight, call by call. That's how we give you a head start to the day's trade.
21: So get ready with us every morning before the opening bell on India Market Open.
0: They say morning shows the day. Markets often have other plans. By midday, the story can be very different. That's when the right insights helps you rethink the day. Trades, trends, the moves that matter. Join me, Nisha Poddar, for Markets at 12, your edge for every move.
21: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
24: The news. Ayush, since when do we do scripts? Fair point. Picture this, the biggest stage. Floodlights,
25: wow.
24: 4K, the works.
25: Where's the hook?
24: There's going to be celebrities and guaranteed eyeballs.
25: Where's the hook?
24: Think about this, front page advertisements and hoardings.
25: Bro, where's the hook?
24: Cross-platform, digital first, virality.
25: Without a hook, no way. The message is clear. It's 2026. You've got to be real in a world of reels. You've got to be original in a world where everything seems generated.
24: That's it. That's what we're looking for.
25: The best campaign.
24: The hot.
0: Welcome back. The US-Iran standoff is spiraling with fresh strikes, counterattacks, and tough warnings raising fears of a wider Gulf conflict. Iran has shut the Strait of Hormuz, claiming it blocked an illegal US move, while US accuses Iran of attacking a cargo ship in the strategic waterway. Refuting all the claims by Iran, U.S. CENTCOM says that Hormuz is open for all those vessels and Iran does not control the strait. U.S. has launched a third wave of strikes on Iran, saying that operation is meant to weaken Tehran's ability to threaten commercial shipping. Iran's parliament speaker says that the era of one-sided deal is over, while Washington warns Iran that they'll pay a heavy price if attacks continue. The confrontation between Washington and Tehran is becoming increasingly personal. Iran's new supreme leader, Mujtaba Khamenei, has vowed revenge following the killing of his father. while US President Donald Trump has warned of an overwhelming military response if Iran targets him. Take a look at this report.
1: The war rhetoric in West Asia is heating up. The messaging has turned personal. Iran's new supreme leader, Mujtaba Khamenei, is vowing revenge for his father.
2: عهد می‌بندیم که انتقام خون پاک شما و همه شهیدان این دو جنگ را از قاتلین جنایتکار و بی آبرو بگیریم. این انتقام خواست ملت ماست و به طور حتمی باید صورت بگیرد.
1: Mujtaba's remarks came amid growing anger in Iran, with calls for retaliation against those responsible for Ayatollah Khamenei's killing. The response from Washington has been equally uncompromising. Trump has issued one of his strongest warnings yet. He says that any attempt by Iran to assassinate him would trigger a massive US military response. Trump said American missiles are locked and loaded and warned Tehran would face unprecedented consequences. The latest war of words comes days after intense confrontation between Washington and Tehran. US strikes targeted Iranian nuclear and military facilities, while Iran retaliated with large-scale missile attacks against American positions in the region. The exchange raised fears of a broader conflict engulfing West Asia. Meanwhile, room for diplomacy remains open. Washington and Tehran held high-stakes indirect negotiations in Muscat, with Oman acting as the key mediator between both sides. The talks are being brokered by Omani Foreign Minister Badr al-Busaidi. The US delegation is being led by Witkoff with Rubio and Kushner. Representing Iran is Abbas Araghchi, who has been their negotiator. But for now, the battlefield has moved from missiles to negotiations. But with threats still echoing from both capitals, the outcome of these talks is still unclear. Bureau report, NDTV World.
0: The Elon Musk Sam Altman feud has flared up once again. Musk has revived his scam Altman attack on X, accusing the OpenAI CEO of misleading people. Altman has hit back, taking a swipe at Musk's AI ambitions and XAI projects. Once co-founders of OpenAI, the two are now locked in a bitter battle over artificial intelligence, business in the future, or one of the world's most influential and disruptive technologies. More in this report.
3: Two tech giants, two billionaires, one battle that refuses to end. Elon Musk and Sam Altman are back at war, trading fresh attacks in their long-running feud over OpenAI, artificial intelligence, and billions of dollars at stake. The latest showdown erupted on social media platform X after Musk revived his explosive scam Altman attack. Musk accused Altman of taking what he called scamming to an entirely new level. The OpenAI CEO accused Musk of selling investors a short-term vision around his AI ambitions. A direct swipe at Musk's AI data center expansion plans. This is not a new rivalry. It's a feud that began with a shared dream that turned into one of Silicon Valley's biggest battles. In 2015, Musk, Altman, and Greg Brockman created OpenAI with a mission, building safe artificial intelligence for humanity. But the partnership soon collapsed. In 2018, Musk stepped away from OpenAI's board, citing concerns over Tesla's AI interests. He later launched into AI, turning a former ally into a direct competitor. The war moved from boardrooms to courtrooms in 2024. Musk sued OpenAI, accusing the company of abandoning its original non-profit mission after moving towards a for-profit structure. The fight escalated this year in 2026 when Musk launched personal attacks branding Altman, Scamp Altman, and Greg Brockman, Stockman. Musk also bought billions in damages over OpenAI's restructuring. The courtroom battle reached its trial in California. Musk told jurors that he felt duped, while also acknowledging that his own AI company uses technology influenced by OpenAI models. But the jury rejected the claims that were being made by Elon Musk, ruling against him. Musk promised to appeal, repeating his accusations that Altman and Brockman had benefited from what he called the stealing of a charity. Now, the gloves are off again. Musk has revived his attack. Altman has fired back. What began as a mission to build AI for humanity has transformed into a Silicon Valley showdown over control, over money, and the future of artificial intelligence. Bureau Report, NDTV World.
0: And a state of emergency has been declared in parts of southern China after hundreds of snakes invaded residential areas. Floodwaters unleashed by Typhoon Mayasak destroyed a snake breeding farm, releasing nearly 900 reptiles into nearby villages. With more heavy rain forecasts, local authorities have issued urgent public safety warning. A special report.
4: A terrifying ordeal for residents in China's Guangxi region. Typhoon Mayasak's rains caused reservoirs to overflow and embankments to collapse, sending violent floodwaters through Dengwei village and destroying a local snake breeding facility. The collapse unleashed between 800 to 900 snakes into residential streets and flooded homes. It's a race against time to recover the escaped reptiles before they disappear into the wreckage. Emergency teams and villagers are working round the clock to get hold of these snakes. Authorities have confirmed the incident and declared a state of emergency. They are strongly urging residents to remain indoors and avoid the floodwaters. But forecasters warned of further rain. This raises further concerns over flooding and danger beneath the surface.
0: Well, that story and much more up on our website, ndtv.com. With that, it's a wrap on this edition. Thank you so much for watching.

0: The Delhi politics has once again turned into a battle over faith and optics. Arvind Kejriwal today participated in a Sundarkand part in Delhi, but BJP has launched a sharp attack, calling the event a political gimmick. AAP said that the prayers were organized in keeping with the tradition and were meant to seek blessings as safeguard religion. BJP has alleged that Kejriwal becomes Chunavi Hindu whenever elections approach, claiming that the move is aimed at protecting and projecting AAP as a Hindu favorable party ahead of the UP polls. AAP has hit back, saying party has been organizing Sundarkand part every Tuesday, insisting prayers have nothing to do with elections. Listen in to some reactions on the story.
1: Kejriwal sahab rajnitik Hindu hain. Aaj unko Bhagwan Ram bhi yaad aa rahe hain. Inhone bhi afsarvadi bhagat bante hue Delhi mein Sundarkand part 2200-2400 जगह पे होगा, हर महीने के पहले मंगलवार में होगा। कब कहा था ये? जब 2024 का चुनाव आने वाला था तो जनवरी 2024 में इन्होंने कहा, और ये कहा था कि हम लंबा चलाएंगे इसको। कितना लंबा चला इसका जवाब भी केजरीवाल साहब दे दें। ये केवल और केवल राजनीतिक हिंदू हैं, बगुला भगत केजरीवाल। इस समय उनको फिर राम याद आया है।
2: अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं, और ये हम पहली बार नहीं बोल रहे। जब जब चुनाव आते हैं, अरविंद केजरीवाल के जो कर्म होते हैं वो प्रूफ कर देते हैं कि वो चुनावी हिंदू हैं। आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और एक कैंपेन चलाने की बात कर रहे हैं कि हम लोग जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसको लेके हम सिग्नेचर कैंपेन करेंगे। ये सब दिखाता है कि चूंकि वहां उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं, इसलिए आज अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा गैंग चुनावी हिंदू बनकर हिंदू बनने का एक स्वांग रच रहा है।
3: आप लोगों ने सुंदरकांड का ये जो आयोजन किया है राम मंदिर मुद्दे को उठाते हुए, बीजेपी लगातार बोल रही है कि आप लोग चुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व का लाइन पे काम करना शुरू कर देते हैं। बीजेपी के आरोपों पर क्या आपका जवाब हो?
4: देखिए, कोई चुनाव है ही नहीं दिल्ली में, तो अभी एक साल पहले चुनाव हुआ है। दिल्ली में चार साल बाद चुनाव है, वो कौन से चुनाव की बात कर रहे हैं? और अगर किसी और राज्यों की बात कर रहे हैं तो भारत में तो हर साल कम से कम चार पांच राज्यों में हर साल चुनाव होते हैं। और अरविंद केजरीवाल ने, मुझे लगता है कि भारत में पहली बार ऐसा हुआ, लाखों बुज़ुर्गों को तीर्थयात्रा पर भेजा, तब कौन से चुनाव थे? क्या भारतीय जनता पार्टी चंदा चोरों के साथ खड़ी है? अगर चंदा चोरों के ऊपर कोई बात हो रही है, उनको फांसी की सज़ा मांगी जा रही है, उन पर कार्रवाई की मांग हो रही है, तो भाजपा के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्या वो चंदा चोरों के साथ खड़े हैं?
5: पहली बार नहीं करा रहे, हम तो हर मंगलवार को पार्टी ऑफिस उत्तरकांड कराते थे। तो अब ये समय आ गया है कि ऐसे राक्षस जो सनातन धर्म का चादर का सनातनी बन रहे थे, उससे हमारा धर्म बचे। आज हम ये पूजा अर्चना भी करेंगे। अब देखिए, अगर ये सनातनी होते तो उनको खुशी होती ना कि भाई सनातन धर्म और फैल रहा है, हर जगह प्रभु का नाम लिया जा रहा है, लेकिन नहीं, वो बिलबिला रहे हैं।
0: जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटिक्स हैज इरप्टेड इनटू अ फ्रेश वॉर ऑफ वर्ड्स। Chief Minister Omar Abdullah has alleged that National Conference MLA from Jammu was offered between 20 to 30 crore to defect. Omar claims the alleged offer also included a cabinet berth and a promise of restoring Jammu and Kashmir statehood if the MLA switched sides. The BJP has strongly denied allegations. BJP leader Ravinder Rena has dismissed the claims as baseless and misleading and challenged Omar Abdullah to make any evidence public.
6: आज ये बीजेपी वाले कहते हैं हम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे। अरे ना, आपकी बात पे यकीन कौन करेगा? आप तो साजिश करते हुए थकते नहीं हो, आप जमात को तोड़ते हुए थकते नहीं हो। इस मुल्क के किस कोने में आपने जमातों को नहीं तोड़ा? हम किस मुंह से, आप किस मुंह से कहोगे कि झूठ हम बोल रहे हैं? देखिए महाराष्ट्र का हाल, क्या किया आपने शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे साहब की पार्टियों को? देखिए वेस्ट बंगाल का हाल, क्या किया आपने ममता बनर्जी की पार्टी को? देखिए आम आदमी पार्टी हमारे हमसाये में पंजाब में, कितने एमपी लिए आपने वहां से?
7: उमर साहब उन लीडरों में से लीडर नहीं जो झूठ मारते हैं। उमर साहब जो बात कहते हैं पहले उसके पूरा फैक्ट्स तक जाते हैं, फिर उमर साहब बयान देते हैं। अब बीजेपी पे हमने ये सवाल खड़ा किया है तो कहीं ना कहीं कोई सच्चाई तो है। हाँ, अब चोर खुद थोड़ा कहेगा मैं चोरी करता हूँ, तो अब चोर मचाए शोर, बीजेपी का हाल वही है, तो इसलिए अब वो शोर मचा रहे हैं तो मचाने दीजिए। लेकिन इतनी जरूर है कि आज बीजेपी को उमर साहब ने, जम्मू कश्मीर की बीजेपी को उमर साहब ने एक्सपोज कर दिया।
8: आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने एक बेहद ही गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय बयान दिया है, जब उन्होंने बगैर किसी तथ्य के आधार पर यह अनर्गल आरोप लगाने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई ने इस वक्तव्य की तीव्र निंदा करते हुए उनसे सीधे सीधे कहा है कि या तो वो सबूत प्रस्तुत करें अथवा वो माफी मांगे।
9: बहुत ही भ्रमित करने वाला बयान कि उनकी सरकार को गिराने की साजिश हो रही है और 20 करोड़

0: 30 करोड़ का इल्ज़ाम जो उन्होंने लगाया है ये पूरी तरह से बेबुनियाद है, आधारहीन, तथ्यहीन है, ये मिसलीडिंग है और बेसलेस एलिगेशंस हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो ज़बरदस्त हंगामा उठा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्रियों के खिलाफ, शायद उस भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने की ये कोशिश है। उमर अब्दुल्ला साहब का ये बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सत्य से बहुत दूर है, भ्रमित करने वाला है।
1: And there's a rift in Punjab Congress that has intensified after the Channi faction met. Channi faction met the Punjab Congress in charge Bhupesh Baghel, demanding removal of the current Punjab LOP Raja Waring. Channi demonstrated his strength at the meeting. 12 MLAs and 82 former candidates were present. Bhupesh Baghel assured that the message would be conveyed to party high command and also told media that there is no one upset and there is no infighting in Punjab Congress. MP Randhawa said that the party must reverse its decision sometimes and they don't want a compromise leader. Raja Waring told the media that he and Randhawa will sort out their problems very soon.
2: Dekho saryan ne apni gal keh li hai aur us gal de vichon Baghel saab ne saryan di gal sun li hai. Dekho hamesha main vi ik state de vich secretary hega, sanu sari kehnde aa पर असी अप्रोप्रिएट लैवल ते जाके वो कन्वे करते हैं कि आ प्रॉब्लम्स हैगी आ, इहदा सल्यूशन जिहड़ा आ इदां दा सल्यूशन हैगा और मेरा ख्याल है कि वो सारियां चीजां जिहड़ियां कन्वे करनगे।
3: हाई कमान का फैसला है उस पे किसी का एतराज नहीं है, सब हाई कमान के साथ है। कुछ बातें हैं जिसको हमारे साथियों ने रखा और मैंने सभी साथियों से को विश्वास दिलाया कि जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होने के नाते मैं सभी के हितों का ध्यान रखूंगा। कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि उनके ऊपर किसी बड़े नेता का गौरव नहीं है, लेकिन यदि वो जीतने के लायक है निश्चित रूप से टिकट मिलेगी, ये मैंने विश्वास दिलाया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, कुछ बातें साथियों ने रखी है उसको मैं हाईकमान तक पहुंचा दूंगा।
4: ये वो अगर आपको ही बता दिए फिर मीटिंग में क्या बोलेंगे? कोई शर्त नहीं है। नहीं, बड़े राजा बड़े प्रेसिडेंट है, उसको आप ही आ जाना चाहिए था। मेरी कोई नाराजगी नहीं है, मैं उसके साथ ही रहा हूँ, तो उसको देखना चाहिए कि किसकी नाराजगी
5: है। नहीं, कौन है कॉम्प्रोमाइज लीडर? उन्होंने नाम लिया?
6: नाम तो नहीं।
5: अगर नाम नहीं लिया तो फिर तुसी ये क्यों कह रहे हो कि कॉम्प्रोमाइज लीडर? तुसी मेरे वाल क्यों इशारा कर रहे हो? दूजी सुखजिंदर सिंह रंधावा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैं तो सुखजिंदर सिंह रंधावा नाल ते जां वो मेरे नाल साढ़े चार साल पौने पांच साल इकट्ठे रहे हैं। और जे कोई साढ़े चो कॉम्प्रोमाइज़ हुंदा तो असी इन्ना चिर इकट्ठे नहीं रह सकते सी जो उन्होंने बयान दिते। पर उन्हां दी गल बिल्कुल ठीक है कि कोई भी स्लीपर सैल पार्टी दे विच कॉम्प्रोमाइज लीडर नहीं होना चाहिए।
1: The Twisha death investigation has taken a significant turn. A major breakthrough has emerged in Twisha death case with AIIMS submitting its final 11-page forensic report to CBI. The report is set to strengthen a crucial piece of evidence in the investigation, a gym belt allegedly linked to Twisha's death. Forensic experts have found that the injury pattern on Twisha's neck matches the belt recovered during the investigation. The report also states that skin tissue matching Twisha was detected on the belt, further reinforcing the evidentiary value. While the findings establish a possible link, the AIIMS report does not rule out any foul play at this moment. The exact cause and the circumstance of Twisha's death remain under investigation. The DMK has rejected BCK's push for a joint front with TVK against the BJP. The party has made it clear that there is no proposal to join hands with Vijay's TVK at the national level. DMK said VCK should direct the alliance proposal to Vijay, who has been calling DMK his main political rival. The party also continued its attack on Congress, alleging it was betrayed over political interests. DMK said that the Congress failed to act as a true India bloc partner, further highlighting growing differences within opposition. VCK chief has been

0: along with the VCK's proposal.
1: Right, that may be his view, but where he should say, he is with the TVK in the alliance now, he is a man, is a minister. He should talk to Vijay, not to us, or just express the public. He should talk to Vijay. Why should he talk to us? Vijay says that we are his main enemies. When Vijay's stand is that, how can we both be in the same alliance? So, he may wish anything. It is Thirumavalan's view. But how is it possible when Vijay's attack is directly against DMK? What can we do?
2: Let's listen in to what VCK chief told Thirumavalan has said.
3: TVK என்ன சொல்றாங்க எங்க கொள்கை எதிர்ப்புன்றாங்க ஓகே டிஎம்கே என்ன சொல்றாங்க இவ்வளவு நாளா நாங்க எதிர்த்துக்கிறோம் தொடர்ந்து எதிர்ப்புன்றாங்க இந்தியா பிளாக் என்ன சொல்றது அவங்களை எதிர்ப்பது தான் அரசியல் இல்லை அப்ப ஏன் இங்க ஒரே அணிக்கு வரக்கூடாது இதுதான் திருமாவளவன் எடுத்து வந்திருக்கேன் என்ன தப்பு இது கேரளாவில் காங்கிரஸ் இடதுசாரிகளும் பயங்கரமான மோதல் பினராயி விஜயன் ஆர்எஸ்எஸ் காரவனே பேசுறாரு ராகுல் காந்தி அங்கே இந்தியா பிளாக்கில் கூட்டணியில் மார்க்சிஸ்டும் உட்கார்ந்து காங்கிரஸும் உட்கார்ந்து மேற்கு வங்கத்தில் மம்தா பானர்ஜிக்கும் காங்கிரஸுக்கும் சண்டை ஆனால் இந்தியா பிளாக்கில் ரெண்டு பேரும் வந்து ஒன்றா உட்கார்ந்தாங்க தமிழ்நாட்டில் அப்படி ஒரு அரசு நடக்கக்கூடாதா இதை திருமாவளவன் சொன்னால் உங்களால் அதை புரிந்து கொள்ள முடியாதா
2: Now, talking about what has happened so far as the Bengaluru delivery horror story is concerned. A routine parcel delivery turned into a nightmare for a Bengaluru woman after a delivery agent allegedly flashed his private parts inside her home. A Bengaluru woman has alleged that the delivery agent entered her home without permission, claiming he wanted to use the washroom. She accused that he flashed his private parts before leaving. It's a big NDTV impact. The police have arrested the accused and further investigation is underway. The delivery agent is facing three charges under Bharatiya Nyaya Sanhita. These include allegations of sexual harassment, insulting and outraging a woman's modesty, unlawfully entering a residence. And the woman has claimed that despite a repeated request and refusal to allow him to enter the house, he entered her premises. The delivery agent allegedly forced his way inside and moments later after coming out, he exposed himself to her.
4: मैं नहीं छोड़ूंगी इसको मैं पक्का पुलिस स्टेशन जाऊंगी और इसके खिलाफ मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी और फ्लिपकार्ट मिंत्रा रिक्वेस्ट हूँ कि किस टाइप के डिलीवरी बॉय आप लोग हायर करते हो क्या आप लोग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं करते हो पार्सल लेके पेमेंट कर रही थी मेरे को बोलता मैम मेरे को वॉशरूम जाना है मैं बोली नहीं भैया मैं अलाउड नहीं करूंगी सॉरी बहुत फोर्स करने लगे नहीं मैम प्लीज प्लीज प्लीज कुछ आना ही बहुत इमरजेंसी थोड़ा करना और एक दिन मिक्स करके बात करना मम्मी नो सर मैं आपको नहीं अलाउ करूंगी आई एम सॉरी बहुत फोर्स किया तो बोली नहीं सर मैं अकेले रहती हूँ मेरे घर में फैमिली भी नहीं है अभी मैं आपको नहीं अलाउ करूंगी मैं किसी को नहीं अलाउ करती हूँ अब इनका सिचुएशन अच्छा नहीं चल रहा आई एम सॉरी ट्राई टू अंडरस्टैंड इतना फोर्स किया मैं नहीं नहीं बोली उसके बाद मैं दरवाजे के पास खड़ी थी अंदर शू निकाल के फोर्सफुली वॉशरूम चले गया
2: We'll continue tracking that story and much more on the other side of a quick break.
5: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
6: So many attacks.
5: The chaos and cries of disaster zones. The fighter jet cockpits and the world's most defining interviews.
6: It's incredible.
5: He has seen history break live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
6: Welcome to Left, Right, and Center.
5: Hard facts.
6: War struck country.
5: Hard questions.
6: In the Ukraine.
5: 30 years of trust.
7: In the Kargil area.
6: North Ukraine.
8: In France. In Italy.
6: At Srinagar.
8: France.
6: Vishnu Shom for NDTV.
5: Vishnu Shom. Only on NDTV.

0: भगत केजरीवाल, इस समय उनको फिर राम याद आया है।
1: अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं और ये हम पहली बार नहीं बोल रहे, जब जब चुनाव आते हैं अरविंद केजरीवाल के जो कर्म होते हैं वो प्रूफ कर देते हैं कि वो चुनावी हिंदू हैं। आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और एक कैंपेन चलाने की बात कर रहे हैं कि हम लोग जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसको लेके हम सिग्नेचर कैंपेन करेंगे। ये सब दिखाता है कि चूंकि वहां उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं इसलिए आज अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा गैंग चुनावी हिंदू बनकर हिंदू बनने का एक सॉन्ग रच रहा है।
2: आप लोगों ने सुंदरकांड का ये जो आयोजन किया है राम मंदिर मुद्दे को उठाते हुए, बीजेपी लगातार बोल रही है कि आप लोग चुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व का लाइन पे काम करना शुरू कर देते हैं, बीजेपी के आरोपों पे क्या आपका जवाब हो?
3: देखिए कोई चुनाव है ही नहीं, दिल्ली में तो अभी एक साल पहले चुनाव हुआ है, दिल्ली में चार साल बाद चुनाव है, वो कौन से चुनाव की बात कर रहे हैं? और अगर किसी और राज्यों की बात कर रहे हैं तो भारत में तो हर साल कम से कम 4-5 राज्यों में हर साल चुनाव होते हैं और अरविंद केजरीवाल ने, मुझे लगता है कि भारत में पहली बार ऐसा हुआ, लाखों बुजुर्गों को तीर्थयात्रा पे भेजा, तब कौन से चुनाव थे? क्या भारतीय जनता पार्टी चंदा चोरों के साथ खड़ी है? अगर चंदा चोरों के ऊपर कोई बात हो रही है, उनको फांसी की सज़ा मांगी जा रही है, उन पर कार्रवाई की मांग हो रही है, तो भाजपा के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्या वो चंदा चोरों के साथ खड़े हैं?
4: पहली बार नहीं करा रहे, हम तो हर मंगलवार को पार्टी ऑफिस उत्तरकांड कराते थे। तो अब ये समय आ गया है कि ऐसे राक्षस जो सनातन धर्म का चादर होकर सनातनी बन रहे थे उससे हमारा धर्म बचे, आज हम ये पूजा अर्चना भी करेंगे। अब देखिए अगर ये सनातनी होते तो उनको खुशी होती ना कि भाई सनातन धर्म और फैल रहा है, हर जगह प्रभु का नाम लिया जा रहा है, लेकिन नहीं, वो बिलबिला रहे हैं।
5: जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटिक्स हैज इरप्टेड इनटू अ फ्रेश वॉर ऑफ वर्ड्स। Chief Minister Omar Abdullah has alleged that National Conference MLA from Jammu was offered between 20 to 30 crore to defect. Omar claims the alleged offer also included a cabinet berth and a promise of restoring Jammu and Kashmir's statehood if the MLA switched sides. The BJP has strongly denied allegations. BJP leader Ravinder Rena has dismissed the claims as baseless and misleading and challenged Omar Abdullah to make any evidence public.
6: आज ये बीजेपी वाले कहते हैं हम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे। अरे ना, आपकी बात पे यकीन कौन करेगा? आप तो साजिश करते हुए थकते नहीं हो, आप जमात को तोड़ते हुए थकते नहीं हो। इस मुल्क के किस कोने में आपने जमातों को नहीं तोड़ा? हम किस मुंह से, आप किस मुंह से कहोगे कि झूठ हम बोल रहे हैं? देखिए महाराष्ट्र का हाल क्या किया आपने शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे साहब की पार्टियों को। देखिए वेस्ट बंगाल का हाल क्या किया आपने ममता बनर्जी की पार्टी को। देखिए आम आदमी पार्टी हमारे हमसाये में पंजाब में कितने एमपी लिए आपने वहां से।
7: उमर साहब उन लीडरों में से लीडर नहीं जो झूठ मारते हैं। उमर साहब जो बात कहते हैं पहले उसके पूरा फैक्ट्स तक जाते हैं फिर उमर साहब बयान देते हैं। तब बीजेपी पे हमने ये सवाल खड़ा किया है तो कहीं ना कहीं कोई सच्चाई तो है। हाँ, अब चोर खुद थोड़ा कहेगा मैं चोरी करता हूँ, तो अब चोर मचाए शोर, बीजेपी का हाल वही है, तो इसलिए अब वो शोर मचा रहे हैं तो मचाने दीजिए। लेकिन इतनी जरूर है कि आज बीजेपी को उमर साहब ने, जम्मू कश्मीर की बीजेपी को उमर साहब ने एक्सपोज कर दिया।
8: आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने एक बेहद ही गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय बयान दिया है जब उन्होंने बगैर किसी तथ्य के आधार पर यह अनर्गल आरोप लगाने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई ने इस वक्तव्य की तीव्र निंदा करते हुए उनसे सीधे सीधे कहा है कि या तो वो सबूत प्रस्तुत करें अथवा वो माफी मांगे।
9: बहुत ही भ्रमित करने वाला बयान कि उनकी सरकार को गिराने की साजिश हो रही है और 20 करोड़ 30 करोड़ का इल्जाम जो उन्होंने लगाया है ये पूरी तरह से बेबुनियाद है, आधारहीन, तथ्यहीन है, ये मिसलीडिंग है और बेसलेस एलिगेशंस हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो जबरदस्त हंगामा उठा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्रियों के खिलाफ, शायद उस भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने की ये कोशिश है। उमर अब्दुल्ला साहब का ये बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सत्य से बहुत दूर है, भ्रमित करने वाला है।
5: And there's a rift in Punjab Congress that has intensified after the Channi faction met. Channi faction met the Punjab Congress in charge Bhupesh Baghel, demanding removal of the current Punjab LOP Raja Waring. Channi demonstrated his strength at the meeting. 12 MLAs and 82 former candidates were present. Bhupesh Baghel assured that the message would be conveyed to party high command and also told media that there is no one upset and there is no infighting in Punjab Congress. MP Randhawa said that the party must reverse its decision sometimes and they don't want a compromise leader. Raja Waring told the media that he and Randhawa will sort out their problems very soon.
10: Dekho saryan ne apni gal keh li hai aur us gal de vichon Baghel saab ne saryan di gal sun li hai. Dekho hamesha main vi ik state de vich secretary hega, sanu sari kehnde aa पर असी अप्रोप्रिएट लैवल ते जाके वो कन्वे करते हैं कि आ प्रॉब्लम्स हैगी आ, इहदा सल्यूशन जिहड़ा आ इदां दा सल्यूशन हैगा और मेरा ख्याल है कि वो सारियां चीजां जिहड़ियां कन्वे करनगे।
11: हाई कमान का फैसला है उस पे किसी का एतराज नहीं है, सब हाई कमान के साथ है। कुछ बातें हैं जिसको हमारे साथियों ने रखा और मैंने सभी साथियों से को विश्वास दिलाया कि जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होने के नाते मैं सभी के हितों का ध्यान रखूंगा। कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि उनके ऊपर किसी बड़े नेता का गौरव हस्त नहीं है, लेकिन यदि वो जीतने के लायक है तो निश्चित रूप से टिकट मिलेगी, ये मैंने विश्वास दिलाया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, कुछ बातें साथियों ने रखी है उसको मैं हाईकमान तक पहुंचा दूंगा।
12: ये वो अगर आपको ही बता दिए फिर मीटिंग में क्या बोलेंगे? कोई शर्त नहीं है। नहीं, बड़े राजा बड़े प्रेसिडेंट है, उसको आप ही आ जाना चाहिए था। मेरी कोई नाराजगी नहीं है, मैं उसके साथ ही रहा हूँ, तो उसको देखना चाहिए कि किसकी नाराजगी
13: है। नहीं, कौन है कॉम्प्रोमाइज लीडर? उन्होंने नाम लिया?
14: नाम तो नहीं।
13: अगर नाम नहीं लिया तो फिर तुम ये क्यों कह रहे हो कि कॉम्प्रोमाइज लीडर? तुम मेरे वाल क्यों इशारा कर रहे हो? दूजी सुखजिंदर सिंह रंधावा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैं तो सुखजिंदर सिंह रंधावा नाल ते जां वो मेरे नाल साढ़े चार साल पौने पांच साल इकट्ठे रहे हैं। और जे कोई साढ़े चो कॉम्प्रोमाइज हुंदा तो असी इन्ना चिर इकट्ठे नहीं रह सकते सी जो उन्होंने बयान दिते। पर उन्हां दी गल बिल्कुल ठीक है कि कोई भी स्लीपर सैल पार्टी दे विच कॉम्प्रोमाइज लीडर नहीं होना चाहिए।
5: The Twisha death investigation has taken a significant turn. A major breakthrough has emerged in Twisha death case with AIIMS submitting its final 11-page forensic report to CBI. The report is set to strengthen a crucial piece of evidence in the investigation, a gym belt allegedly linked to Twisha's death. Forensic experts have found that the injury pattern on Twisha's neck matches the belt recovered during the investigation. The report also states that skin tissue matching Twisha was detected on the belt, further reinforcing the evidentiary value. While the findings establish a possible link, the AIIMS report does not rule out any foul play at this moment. The exact cause and the circumstance of Twisha's death remain under investigation. The DMK has rejected BCK's push for a joint front with TVK against the BJP. The party has made it clear that there is no proposal to join hands with Vijay's TVK at the national level. DMK said VCK should direct the alliance proposal to Vijay, who has been calling DMK his main political rival. The party also continued its attack on Congress, alleging it was betrayed over political interests. DMK said that the Congress failed to act as a true India bloc partner, further highlighting growing differences within opposition. VCK chief has been battling and talking about the fact that perhaps DMK and TVK alliance on the national front is good for the state of Tamil Nadu.
15: Our leaders look this problem is between

0: DMK and Congress. Actually, Congress backstabbed DMK just after the defeat. Just for a couple of ministership in the state politics, in the state government, they failed to view it as a national, point of view, national politics, as India bloc, because they'll be losing, if DMK is coming out of India bloc, that will cost them 22 MPs out of this. So VCK is trying to patch it up, but our leaders, I don't think they will go along with the VCK's proposal.
1: Right, that may be his view. But where he should say, he is with the TVK in the alliance now. He is a man, is a minister. He should talk to Vijay, not to us, or just express the public. He should talk to Vijay. Why should he talk to us? Vijay says that we are his main enemies. When Vijay's stand is that, how can we both be in the same alliance? So he may wish anything. It is Thirumavalan's view. But how is it possible when Vijay's attack is directly against DMK? What can we do?
2: Let's listen in to what VCK chief Thol Thirumavalan has said.
3: TVK என்ன சொல்றாங்க எங்க கொள்கை எதிர்க்கின்றாங்க ஓகே டிஎம்கே என்ன சொல்றாங்க இவ்வளவு நாள் நாங்க எடுத்துக்கிறதும் தொடர்ந்து எதிர்க்குன்றாங்க இந்தியா பிளாக் என்ன சொல்றது அவங்களை எதிர்ப்பது தான் அரசியல் இல்லை அப்ப ஏன் இங்க ஒரே அணிக்கு வரக்கூடாது இதுதான் திருமாவளவன் எடுத்து வரைக்கும் என்ன தப்பு இருக்குது கேரளாவில் காங்கிரஸ் இடதுசாரிகளும் பயங்கரமான மோதல் பினராயி விஜயன் ஆர்எஸ்எஸ் காரவனே பேசுறாரு ராகுல் காந்தி அங்கே இந்தியா பிளாக்கில் கூட்டணியில் மார்க்சிஸ்டும் உட்கார்ந்து காங்கிரஸும் உட்கார் மேற்கு வங்கத்தில் மம்தா பானர்ஜிக்கும் காங்கிரஸுக்கும் சண்டை ஆனால் இந்தியா பிளாக்கில் ரெண்டு பேரும் வந்து ஒன்றா உட்கார்றாங்க தமிழ்நாட்டில் அப்படி ஒரு அரசு நடக்கக்கூடாதா இதை திருமாவளவன் சொன்னால் உங்களால் அதை புரிந்து கொள்ள முடியாதா
2: Now talking about what has happened so far as the Bengaluru delivery horror story is concerned. A routine parcel delivery turned into a nightmare for a Bengaluru woman after a delivery agent allegedly flashed his private parts inside her home. A Bengaluru woman has alleged that the delivery agent entered her home without permission, claiming he wanted to use the washroom. She accused that he flashed his private parts before leaving. It's a big NDTV impact. The police have arrested the accused and further investigation is underway. The delivery agent is facing three charges under Bharatiya Nyaya Sanhita. These include allegations of sexual harassment, insulting and outraging a woman's modesty, unlawfully entering a residence. And the woman has claimed that despite a repeated request and refusal to allow him to enter the house, he entered her premises. The delivery agent allegedly forced his way inside and moments later, after coming out, he exposed himself to her.
4: मैं नहीं छोड़ूंगी इसको मैं पक्का पुलिस स्टेशन जाऊंगी और इसके खिलाफ मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी और फ्लिपकार्ट मिंत्रा रिक्वेस्ट हूँ कि किस टाइप के डिलीवरी बॉय आप लोग हायर करते हो क्या आप लोग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं करते हो पार्सल लेके पेमेंट करे थे मैं को बोलता मैं वॉशरूम जाना है मैं बोली नहीं भैया मैं अलाउड नहीं करूंगी सॉरी बहुत फोर्स करने लगे नहीं मैम प्लीज प्लीज प्लीज मेरे को जाना है बहुत इमरजेंसी थोड़ा करना और इंडियन मिक्स करके बात करना मैं बोली नो सर मैं आपको नहीं अलाउ करूंगी आई एम सॉरी बहुत फोर्स किया तो बोली नहीं सर मैं अकेले रहती हूँ मेरे घर में फैमिली भी नहीं है अभी मैं आपको नहीं अलाउ करूंगी मैं किसी को नहीं अलाउ करती हूँ अब इनका सिचुएशन अच्छा नहीं चल रहा आई एम सॉरी ट्राई टू अंडरस्टैंड इतना फोर्स किया मैं नहीं नहीं बोली उसके बाद मैं दरवाजे के बंद करी थी अंदर शूज निकाल के फोर्सफुली वॉशरूम चले गया
2: We'll continue tracking that story and much more on the other side of a quick break.

0: The Delhi politics has once again turned into a battle over faith and optics. Arvind Kejriwal today participated in a Sundarkand part in Delhi, but BJP has launched a sharp attack, calling the event a political gimmick. AAP said that the prayers were organized in keeping with the tradition and were meant to seek blessings and as safeguard religion. BJP has alleged that Kejriwal becomes Chunavi Hindu whenever elections approach, claiming that the move is aimed at protecting and projecting AAP as a Hindu favorable party ahead of the UP polls. AAP has hit back, saying party has been organizing Sundarkand part every Tuesday, insisting prayers have nothing to do with elections. Listen in to some reactions on the story.
1: Kejriwal sahab rajnitik Hindu hain. आज उनको भगवान राम भी याद आ रहे हैं. इन्होंने भी अवसरवादी भगत बनते हुए दिल्ली में सुंदरकांड पाठ 2200-2400 जगह पे होगा, हर महीने के पहले मंगलवार में होगा. कब कहा था ये? जब 2024 का चुनाव आने वाला था, तो जनवरी 2024 में इन्होंने कहा, और ये कहा था कि हम लंबा चलाएंगे इसको. कितना लंबा चला इसका जवाब भी केजरीवाल साहब दे दें. ये केवल और केवल राजनीतिक हिंदू हैं, बगुला भगत केजरीवाल. इस समय उनको फिर राम याद आया है.
2: अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं, और ये हम पहली बार नहीं बोल रहे. जब जब चुनाव आते हैं, अरविंद केजरीवाल के जो कर्म होते हैं वो प्रूफ कर देते हैं कि वो चुनावी हिंदू हैं. आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और एक कैंपेन चलाने की बात कर रहे हैं कि हम लोग जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसको लेके हम सिग्नेचर कैंपेन करेंगे. ये सब दिखाता है कि चूंकि वहां उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं, इसलिए आज अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा गैंग चुनावी हिंदू बनकर हिंदू बनने का एक सॉन्ग रच रहा है.
3: आप लोगों ने सुंदरकांड का ये जो आयोजन किया है राम मंदिर मुद्दे को उठाते हुए, बीजेपी लगातार बोल रही है कि आप लोग चुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व का लाइन पे काम करना शुरू कर देते हैं. बीजेपी के आरोपों पे क्या आपका जवाब हो?
4: देखिए, कोई चुनाव है ही नहीं. दिल्ली में तो अभी एक साल पहले चुनाव हुआ है, दिल्ली में चार साल बाद चुनाव है. वो कौन से चुनाव की बात कर रहे हैं? और अगर किसी और राज्यों की बात कर रहे हैं तो भारत में तो हर साल कम से कम 4-5 राज्यों में हर साल चुनाव होते हैं. और अरविंद केजरीवाल ने, मुझे लगता है कि भारत में पहली बार ऐसा हुआ, लाखों बुजुर्गों को तीर्थयात्रा पे भेजा, तब कौन से चुनाव थे? क्या भारतीय जनता पार्टी चंदा चोरों के साथ खड़ी है? अगर चंदा चोरों के ऊपर कोई बात हो रही है, उनको फांसी की सज़ा मांगी जा रही है, उन पे कार्रवाई की मांग हो रही है, तो भाजपा के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्या वो चंदा चोरों के साथ खड़े हैं?
5: पहली बार नहीं करा रहे, हम तो हर मंगलवार को पार्टी ऑफिस उत्तरकांड कराते थे. तो अब ये समय आ गया है कि ऐसे राक्षस जो सनातन धर्म का चादर का सनातनी बन रहे थे, उससे हमारा धर्म बचे. आज हम ये पूजा अर्चना भी करेंगे. अब देखिए, अगर ये सनातनी होते तो उनको खुशी होती ना कि भाई सनातन धर्म और फैल रहा है, हर जगह प्रभु का नाम लिया जा रहा है. लेकिन नहीं, वो बिलबिला रहे हैं.
0: जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटिक्स हैज इरप्टेड इनटू अ फ्रेश वॉर ऑफ वर्ड्स. Chief Minister Omar Abdullah has alleged that National Conference MLA from Jammu was offered between 20 to 30 crore to defect. Omar claims the alleged offer also included a cabinet berth and a promise of restoring Jammu and Kashmir statehood if the MLA switched sides. The BJP has strongly denied allegations. BJP leader Ravinder Rena has dismissed the claims as baseless and misleading and challenged Omar Abdullah to make any evidence public.
6: आज ये बीजेपी वाले कहते हैं हम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे. अरे ना, आपकी बात पे यकीन कौन करेगा? आप तो साजिश करते हुए थकते नहीं हो, आप जमात को तोड़ते हुए थकते नहीं हो. इस मुल्क के किस कोने में आपने जमातों को नहीं तोड़ा? हम किस मुंह से, आप किस मुंह से कहोगे कि झूठ हम बोल रहे हैं? देखिए महाराष्ट्र का हाल, क्या किया आपने शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे साहब की पार्टियों को? देखिए वेस्ट बंगाल का हाल, क्या किया आपने ममता बनर्जी की पार्टी को? देखिए आम आदमी पार्टी हमारे हमसाये में पंजाब में, कितने एमपी लिए आपने वहां से?
7: उमर साहब उन लीडरों में से लीडर नहीं जो झूठ मारते हैं। उमर साहब जो बात कहते हैं पहले उसके पूरा फैक्ट्स तक जाते हैं, फिर उमर साहब बयान देते हैं। अब बीजेपी पे हमने ये सवाल खड़ा किया है तो कहीं ना कहीं कोई सच्चाई तो है। हाँ, अब चोर खुद थोड़ा कहेगा मैं चोरी करता हूँ, तो अब चोर मचाए शोर, बीजेपी का हाल वही है, तो इसलिए अब वो शोर मचा रहे हैं तो मचाने दीजिए। लेकिन इतनी जरूर है कि आज बीजेपी को उमर साहब ने, जम्मू कश्मीर की बीजेपी को उमर साहब ने एक्सपोज कर दिया।
8: आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने एक बेहद ही गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय बयान दिया है, जब उन्होंने बगैर किसी तथ्य के आधार पर यह अनर्गल आरोप लगाने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई ने इस वक्तव्य की तीव्र निंदा करते हुए उनसे सीधे सीधे कहा है कि या तो वो सबूत प्रस्तुत करें अथवा वो माफी मांगे।
9: बहुत ही भ्रमित करने वाला बयान कि उनकी सरकार को गिराने की साजिश हो रही है और 20 करोड़ 30 करोड़ का इल्जाम जो उन्होंने लगाया है ये पूरी तरह से बेबुनियाद है, आधारहीन, तथ्यहीन है, ये मिसलीडिंग है और बेसलेस एलिगेशंस हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो जबरदस्त हंगामा उठा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्रियों के खिलाफ, शायद उस भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने की ये कोशिश है। उमर अब्दुल्ला साहब का ये बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सत्य से बहुत दूर है, भ्रमित करने वाला है।
0: And there's a rift in Punjab Congress that has intensified after the Channi faction met. Channi faction met the Punjab Congress in charge Bhupesh Baghel, demanding removal of the current Punjab LOP Raja Waring. Channi demonstrated his strength at the meeting. 12 MLAs and 82 former candidates were present. Bhupesh Baghel assured that the message would be conveyed to party high command and also told media that there is no one upset and there is no infighting in Punjab Congress. MP Randhawa said that the party must reverse its decision sometimes and they don't want a compromise leader. Raja Waring told the media that he and Randhawa will sort out their problems very soon.
10: Dekho saryan ne apni gal keh li hai aur us gal de vichon Baghel saab ne saryan di gal sun li hai. देखो हमेशा मैं भी एक स्टेट दे विच सेक्टरी हैगा, सानू सारे ही कहिंदे आ, पर असी अप्रोप्रिएट लैवल ते जाके वो कन्वे करदे कि आ प्रॉब्लम्स हैगी आ, इहदा सोल्यूशन जिहड़ा आ इदां दा सोल्यूशन हैगा, और मेरा ख्याल है कि वो सारियां चीजां जिहड़ियां कन्वे करनगे।
11: हाई कमान का फैसला है, उस पे किसी का एतराज नहीं है, सब हाई कमान के साथ है। कुछ बातें हैं जिसको हमारे साथियों ने रखा और मैंने सभी साथियों से को विश्वास दिलाया कि जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होने के नाते मैं सभी के हितों का ध्यान रखूंगा। कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि उनके ऊपर किसी बड़े नेता का बर्दाश्त नहीं है, लेकिन यदि वो जीतने के लायक है निश्चित रूप से टिकट मिलेगी, ये मैंने विश्वास दिलाया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, कुछ बातें साथियों ने रखी है, उसको मैं हाईकमान तक पहुंचा दूंगा।
12: ये वो अगर आपको ही बता दिए फिर मीटिंग में क्या बोलेंगे? कोई कोई शर्त नहीं है, नहीं बड़े राजा बड़े प्रेसिडेंट है, उसको आप ही आ जाना चाहिए था। मेरी कोई नाराजगी नहीं है, मैं उसके साथ ही रहा हूँ, तो उसको देखना चाहिए कि किसकी नाराजगी।
13: नहीं, कौन है कॉम्प्रोमाइज लीडर? उन्होंने नाम लिया?
14: नाम तो नहीं।
13: अगर नाम नहीं लिया तो फिर तुसी ये क्यों कह रहे हो कि कॉम्प्रोमाइज लीडर? तुसी मेरे वाल क्यों इशारा कर रहे हो?
14: दूजी
13: सुखजिंदर सिंह रंधावा बिल्कुल ठीक कह रहे ने, क्योंकि मैं तो सुखजिंदर सिंह रंधावा नाल ते जां ओ मेरे नाल साढ़े चार साल पौने पांच साल इकट्ठे रहे, और जे कोई साढ़े चो कॉम्प्रोमाइज हुंदा तो असी इन्ना चिर कट्ठे नहीं रह सकते सी, जो उन्हां दी उन्होंने बयान दिते। पर उन्हां दी गल बिल्कुल ठीक है कि कोई भी स्लीपर सैल पार्टी दे विच कॉम्प्रोमाइज लीडर नहीं होना चाहिए।
0: The Twisha death investigation has taken a significant turn. A major breakthrough has emerged in Twisha death case, with AIIMS submitting its final 11-page forensic report to CBI. The report is set to strengthen a crucial piece of evidence in the investigation, a gym belt allegedly linked to Twisha's death. Forensic experts have found that the injury pattern on Twisha's neck matches the belt recovered during the investigation. The report also states that skin tissue matching Twisha was detected on the belt, further reinforcing the evidentiary value. While the findings establish a possible link, the AIIMS report does not rule out any foul play at this moment. The exact cause and the circumstance of Twisha's death remain under investigation. The DMK has rejected BCK's push for a joint front with TVK against the BJP. The party has made it clear that there is no proposal to join hands with Vijay's TVK at the national level. DMK said BCK should direct the alliance proposal to Vijay, who has been calling DMK his main political rival. The party also continued its attack on Congress, alleging it was betrayed over political interests. DMK said that the Congress failed to act as a true India bloc partner, further highlighting growing differences within opposition. VCK chief has been battling and talking about the fact that perhaps DMK and TVK alliance on the national front is good for the state of Tamil Nadu.
14: Our leaders, look, this problem is between DMK and Congress. Actually, Congress backstabbed DMK just after the defeat. Just for a couple of ministership in the state politics, in the state government, they failed to view it as a national, point of view, national politics, as India bloc, because they'll be losing. If DMK is coming out of India bloc, that will cost him 22 MPs out of this. So VCK is trying to patch it up, but our leaders, I don't think they will go along with the VCK's proposal.
15: Right, that may be his view. But where he should say, he is with the TVK in the alliance now. He is a man, is a minister. He should talk to Vijay, not to us, or just express the public. He should talk to Vijay. Why should he talk to us? Vijay says that we are his main enemies. When Vijay's stand is that, how can we both be in the same alliance?

0: என்ன தப்பு இருக்குது? கேரளாவில் காங்கிரஸ் இடதுசாரிகளும் பயங்கரமான மோதல். பினராயி விஜயன் ஆர்எஸ்எஸ் காரவனே பேசுறார், ராகுல் காந்தி அங்க இந்தியா பிளாக்ல கூட்டணியில மார்க்சிஸ்டும் உட்கார்ந்து காங்கிரஸும் உட்கார்ந்து. மேற்கு வங்கத்தில் மம்தா பானர்ஜிக்கும் காங்கிரசுக்கும் சண்டை, ஆனா இந்தியா பிளாக்ல ரெண்டு பேரும் ஒன்னா உட்கார்ந்து. தமிழ்நாட்டில் அப்படி ஒரு அரசியல் நடக்கக்கூடாதா? இதை திருமாவளவன் சொன்னா உங்களால் அதை புரிந்து கொள்ள முடியாதா?
1: Now talking about what has happened so far as the Bengaluru delivery horror story is concerned. A routine parcel delivery turned into a nightmare for a Bengaluru woman after a delivery agent allegedly flushed his private parts inside her home. A Bengaluru woman has alleged that the delivery agent entered her home without permission, claiming he wanted to use the washroom. She accused that he flushed his private parts before leaving. It's a big NDTV impact. The police have arrested the accused and further investigation is underway. The delivery agent is facing three charges under Bharatiya Nyaya Sanhita. These include allegations of sexual harassment, insulting and outraging a woman's modesty, unlawfully entering a residence, and the woman has claimed that despite a repeated request and refusal to allow him to enter the house, he entered her premises. The delivery agent allegedly forced his way inside, and moments later, after coming out, he exposed himself to her.
2: मैं नहीं छोड़ूंगी इसको, मैं पक्का पुलिस स्टेशन जाऊंगी और इसके खिलाफ मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी। और फ्लिपकार्ट मिंत्रा रिक्वेस्ट हूँ कि किस टाइप के डिलीवरी बॉय आप लोग हायर करते हो? क्या आप लोग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं करते हो? पार्सल लेके पेमेंट कर रही थी, मैं को बोलता मैम मेरे को वॉशरूम जाना है। मैं बोली नहीं भैया, मैं अलाउड नहीं करूंगी, सॉरी। बहुत फोर्स करने लगे, नहीं मैम प्लीज प्लीज प्लीज मेरे को जाना है, बहुत इमरजेंसी, थोड़ा करना और इंडियन मिक्स करके बात करना। मैं बोली नो सर, मैं आपको नहीं अलाउ करूंगी, आई एम सॉरी। बहुत फोर्स किया तो बोली नहीं सर, मैं अकेले रहती हूँ, मेरे घर में फैमिली भी नहीं है अभी, मैं आपको नहीं अलाउ करूंगी, मैं किसी को नहीं अलाउ करती हूँ, अभी इनका सिचुएशन अच्छा नहीं चल रहा, आई एम सॉरी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इतना फोर्स किया, मैं नहीं नहीं बोली, उसके बाद मैं दरवाजे के बंद करे थे, अंदर शूज निकाल के फोर्सफुली वॉशरूम चले गया।
1: We'll continue tracking that story and much more on the other side of a quick break.
3: Buy, sell, hold, hold.
4: Confused? What to buy? What to sell? What to hold? Ask Profit with Mahima and Puneet, Monday to Friday, 10:30 a.m. only on NDTV Profit.
5: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
6: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
7: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal. What's happening?
6: The show that sets the prime time agenda.
7: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
6: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
8: Your first move sets the day. And in markets, being early is the edge. The edge begins the night before.
9: Before India wakes up, the newsroom is already buzzing because the market rewards those who are prepared.
10: That's where we come in, tracking momentum and where the markets could move next.
8: I decode the global pulse, shaping the market mood.
9: I bring insights that help you make decisions that matter.
1: Welcome back. The US-Iran standoff is spiraling with fresh strikes counterattack.

0: The Delhi politics has once again turned into a battle over faith and optics. Arvind Kejriwal today participated in a Sundarkand part in Delhi, but BJP has launched a sharp attack, calling the event a political gimmick. AAP said that the prayers were organized in keeping with the tradition and were meant to seek blessings as safeguard religion. BJP has alleged that Kejriwal becomes Chunavi Hindu whenever elections approach, claiming that the move is aimed at protecting and projecting AAP as a Hindu favorable party ahead of the UP polls. AAP has hit back, saying party has been organizing Sundarkand part every Tuesday, insisting prayers have nothing to do with elections. Listen in to some reactions on the story.
1: Kejriwal sahab rajnitik Hindu hain. आज उनको भगवान राम भी याद आ रहे हैं. इन्होंने भी अवसरवादी भगत बनते हुए दिल्ली में सुंदरकांड पाठ 2200-2400 जगह पे होगा, हर महीने के पहले मंगलवार में होगा. कब कहा था ये? जब 2024 का चुनाव आने वाला था, तो जनवरी 2024 में इन्होंने कहा, और ये कहा था कि हम लंबा चलाएंगे इसको. कितना लंबा चलाए इसका जवाब भी केजरीवाल साहब दे दें. ये केवल और केवल राजनीतिक हिंदू हैं. बगुला भगत केजरीवाल, इस समय उनको फिर राम याद आया है.
2: अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं, और ये हम पहली बार नहीं बोल रहे. जब जब चुनाव आते हैं, अरविंद केजरीवाल के जो कर्म होते हैं वो प्रूफ कर देते हैं कि वो चुनावी हिंदू हैं. आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और एक कैंपेन चलाने की बात कर रहे हैं कि हम लोग जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसको लेके हम सिग्नेचर कैंपेन करेंगे. ये सब दिखाता है कि चूंकि वहां उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं, इसलिए आज अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा गैंग चुनावी हिंदू बनकर हिंदू बनने का एक स्वांग रच रहा है.
3: आप लोगों ने सुंदरकांड का ये जो आयोजन किया है राम मंदिर मुद्दे को उठाते हुए, बीजेपी लगातार बोल रही है कि आप लोग चुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व का लाइन पे काम करना शुरू कर देते हैं. बीजेपी के आरोपों पे क्या आपका जवाब हो?
4: देखिए, कोई चुनाव है ही नहीं दिल्ली में. तो अभी एक साल पहले चुनाव हुआ है, दिल्ली में चार साल बाद चुनाव है. वो कौन से चुनाव की बात कर रहे हैं? और अगर किसी और राज्यों की बात कर रहे हैं तो भारत में तो हर

0: हर साल कम से कम 4-5 राज्यों में हर साल चुनाव होते हैं, और अरविंद केजरीवाल ने, मुझे लगता है कि भारत में पहली बार ऐसा हुआ, लाखों बुजुर्गों को तीर्थयात्रा पे भेजा, तब कौन से चुनाव थे? क्या भारतीय जनता पार्टी चंदा चोरों के साथ खड़ी है? अगर चंदा चोरों के ऊपर कोई बात हो रही है, उनको फांसी की सज़ा मांगी जा रही है, उन पर कार्रवाई की मांग हो रही है, तो भाजपा के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्या वो चंदा चोरों के साथ खड़े हैं?
1: पहली बार नहीं करा रहे, हम तो हर मंगलवार को पार्टी ऑफिस उत्तरकांड कराते थे। तो अब ये समय आ गया है कि ऐसे राक्षस जो सनातन धर्म का चादर का सनातनी बन रहे थे, उससे हमारा धर्म बचे। आज हम ये पूजा अर्चना भी करेंगे। अब देखिए, अगर ये सनातनी होते तो उनको खुशी होती ना कि भाई सनातन धर्म और फैल रहा है, हर जगह प्रभु का नाम लिया जा रहा है, लेकिन नहीं, वो बिलबिला रहे हैं।
2: जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटिक्स हैज इरप्टेड इनटू अ फ्रेश वॉर ऑफ वर्ड्स। Chief Minister Omar Abdullah has alleged that National Conference MLA from Jammu was offered between 20 to 30 crore to defect. Omar claims the alleged offer also included a cabinet berth and a promise of restoring Jammu and Kashmir statehood if the MLA switched sides. The BJP has strongly denied allegations. BJP leader Ravinder Rena has dismissed the claims as baseless and misleading and challenged Omar Abdullah to make any evidence public.
3: आज ये बीजेपी वाले कहते हैं हम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे। अरे ना, आपकी बात पे यकीन कौन करेगा? आप तो साजिश करते हुए थकते नहीं हो, आप जमात को तोड़ते हुए थकते नहीं हो। इस मुल्क के किस कोने में आपने जमातों को नहीं तोड़ा? हम किस मुंह से, आप किस मुंह से कहोगे कि झूठ हम बोल रहे हैं? देखिए महाराष्ट्र का हाल, क्या किया आपने शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे साहब की पार्टियों को? देखिए वेस्ट बंगाल का हाल, क्या किया आपने ममता बनर्जी की पार्टी को? देखिए आम आदमी पार्टी हमारे हमसाये में पंजाब में, कितने एमपी लिए आपने वहां से?
4: उमर साहब उन लीडरों में से लीडर नहीं जो झूठ मारते हैं। उमर साहब जो बात कहते हैं पहले उसके पूरा फैक्ट्स तक जाते हैं, फिर उमर साहब बयान देते हैं। तब बीजेपी पे हमने ये सवाल खड़ा किया है तो कहीं ना कहीं कोई सच्चाई तो है। हाँ, अब चोर खुद थोड़ा कहेगा मैं चोरी करता हूँ, तो अब चोर मचाए शोर, बीजेपी का हाल वही है, तो इसलिए अब वो शोर मचा रहे हैं तो मचाने दीजिए। लेकिन इतनी जरूर है कि आज बीजेपी को उमर साहब ने, जम्मू कश्मीर की बीजेपी को उमर साहब ने एक्सपोज कर दिया।
5: आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने एक बेहद ही गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय बयान दिया है, जब उन्होंने बगैर किसी तथ्य के आधार पर यह अनर्गल आरोप लगाने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई ने इस वक्तव्य की तीव्र निंदा करते हुए उनसे सीधे सीधे कहा है कि या तो वो सबूत प्रस्तुत करें अथवा वो माफी मांगे।
6: बहुत ही भ्रमित करने वाला बयान कि उनकी सरकार को गिराने की साजिश हो रही है, और 20 करोड़ 30 करोड़ का इल्जाम जो उन्होंने लगाया है ये पूरी तरह से बेबुनियाद है, आधारहीन, तथ्यहीन है, ये मिसलीडिंग है और बेसलेस एलिगेशन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो जबरदस्त हंगामा उठा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्रियों के खिलाफ, शायद उस भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने की ये कोशिश है। उमर अब्दुल्ला साहब का ये बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सत्य से बहुत दूर है, भ्रमित करने वाला है।
2: And there's a rift in Punjab Congress that has intensified after the Channi faction met. Channi faction met the Punjab Congress in charge Bhupesh Baghel, demanding removal of the current Punjab LOP Raja Waring. Channi demonstrated his strength at the meeting. 12 MLAs and 82 former candidates were present. Bhupesh Baghel assured that the message would be conveyed to party high command and also told media that there is no one upset and there is no infighting in Punjab Congress. MP Randhawa said that the party must reverse its decision sometimes and they don't want a compromise leader. Raja Waring told the media that he and Randhawa will sort out their problems very soon.
7: Dekho, saryan ne apni gal keh li hai. और उस गल दे विचों बघेल साहब ने सारे की गल सुन

0: Tirumavalam, it is Tirumavalam's view. But how is it possible when Vijay's attack is directly against DMK? What can we do?
1: Let's listen in to what VCK chief told Tirumavalavan has said.
2: TVK என்ன சொல்றாங்க எங்க கொள்கை எதிர்ப்புன்றாங்க ஓகே டிஎம்கே என்ன சொல்றாங்க இவ்வளவு நாள் நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம் தொடர்ந்து எதிர்ப்புன்றாங்க இந்தியா பிளாக் என்ன சொல்றது அவங்களை எதிர்ப்பது தான் அரசியல் இல்லை அப்போ ஏன் இங்கே ஒரே அணிக்கு வரக்கூடாது இதுதான் திருமாவளவன் எடுத்து வந்திருக்கேன் என்ன தப்பு இது கேரளாவில் காங்கிரஸ் இடதுசாரிகளும் பயங்கரமான மோதல் பினராயி விஜயன் ஆர்எஸ்எஸ் காரவனே பேசுறாரு ராகுல் காந்தி அங்க இந்தியா பிளாக்ல கூட்டணியில மார்க்சிஸ்டும் உட்கார்ந்து காங்கிரஸும் உட்கார்ந்து மேற்கு வங்கத்தில் மம்தா பானர்ஜிக்கும் காங்கிரசுக்கும் சண்டை ஆனா இந்தியா பிளாக்ல ரெண்டு பேரும் ஒன்னா உட்கார்ந்தாங்க தமிழ்நாட்டில் அப்படி ஒரு அரசு நடக்கக்கூடாதா இதை திருமாவளவன் சொன்னா உங்களால் அதை புரிந்து கொள்ள முடியாதா
1: Now talking about what has happened so far as the Bengaluru delivery horror story is concerned. A routine parcel delivery turned into a nightmare for a Bengaluru woman after a delivery agent allegedly flashed his private parts inside her home. A Bengaluru woman has alleged that the delivery agent entered her home without permission, claiming he wanted to use the washroom. She accused that he flashed his private parts before leaving. It's a big NDTV impact. The police have arrested the accused and further investigation is underway. The delivery agent is facing three charges under Bharatiya Nyaya Sanhita. These include allegations of sexual harassment, insulting and outraging a woman's modesty, unlawfully entering a residence, and the woman has claimed that despite a repeated request and refusal to allow him to enter the house, he entered her premises. The delivery agent allegedly forced his way inside and moments later, after coming out, he exposed himself to her.
3: मैं नहीं छोड़ूंगी इसको मैं पक्का पुलिस स्टेशन जाऊंगी और इसके खिलाफ मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी और फ्लिपकार्ट मिंत्रा रिक्वेस्ट हूँ कि किस टाइप के डिलीवरी बॉय आप लोग हायर करते हो क्या आप लोग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं करते हो पार्सल लेके पेमेंट कर रही थी मेरे को बोलता मैम मेरे को वॉशरूम जाना है मैं बोली नहीं भैया मैं अलाउड नहीं करूंगी सॉरी बहुत फोर्स करने लगे नहीं मैम प्लीज प्लीज प्लीज कुछ आना ही बहुत इमरजेंसी थोड़ा करना और एक दिन मिक्स करके बात करना मम्मी नो सर मैं आपको नहीं अलाउ करूंगी आई एम सॉरी बहुत फोर्स किया तो बोली नहीं सर मैं अकेले रहती हूँ मेरे घर में फैमिली भी नहीं है अभी मैं आपको नहीं अलाउ करूंगी मैं किसी को नहीं अलाउ करती हूँ अब इनका सिचुएशन अच्छा नहीं चल रहा है आई एम सॉरी ट्राई टू अंडरस्टैंड इतना फोर्स किया मैं नहीं नहीं बोली उसके बाद मैं दरवाजे के पास खड़ी थी अंदर शूज निकाल के फोर्सफुली वॉशरूम चले गया
1: We'll continue tracking that story and much more on the other side of a quick break.

0: The Delhi politics has once again turned into a battle over faith and optics. Arvind Kejriwal today participated in a Sundarkand part in Delhi, but BJP has launched a sharp attack, calling the event a political gimmick. AAP said that the prayers were organized in keeping with the tradition and were meant to seek blessings as safeguard religion. BJP has alleged that Kejriwal becomes Chunavi Hindu whenever elections approach, claiming that the move is aimed at protecting and projecting AAP as a Hindu favorable party ahead of the UP polls. AAP has hit back, saying party has been organizing Sundarkand part every Tuesday, insisting prayers have nothing to do with elections. Listen in to some reactions on the story.
1: Kejriwal sahab rajnitik Hindu hain. आज उनको भगवान राम भी याद आ रहे हैं. इन्होंने भी अवसरवादी भगत बनते हुए दिल्ली में सुंदरकांड पाठ 2200-2400 जगह पे होगा, हर महीने के पहले मंगलवार में होगा. कब कहा था ये? जब 2024 का चुनाव आने वाला था तो जनवरी 2024 में इन्होंने कहा, और ये कहा था कि हम लंबा चलाएंगे इसको. कितना लंबा चला इसका जवाब भी केजरीवाल साहब दे दें. ये केवल और केवल राजनीतिक हिंदू हैं, बगुला भगत केजरीवाल. इस समय उनको फिर राम याद आया है.
2: अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं, और ये हम पहली बार नहीं बोल रहे. जब जब चुनाव आते हैं, अरविंद केजरीवाल के जो कर्म होते हैं वो प्रूफ कर देते हैं कि वो चुनावी हिंदू हैं. आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और एक कैंपेन चलाने की बात कर रहे हैं कि हम लोग जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसको लेके हम सिग्नेचर कैंपेन करेंगे. ये सब दिखाता है कि चूंकि वहां उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं, इसलिए आज अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा गैंग चुनावी हिंदू बनकर हिंदू बनने का एक सॉन्ग रच रहा है.
3: आप लोगों ने सुंदरकांड का ये जो आयोजन किया है राम मंदिर मुद्दे को उठाते हुए, बीजेपी लगातार बोल रही है कि आप लोग चुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व का लाइन पे काम करना शुरू कर देते हैं. बीजेपी के आरोपों पे क्या आपका जवाब हो?
4: देखिए, कोई चुनाव है ही नहीं. दिल्ली में तो अभी एक साल पहले चुनाव हुआ है, दिल्ली में चार साल बाद चुनाव है. वो कौन से चुनाव की बात कर रहे हैं? और अगर किसी और राज्यों की बात कर रहे हैं तो भारत में तो हर साल कम से कम 4-5 राज्यों में हर साल चुनाव होते हैं. और अरविंद केजरीवाल ने, मुझे लगता है कि भारत में पहली बार ऐसा हुआ, लाखों बुजुर्गों को तीर्थयात्रा पे भेजा, तब कौन से चुनाव थे? क्या भारतीय जनता पार्टी चंदा चोरों के साथ खड़ी है? अगर चंदा चोरों के ऊपर कोई बात हो रही है, उनको फांसी की सज़ा मांगी जा रही है, उन पे कार्रवाई की मांग हो रही है, तो भाजपा के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्या वो चंदा चोरों के साथ खड़े हैं?
5: पहली बार नहीं करा रहे, हम तो हर मंगलवार को पार्टी ऑफिस सुंदरकांड कराते थे. तो अब ये समय आ गया है कि ऐसे राक्षस जो सनातन धर्म का चादर का सनातनी बन रहे थे, उससे हमारा धर्म बचे. आज हम ये पूजा अर्चना भी करेंगे. अब देखिए, अगर ये सनातनी होते तो उनको खुशी होती ना कि भाई सनातन धर्म और फैल रहा है, हर जगह प्रभु का नाम लिया जा रहा है. लेकिन नहीं, वो बिलबिला रहे हैं.
0: जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटिक्स हैज इरप्टेड इनटू अ फ्रेश वॉर ऑफ वर्ड्स. Chief Minister Omar Abdullah has alleged that National Conference MLA from Jammu was offered between 20 to 30 crore to defect. Omar claims the alleged offer also included a cabinet berth and a promise of restoring Jammu and Kashmir statehood if the MLA switched sides. The BJP has strongly denied allegations. BJP leader Ravinder Rena has dismissed the claims as baseless and misleading and challenged Omar Abdullah to make any evidence public.
6: आज ये बीजेपी वाले कहते हैं हम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे. अरे ना, आपकी बात पे यकीन कौन करेगा? आप तो साजिश करते हुए थकते नहीं हो, आप जमात को तोड़ते हुए थकते नहीं हो. इस मुल्क के किस कोने में आपने जमातों को नहीं तोड़ा? हम किस मुंह से, आप किस मुंह से कहोगे कि झूठ हम बोल रहे हैं? देखिए महाराष्ट्र का हाल, क्या किया आपने शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे साहब की पार्टियों को? देखिए वेस्ट बंगाल का हाल, क्या किया आपने ममता बनर्जी की पार्टी को? देखिए आम आदमी पार्टी हमारे हमसाये में पंजाब में, कितने एमपी लिए आपने वहां से?
7: उमर साहब उन लीडरों में से लीडर नहीं जो झूठ मारते हैं। उमर साहब जो बात कहते हैं पहले उसके पूरा फैक्ट्स तक जाते हैं, फिर उमर साहब बयान देते हैं। अब बीजेपी पे हमने ये सवाल खड़ा किया है तो कहीं ना कहीं कोई सच्चाई तो है। हाँ, अब चोर खुद थोड़ा कहेगा मैं चोरी करता हूँ, तो अब चोर मचाए शोर, बीजेपी का हाल वही है, तो इसलिए अब वो शोर मचा रहे हैं तो मचाने दीजिए। लेकिन इतनी जरूर है कि आज बीजेपी को उमर साहब ने, जम्मू कश्मीर की बीजेपी को उमर साहब ने एक्सपोज कर दिया।
8: आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने एक बेहद ही गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय बयान दिया है, जब उन्होंने बगैर किसी तथ्य के आधार पर यह अनर्गल आरोप लगाने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई ने इस वक्तव्य की तीव्र निंदा करते हुए उनसे सीधे सीधे कहा है कि या तो वो सबूत प्रस्तुत करें अथवा वो माफी मांगे।
9: बहुत ही भ्रमित करने वाला बयान कि उनकी सरकार को गिराने की साजिश हो रही है और 20 करोड़ 30 करोड़ का इल्ज़ाम जो उन्होंने लगाया है ये पूरी तरह से बेबुनियाद है, आधारहीन, तथ्यहीन है, ये मिसलीडिंग है और बेसलेस एलिगेशंस हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो ज़बरदस्त हंगामा उठा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्रियों के खिलाफ, शायद उस भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने की ये कोशिश है। उमर अब्दुल्ला साहब का ये बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सत्य से बहुत दूर है, भ्रमित करने वाला है।
0: And there's a rift in Punjab Congress that has intensified after the Channi faction met. Channi faction met the Punjab Congress in charge Bhupesh Baghel, demanding removal of the current Punjab LOP Raja Waring. Channi demonstrated his strength at the meeting. 12 MLAs and 82 former candidates were present. Bhupesh Baghel assured that the message would be conveyed to party high command and also told media that there is no one upset and there is no infighting in Punjab Congress. MP Randhawa said that the party must reverse its decision sometimes and they don't want a compromise leader. Raja Waring told the media that he and Randhawa will sort out their problems very soon.
10: Dekho saryan ne apni gal keh li hai aur us gal de vichon Baghel saab ne saryan di gal sun li hai. देखो हमेशा मैं भी एक स्टेट दे विच सेक्टरी हैगा, सानू सारे ही कहिंदे आ, पर असी अप्रोप्रिएट लैवल ते जाके वो कन्वे करदे कि आ प्रॉब्लम्स हैगी आ, इहदा सोल्यूशन जिहड़ा आ इदां दा सोल्यूशन हैगा, और मेरा ख्याल है कि वो सारियां चीजां जिहड़ियां कन्वे करनगे।
11: हाई कमान का फैसला है, उस पे किसी का एतराज नहीं है, सब हाई कमान के साथ है। कुछ बातें हैं जिसको हमारे साथियों ने रखा और मैंने सभी साथियों से को विश्वास दिलाया कि जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होने के नाते मैं सभी के हितों का ध्यान रखूंगा। कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि उनके ऊपर किसी बड़े नेता को बर्दाश्त नहीं है, लेकिन यदि वो जीतने के लायक है निश्चित रूप से टिकट मिलेगी, ये मैंने विश्वास दिलाया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, कुछ बातें साथियों ने रखी है, उसको मैं हाईकमान तक पहुंचा दूंगा।
12: ये वो अगर आपको बता दिए फिर मीटिंग में क्या बोलेंगे? कोई शर्त नहीं है। नहीं, बड़े राजा बड़े प्रेसिडेंट है, उसको आप ही आ जाना चाहिए था। मेरी कोई नाराजगी नहीं है, मैं उसके साथ ही रहा हूँ, तो उसको देखना चाहिए कि किसकी नाराजगी।
13: नहीं, कौन है कॉम्प्रोमाइज लीडर? उन्होंने नाम लिया?
14: नाम तो नहीं।
13: अगर नाम नहीं लिया तो फिर तुसी ये क्यों कह रहे हो कि कॉम्प्रोमाइज लीडर? तुसी मेरे वाल क्यों इशारा कर रहे हो?
14: दूजी
13: सुखजिंदर सिंह रंधावा बिल्कुल ठीक कह रहे ने, क्योंकि मैं तो सुखजिंदर सिंह रंधावा नाल ते जां ओ मेरे नाल साढ़े चार साल पौने पांच साल इकट्ठे रहे, और जे कोई साढ़े चो कॉम्प्रोमाइज हुंदा तो असी इन्ना चिर कट्ठे नहीं रह सकते सी, जो उन्हां दी उन्होंने बयान दिते। पर उन्हां दी गल बिल्कुल ठीक है कि कोई भी स्लीपर सैल पार्टी दे विच कॉम्प्रोमाइज लीडर नहीं होना चाहिए।
0: The Twisha death investigation has taken a significant turn. A major breakthrough has emerged in Twisha death case, with AIIMS submitting its final 11-page forensic report to CBI. The report is set to strengthen a crucial piece of evidence in the investigation, a gym belt allegedly linked to Tushar's death. Forensic experts have found that the injury pattern on Tushar's neck matches the belt recovered during the investigation. The report also states that skin tissue matching Tushar was detected on the belt, further reinforcing the evidentiary value. While the findings establish a possible link, the AIIMS report does not rule out any foul play at this moment. The exact cause and the circumstance of Tushar's death remain under investigation. The DMK has rejected BCK's push for a joint front with TVK against the BJP. The party has made it clear that there is no proposal to join hands with Vijay's TVK at the national level. DMK said BCK should direct the alliance proposal to Vijay, who has been calling DMK his main political rival. The party also continued its attack on Congress, alleging it was betrayed over political interests. DMK said that the Congress failed to act as a true India bloc partner, further highlighting growing differences within opposition. VCK chief has been battling and talking about the fact that perhaps DMK and TVK alliance on the national front is good for the state of Tamil Nadu.
14: Our leaders, look, this problem is between DMK and Congress. Actually, Congress backstabbed DMK just after the defeat. Just for a couple of ministership in the state politics, in the state government, they failed to view it as a national, point of view, national politics, as India bloc, because they'll be losing. If DMK is coming out of India bloc, that will cost him 22 MPs out of this. So VCK is trying to patch it up, but our leaders, I don't think they will go along with the VCK's proposal.
15: Right, that may be his view. But where he should say, he is with the TVK in the alliance now. He is a man, is a minister. He should talk to Vijay, not to us, or just express the public. He should talk to Vijay.

0: What VCK Chief Thol Thirumavalavan has said.
1: TVK என்ன சொல்றாங்க எங்க கொள்கை எதிர்ப்புன்றாங்க ஓகே டிஎம்கே என்ன சொல்றாங்க இவ்வளவு நாள நாங்க எதிர்த்துக்கிறோம் தொடர்ந்து எதிர்ப்புன்றாங்க இந்தியா பிளாக் என்ன சொல்றது அவங்களை எதிர்ப்பது தான் அரசியல் இல்லை அப்ப ஏன் இங்க ஒரே அணிக்கு வரக்கூடாது இதுதான் திருமாவளவன் எடுத்து வந்திருக்கேன் என்ன தப்பு இது கேரளாவில் காங்கிரஸ் இடதுசாரிகளும் பயங்கரமான மோதல் பினராயி விஜயன் ஆர்எஸ்எஸ் காரவனே பேசுறார் ராகுல் காந்தி அங்கே இந்தியா பிளாக்கில் கூட்டணியில் மார்க்சிஸ்டும் உட்கார்ந்து காங்கிரஸும் உட்கார்ந்து மேற்கு வங்கத்தில் மம்தா பானர்ஜிக்கும் காங்கிரஸுக்கும் சண்டை ஆனால் இந்தியா பிளாக்கில் ரெண்டு பேரும் வந்து ஒன்றா உட்கார்றாங்க தமிழ்நாட்டில் அப்படி ஒரு அரசியல் நடக்கக்கூடாதா இதை திருமாவளவன் சொன்னால் உங்களால் அதை புரிந்து கொள்ள முடியாதா
0: Now talking about what has happened so far as far as the Bengaluru delivery horror story is concerned. A routine parcel delivery turned into a nightmare for a Bengaluru woman after a delivery agent allegedly flushed his private parts inside her home. A Bengaluru woman has alleged that the delivery agent entered her home without permission, claiming he wanted to use the washroom. She accused that he flushed his private parts before leaving. It's a big NDTV impact. The police have arrested the accused and further investigation is underway. The delivery agent is facing three charges under Bharatiya Nyaya Sanhita. These include allegations of sexual harassment, insulting and outraging a woman's modesty, unlawfully entering a residence. And the woman has claimed that despite a repeated request and refusal to allow him to enter the house, he entered her premises. The delivery agent allegedly forced his way inside and moments later after coming out, he exposed himself to her.
2: मैं नहीं छोड़ूंगी इसको मैं पक्का पुलिस स्टेशन जाऊंगी और इसके खिलाफ मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी और फ्लिपकार्ट में इंतजार रिक्वेस्ट हूँ कि किस टाइप के डिलीवरी बॉय आप लोग हायर करते हो क्या आप लोग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं करते हो पार्सल लेके पेमेंट कर रही थी मैं मेरे को वॉशरूम जाना है मैं बोली नहीं भैया मैं अलाउड नहीं करूंगी सॉरी बहुत फोर्स करने लगे नहीं मैम प्लीज प्लीज प्लीज मेरे को जाना है बहुत इमरजेंसी थोड़ा करना और इंग्लिश मिक्स करके बात करना बोली नो सर मैं आपको नहीं अलाउ करूंगी आई एम सॉरी बहुत फोर्स था तो बोली नहीं सर मैं अकेले रहती हूँ मेरे घर में फैमिली भी नहीं है अभी मैं आपको नहीं अलाउ करूंगी मैं किसी को नहीं अलाउ करती हूँ अब इनका सिचुएशन अच्छा नहीं चल रहा आई एम सॉरी ट्राई टू अंडरस्टैंड इतना फोर्स किया मैं नहीं नहीं बोली उसके बाद मैं दरवाजे के बंद कर रही थी अंदर शूज निकाल के फोर्सफुली वॉशरूम चले गया
0: We'll continue tracking that story and much more on the other side of a quick break.

0: The Delhi politics has once again turned into a battle over faith and optics. Arvind Kejriwal today participated in a Sundarkand part in Delhi, but BJP has launched a sharp attack, calling the event a political gimmick. AAP said that the prayers were organized in keeping with the tradition and were meant to seek blessings and as safeguard religion. BJP has alleged that Kejriwal becomes Chunavi Hindu whenever elections approach, claiming that the move is aimed at protecting and projecting AAP as a Hindu favorable party ahead of the UP polls. AAP has hit back, saying party has been organizing Sundarkand part every Tuesday, insisting prayers have nothing to do with elections. Listen in to some reactions on the story.
1: Kejriwal sahab rajnitik Hindu hain. आज उनको भगवान राम भी याद आ रहे हैं. इन्होंने भी अवसरवादी भगत बनते हुए दिल्ली में सुंदरकांड पाठ 2200-2400 जगह पे होगा, हर महीने के पहले मंगलवार में होगा. कब कहा था ये? जब 2024 का चुनाव आने वाला था तो जनवरी 2024 में इन्होंने कहा, और ये कहा था कि हम लंबा चलाएंगे इसको. कितना लंबा चलाए इसका जवाब भी केजरीवाल साहब दे दें. ये केवल और केवल राजनीतिक हिंदू हैं, बगुला भगत केजरीवाल. इस समय उनको फिर राम याद आया है.
2: अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं, और ये हम पहली बार नहीं बोल रहे. जब जब चुनाव आते हैं, अरविंद केजरीवाल के जो कर्म होते हैं वो प्रूफ कर देते हैं कि वो चुनावी हिंदू हैं. आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और एक कैंपेन चलाने की बात कर रहे हैं कि हम लोग जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसको लेके हम सिग्नेचर कैंपेन करेंगे. ये सब दिखाता है कि चूंकि वहां उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं, इसलिए आज अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा गैंग चुनावी हिंदू बनकर हिंदू बनने का एक सॉन्ग रच रहा है.
3: आप लोगों ने सुंदरकांड का ये जो आयोजन किया है राम मंदिर मुद्दे को उठाते हुए, बीजेपी लगातार बोल रही है कि आप लोग चुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व का लाइन पे काम करना शुरू कर देते हैं. बीजेपी के आरोपों पे क्या आपका जवाब हो?
4: देखिए, कोई चुनाव है ही नहीं. दिल्ली में तो अभी एक साल पहले चुनाव हुआ है. दिल्ली में चार साल बाद चुनाव है. वो कौन से चुनाव की बात कर रहे हैं? और अगर किसी और राज्यों की बात कर रहे हैं तो भारत में तो हर साल कम से कम 4-5 राज्यों में हर साल चुनाव होते हैं. और अरविंद केजरीवाल ने, मुझे लगता है कि भारत में पहली बार ऐसा हुआ, लाखों बुजुर्गों को तीर्थयात्रा पे भेजा. तब कौन से चुनाव थे? क्या भारतीय जनता पार्टी चंदा चोरों के साथ खड़ी है? अगर चंदा चोरों के ऊपर कोई बात हो रही है, उनको फांसी की सज़ा मांगी जा रही है, उन पे कार्रवाई की मांग हो रही है, तो भाजपा के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्या वो चंदा चोरों के साथ खड़े हैं?
5: पहली बार नहीं करा रहे हैं. हम तो हर मंगलवार को पार्टी ऑफिस सुंदरकांड कराते थे. तो अब ये समय आ गया है कि ऐसे राक्षस जो सनातन धर्म का चादर का सनातनी बन रहे थे, उससे हमारा धर्म बचे. आज हम ये पूजा अर्चना भी करेंगे. अब देखिए, अगर ये सनातनी होते तो उनको खुशी होती ना कि भाई सनातन धर्म और फैल रहा है, हर जगह प्रभु का नाम लिया जा रहा है. लेकिन नहीं, वो बिलबिला रहे हैं.
0: जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटिक्स हैज इरप्टेड इनटू अ फ्रेश वॉर ऑफ वर्ड्स. Chief Minister Omar Abdullah has alleged that National Conference MLA from Jammu was offered between 20 to 30 crore to defect. Omar claims the alleged offer also included a cabinet berth and a promise of restoring Jammu and Kashmir statehood if the MLA switched sides. The BJP has strongly denied allegations. BJP leader Ravinder Rena has dismissed the claims as baseless and misleading and challenged Omar Abdullah to make any evidence public.
6: आज ये बीजेपी वाले कहते हैं हम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे. अरे ना, आपकी बात पे यकीन कौन करेगा? आप तो साजिश करते हुए थकते नहीं हो. आप जमात को तोड़ते हुए थकते नहीं हो. इस मुल्क के किस कोने में आपने जमातों को नहीं तोड़ा? हम किस मुंह से, आप किस मुंह से कहोगे कि झूठ हम बोल रहे हैं? देखिए महाराष्ट्र का हाल क्या किया आपने शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे साहब की पार्टियों को. देखिए वेस्ट बंगाल का हाल क्या किया आपने ममता बनर्जी की पार्टी को. देखिए आम आदमी पार्टी हमारे हमसाये में पंजाब में कितने एमपी लिए आपने वहां से.
7: उमर साहब उन लीडरों में से लीडर नहीं जो झूठ मारते हैं। उमर साहब जो बात कहते हैं पहले उसके पूरा फैक्ट्स तक जाते हैं, फिर उमर साहब बयान देते हैं। अब बीजेपी पे हमने ये सवाल खड़ा किया है तो कहीं ना कहीं कोई सच्चाई तो है। हाँ, अब चोर खुद थोड़ा कहेगा मैं चोरी करता हूँ, तो अब चोर मचाए शोर, बीजेपी का हाल वही है, तो इसलिए अब वो शोर मचा रहे हैं तो मचाने दीजिए। लेकिन इतनी जरूर है कि आज बीजेपी को उमर साहब ने, जम्मू कश्मीर की बीजेपी को उमर साहब ने एक्सपोज कर दिया।
8: आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने एक बेहद ही गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय बयान दिया है, जब उन्होंने बगैर किसी तथ्य के आधार पर यह अनर्गल आरोप लगाने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई ने इस वक्तव्य की तीव्र निंदा करते हुए उनसे सीधे सीधे कहा है कि या तो वो सबूत प्रस्तुत करें अथवा वो माफी मांगे।
9: बहुत ही भ्रमित करने वाला बयान कि उनकी सरकार को गिराने की साजिश हो रही है और 20 करोड़ 30 करोड़ का इल्ज़ाम जो उन्होंने लगाया है ये पूरी तरह से बेबुनियाद है, आधारहीन तथ्यहीन है, ये मिसलीडिंग है और बेसलेस एलिगेशन हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो ज़बरदस्त हंगामा उठा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्रियों के खिलाफ, शायद उस भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने की ये कोशिश है। उमर अब्दुल्ला साहब का ये बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सत्य से बहुत दूर है, भ्रमित करने वाला है।
0: And there's a rift in Punjab Congress that has intensified after the Channi faction met. Channi faction met the Punjab Congress in charge Bhupesh Baghel, demanding removal of the current Punjab LOP Raja Wari. Channi demonstrated his strength at the meeting. 12 MLAs and 82 former candidates were present. Bhupesh Baghel assured that the message would be conveyed to party high command and also told media that there is no one upset and there is no infighting in Punjab Congress. MP Randhawa said that the party must reverse its decision sometimes and they don't want a compromise leader. Raja Waring told the media that he and Randhawa will sort out their problems very soon.
10: Dekho saryan ne apni gal keh li hai aur us gal de vichon Baghel saab ne saryan di gal sun li hai. देखो हमेशा मैं भी एक स्टेट दे विच सैकटरी हैगा, सानू सारे ही कहिंदे आ, पर असी अप्रोप्रिएट लैवल ते जाके वो कन्वे करदे कि आ प्रॉब्लम्स हैगी आ, इहदा सोल्यूशन जिहड़ा आ इदां दा सोल्यूशन हैगा, और मेरा ख्याल है कि वो सारियां चीजां जिहड़ियां कन्वे करनगे।
11: हाई कमान का फैसला है, उस पे किसी का एतराज नहीं है, सब हाई कमान के साथ है। कुछ बातें हैं जिसको हमारे साथियों ने रखा और मैंने सभी

0: The Delhi politics has once again turned into a battle over faith and optics. Arvind Kejriwal today participated in a Sundarkand part in Delhi, but BJP has launched a sharp attack, calling the event a political gimmick. AAP said that the prayers were organized in keeping with the tradition and were meant to seek blessings as safeguard religion. BJP has alleged that Kejriwal becomes Chunavi Hindu whenever elections approach, claiming that the move is aimed at protecting and projecting AAP as a Hindu favorable party ahead of the UP polls. AAP has hit back, saying party has been organizing Sundarkand part every Tuesday, insisting prayers have nothing to do with elections. Listen in to some reactions on the story.
1: Kejriwal sahab, rajnitik Hindu hain. आज उनको भगवान राम भी याद आ रहे हैं. इन्होंने भी अवसरवादी भगत बनते हुए दिल्ली में सुंदरकांड पाठ 2200-2400 जगह पे होगा, हर महीने के पहले मंगलवार में होगा. कब कहा था ये? जब 2024 का चुनाव आने वाला था, तो जनवरी 2024 में इन्होंने कहा, और ये कहा था कि हम लंबा चलाएंगे इसको. कितना लंबा चला इसका जवाब भी केजरीवाल साहब दे दें. ये केवल और केवल राजनीतिक हिंदू हैं, बगुला भगत केजरीवाल. इस समय उनको फिर राम याद आया है.
2: अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं, और ये हम पहली बार नहीं बोल रहे. जब जब चुनाव आते हैं, अरविंद केजरीवाल के जो कर्म होते हैं वो प्रूफ कर देते हैं कि वो चुनावी हिंदू हैं. आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और एक कैंपेन चलाने की बात कर रहे हैं कि हम लोग जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसको लेके हम सिग्नेचर कैंपेन करेंगे. ये सब दिखाता है कि चूंकि वहां उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं, इसलिए आज अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा गैंग चुनावी हिंदू बनकर हिंदू बनने का एक सॉन्ग रच रहा है.
3: आप लोगों ने सुंदरकांड का ये जो आयोजन किया है राम मंदिर मुद्दे को उठाते हुए, बीजेपी लगातार बोल रही है कि आप लोग चुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व का लाइन पे काम करना शुरू कर देते हैं. बीजेपी के आरोपों पे क्या आपका जवाब हो?
4: देखिए, कोई चुनाव है ही नहीं दिल्ली में. तो अभी एक साल पहले चुनाव हुआ है दिल्ली में, चार साल बाद चुनाव है. वो कौन से चुनाव की बात कर रहे हैं? और अगर किसी और राज्यों की बात कर रहे हैं तो भारत में तो हर साल कम से कम 4-5 राज्यों में हर साल चुनाव होते हैं. और अरविंद केजरीवाल ने, मुझे लगता है कि भारत में पहली बार ऐसा हुआ, लाखों बुजुर्गों को तीर्थयात्रा पे भेजा. तब कौन से चुनाव थे? क्या भारतीय जनता पार्टी चंदा चोरों के साथ खड़ी है? अगर चंदा चोरों के ऊपर कोई बात हो रही है, उनको फांसी की सज़ा मांगी जा रही है, उन पे कार्रवाई की मांग हो रही है, तो भाजपा के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्या वो चंदा चोरों के साथ खड़े हैं?
5: पहली बार नहीं करा रहे, हम तो हर मंगलवार को पार्टी ऑफिस सुंदरकांड कराते थे. तो अब ये समय आ गया है कि ऐसे राक्षस जो सनातन धर्म का चादर का सनातनी बन रहे थे, उससे हमारा धर्म बचे. आज हम ये पूजा अर्चना भी करेंगे. अब देखिए, अगर ये सनातनी होते तो उनको खुशी होती ना कि भाई सनातन धर्म और फैल रहा है, हर जगह प्रभु का नाम लिया जा रहा है. लेकिन नहीं, वो बिलबिला रहे हैं.
0: जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटिक्स हैज इरप्टेड इनटू अ फ्रेश वॉर ऑफ वर्ड्स. Chief Minister Omar Abdullah has alleged that National Conference MLA from Jammu was offered between 20 to 30 crore to defect. Omar claims

0: The alleged offer also included a cabinet berth and a promise of restoring Jammu and Kashmir statehood if the MLA switched sides. The BJP has strongly denied allegations. BJP leader Ravinder Rena has dismissed the claims as baseless and misleading and challenged Omar Abdullah to make any evidence public.
1: आज ये बीजेपी वाले कहते हैं हम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे. अरे ना, आपकी बात पे यकीन कौन करेगा? आप तो साजिश करते हुए थकते नहीं हो, आप जमात को तोड़ते हुए थकते नहीं हो. इस मुल्क के किस कोने में आपने जमातों को नहीं तोड़ा? हम किस मुंह से, आप किस मुंह से कहोगे कि झूठ हम बोल रहे हैं? देखिए महाराष्ट्र का हाल, क्या किया आपने शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे साहब की पार्टियों को. देखिए वेस्ट बंगाल का हाल, क्या किया आपने ममता बनर्जी की पार्टी को. देखिए आम आदमी पार्टी हमारे हमसाये में पंजाब में, कितने एमपी लिए आपने वहां से.
2: उमर साहब उन लीडरों में से लीडर नहीं जो झूठ मारते हैं. उमर साहब जो बात कहते हैं पहले उसके पूरा फैक्ट्स तक जाते हैं, फिर उमर साहब बयान देते हैं. अब बीजेपी पे हमने ये सवाल खड़ा किया है तो कहीं ना कहीं कोई सच्चाई तो है. हाँ, अब चोर खुद थोड़ा कहेगा मैं चोरी करता हूँ, तो अब चोर मचाए शोर, बीजेपी का हाल वही है. तो इसलिए अब वो शोर मचा रहे हैं तो मचाने दीजिए, लेकिन इतनी जरूर है कि आज बीजेपी को उमर साहब ने, जम्मू कश्मीर की बीजेपी को उमर साहब ने एक्सपोज कर दिया.
3: आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने एक बेहद ही गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय बयान दिया है, जब उन्होंने बगैर किसी तथ्य के आधार पर यह अनर्गल आरोप लगाने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही है. भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई ने इस वक्तव्य की तीव्र निंदा करते हुए उनसे सीधे सीधे कहा है कि या तो वो सबूत प्रस्तुत करें अथवा वो माफी मांगे.
4: बहुत ही भ्रमित करने वाला बयान कि उनकी सरकार को गिराने की साजिश हो रही है और 20 करोड़ 30 करोड़ का इल्जाम जो उन्होंने लगाया है ये पूरी तरह से बेबुनियाद है, आधारहीन, तथ्यहीन है, ये मिसलीडिंग है और बेसलेस एलिगेशंस हैं. नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो जबरदस्त हंगामा उठा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्रियों के खिलाफ, शायद उस भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने की ये कोशिश है. उमर अब्दुल्ला साहब का ये बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सत्य से बहुत दूर है, भ्रमित करने वाला है.
0: And there's a rift in Punjab Congress that has intensified after the Channi faction met. Channi faction met the Punjab Congress in charge Bhupesh Baghel, demanding removal of the current Punjab LOP Raja Wari. Channi demonstrated his strength at the meeting. 12 MLAs and 82 former candidates were present. Bhupesh Baghel assured that the message would be conveyed to party high command and also told media that there is no one upset and there is no infighting in Punjab Congress. MP Randhawa said that the party must reverse its decision sometimes and they don't want a compromise leader. Raja Waring told the media that he and Randhawa will sort out their problems very soon.
5: Dekho saryan ne apni gal keh li aa aur us gal de vichon Baghel saab ne saryan di gal sun li aa. Dekho hamesha main vi ik state de vich secretary hega, sanu sare hi kehnde aa, पर असी अप्रोप्रिएट लैवल ते जाके वो कन्वे करते हैं कि आ प्रॉब्लम्स हैगी आ, इहदा सल्यूशन जिहड़ा आ इदां दा सल्यूशन हैगा, और मेरा ख्याल है कि वो सारियां चीजां जिहड़ियां कन्वे करनगे.
6: हाई कमान का फैसला है, उस पे किसी का एतराज नहीं है, सब हाई कमान के साथ है. कुछ बातें हैं जिसको हमारे साथियों ने रखा और मैंने सभी साथियों से को विश्वास दिलाया कि जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होने के नाते मैं सभी के हितों का ध्यान रखूंगा. कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि उनके ऊपर किसी बड़े नेता का बर्दाश्त नहीं है, लेकिन यदि वो जीतने के लायक है तो निश्चित रूप से टिकट मिलेगी, ये मैंने विश्वास दिलाया है. दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, कुछ बातें साथियों ने रखी है, उसको मैं हाईकमान तक पहुंचा दूंगा.
7: ये वो अगर आपको ही बता दिए फिर मीटिंग में क्या बोलेंगे? कोई शर्त नहीं है, बड़े राजा बड़े प्रेसिडेंट है, उसको आप ही आ जाना चाहिए था. मेरी कोई नाराजगी नहीं है, मैं उसके साथ ही रहा हूँ. तो उसको देखना चाहिए कि किसकी नाराजगी
8: है। कौन है कॉम्प्रोमाइज लीडर? उन्होंने नाम लिया?
9: नाम तो नहीं।
8: अगर नाम नहीं लिया तो फिर तुसी ये क्यों कह रहे हो कि कॉम्प्रोमाइज लीडर? तुसी मेरे वाल क्यों इशारा कर रहे हो?
9: दूजी
8: सुखजिंदर सिंह रंधावा बिल्कुल ठीक कह रहे ने, क्योंकि मैं तो सुखजिंदर सिंह रंधावा नाल ते जां वो मेरे नाल साढ़े चार साल पौने पांच साल इकट्ठे रहे, और जे कोई साढ़े चो कॉम्प्रोमाइज हुंदा तो असी इन्ना चिर कट्ठे नहीं रह सकते सी जो उन्होंने उन्होंने बयान दिते। पर उन्होंने गल बिल्कुल ठीक है कि कोई भी स्लीपर सैल पार्टी दे विच कॉम्प्रोमाइज लीडर नहीं होना चाहिए।
0: The Twisha death investigation has taken a significant turn. A major breakthrough has emerged in Twisha death case, with AIIMS submitting its final 11-page forensic report to CBI. The report is set to strengthen a crucial piece of evidence in the investigation, a gym belt allegedly linked to Twisha's death. Forensic experts have found that the injury pattern on Twisha's neck matches the belt recovered during the investigation. The report also states that skin tissue matching Twisha was detected on the belt, further reinforcing the evidentiary value. While the findings establish a possible link, the AIIMS report does not rule out any foul play at this moment. The exact cause and the circumstance of Twisha's death remain under investigation. The DMK has rejected BCK's push for a joint front with TVK against the BJP. The party has made it clear that there is no proposal to join hands with Vijay's TVK at the national level. DMK said BCK should direct the alliance proposal to Vijay, who has been calling DMK his main political rival. The party also continued its attack on Congress, alleging it was betrayed over political interests. DMK said that the Congress failed to act as a true India bloc partner, further highlighting growing differences within opposition. VCK chief has been battling and talking about the fact that perhaps DMK and TVK alliance on the national front is good for the state of Tamil Nadu.
10: Our leaders, look, this problem is between DMK and Congress. Actually, Congress backstabbed DMK just after the defeat. Just for a couple of ministership in the state politics, in the state government, they fail to view it as a national, what to say, point of view, national politics as India bloc, because they'll be losing if DMK is coming out of India bloc, that will cost him 22 MPs out of this. So VCK is trying to patch it up, but our leaders, I don't think they will go along with the VCK's proposal.
11: Right, he's that may be his view. But where he should say, he is with the TVK in the alliance now. He is a man, is a minister. He should talk to Vijay, not to us, or just express the public. He should talk to Vijay. Why should he talk to us? Vijay says that we are his main enemies. When Vijay's stand is that, how can we both be in the same alliance? So he may wish anything. It is Thirumavalan's view, but how is it possible when Vijay's attack is directly against DMK? What can we do?
0: Let's listen into what VCK chief told Thirumavalan has said.
12: TVK enna solraga enga kolgai edirindra okay DMK enna solraga ivada naala naanga eduthukkom thodandhu edirkumraga India bloc enna solrudhu avangala edirpadhu dhaan arasiyil illai. அப்போ ஏன் இங்கே ஒரே அணிக்கு வரக்கூடாது? இதுதான் திருமாவளவன் எடுத்து வந்திருக்கேன். என்ன தப்பு இருக்குது? கேரளாவில் காங்கிரஸ் இடதுசாரிகளும் பயங்கரமான மோதல். பினராயி விஜயன் ஆர்எஸ்எஸ் காரவனே பேசுறாரு. ராகுல் காந்தி அங்கே இந்தியா பிளாக்ல கூட்டணியில் மார்க்சிஸ்டும் உட்காரு, காங்கிரஸும் உட்காரு. மேற்கு வங்கத்தில் மம்தா பானர்ஜிக்கும் காங்கிரசுக்கும் சண்டை, ஆனா இந்தியா பிளாக்ல ரெண்டு பேரும் வந்து ஒன்னா உட்காருறாங்க. தமிழ்நாட்டில் அப்படி ஒரு அரசியல் நடக்கக்கூடாதா? இதை திருமாவளவன் சொன்னா

0: The Delhi politics has once again turned into a battle over faith and optics. Arvind Kejriwal today participated in a Sundarkand part in Delhi, but BJP has launched a sharp attack, calling the event a political gimmick. AAP said that the prayers were organized in keeping with the tradition and were meant to seek blessings and as safeguard religion. BJP has alleged that Kejriwal becomes Chunavi Hindu whenever elections approach, claiming that the move is aimed at protecting and projecting AAP as a Hindu favorable party ahead of the UP polls. AAP has hit back, saying party has been organizing Sundarkand part every Tuesday, insisting prayers have nothing to do with elections. Listen in to some reactions on the story.
1: Kejriwal sahab, rajnitik Hindu hain. आज उनको भगवान राम भी याद आ रहे हैं. इन्होंने भी अवसरवादी भगत बनते हुए दिल्ली में सुंदरकांड पाठ 2200-2400 जगह पे होगा, हर महीने के पहले मंगलवार में होगा. कब कहा था ये? जब 2024 का चुनाव आने वाला था तो जनवरी 2024 में इन्होंने कहा, और ये कहा था कि हम लंबा चलाएंगे इसको. कितना लंबा चलाए इसका जवाब भी केजरीवाल साहब दे दें. ये केवल और केवल राजनीतिक हिंदू हैं, बगुला भगत केजरीवाल. इस समय उनको फिर राम याद आया है.
2: अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं, और ये हम पहली बार नहीं बोल रहे. जब जब चुनाव आते हैं, अरविंद केजरीवाल के जो कर्म होते हैं वो प्रूफ कर देते हैं कि वो चुनावी हिंदू हैं. आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और एक कैंपेन चलाने की बात कर रहे हैं कि हम लोग जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसको लेके हम सिग्नेचर कैंपेन करेंगे. ये सब दिखाता है कि चूंकि वहां उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं, इसलिए आज अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा गैंग चुनावी हिंदू बनकर हिंदू बनने का एक सॉन्ग रच रहा है.
3: लोगों ने सुंदरकांड का ये जो आयोजन किया है राम मंदिर मुद्दे को उठाते हुए, बीजेपी लगातार बोल रही है कि आप लोग चुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व का लाइन पे काम करना शुरू कर देते हैं. बीजेपी के आरोपों पे क्या आपका जवाब हो?
4: देखिए, कोई चुनाव है ही नहीं. दिल्ली में तो अभी एक साल पहले चुनाव हुआ है, दिल्ली में चार साल बाद चुनाव है. वो कौन से चुनाव की बात कर रहे हैं? और अगर किसी और राज्यों की बात कर रहे हैं तो भारत में तो हर साल कम से कम 4-5 राज्यों में हर साल चुनाव होते हैं. और अरविंद केजरीवाल ने, मुझे लगता है कि भारत में पहली बार ऐसा हुआ, लाखों बुजुर्गों को तीर्थयात्रा पे भेजा, तब कौन से चुनाव थे? क्या भारतीय जनता पार्टी चंदा चोरों के साथ खड़ी है? अगर चंदा चोरों के ऊपर कोई बात हो रही है, उनको फांसी की सज़ा मांगी जा रही है, उन पे कार्रवाई की मांग हो रही है, तो भाजपा के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्या वो चंदा चोरों के साथ खड़े हैं?
5: पहली बार नहीं करा रहे हैं, हम तो हर मंगलवार को पार्टी ऑफिस सुंदरकांड कराते थे. तो अब ये समय आ गया है कि ऐसे राक्षस जो सनातन धर्म का चादर का सनातनी बन रहे थे, उससे हमारा धर्म बचे. आज हम ये पूजा अर्चना भी करेंगे. अब देखिए, अगर ये सनातनी होते तो उनको खुशी होती ना कि भाई सनातन धर्म और फैल रहा है, हर जगह प्रभु का नाम लिया जा रहा है. लेकिन नहीं, वो बिलबिला रहे हैं.
0: जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटिक्स हैज इरप्टेड इनटू अ फ्रेश वॉर ऑफ वर्ड्स. Chief Minister Omar Abdullah has alleged that National Conference MLA from Jammu was offered between 20 to 30 crore to defect. Omar claims the alleged offer also included a cabinet berth and a promise of restoring Jammu and Kashmir statehood if the MLA switched sides. The BJP has strongly denied allegations. BJP leader Ravinder Rena has dismissed the claims as baseless and misleading and challenged Omar Abdullah to make any evidence public.
6: आज ये बीजेपी वाले कहते हैं हम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे. अरे ना, आपकी बात पे यकीन कौन करेगा? आप तो साजिश करते हुए थकते नहीं हो, आप जमात को तोड़ते हुए थकते नहीं हो. इस मुल्क के किस कोने में आपने जमातों को नहीं तोड़ा? हम किस मुंह से, आप किस मुंह से कहोगे कि झूठ हम बोल रहे हैं? देखिए महाराष्ट्र का हाल, क्या किया आपने शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे साहब की पार्टियों को. देखिए वेस्ट बंगाल का हाल, क्या किया आपने ममता बनर्जी की पार्टी को. देखिए आम आदमी पार्टी हमारे हमसाय में पंजाब में, कितने एमपी लिए आपने वहां से.
7: उमर साहब उन लीडरों में से लीडर नहीं जो झूठ मारते हैं। उमर साहब जो बात कहते हैं पहले उसके पूरा फैक्ट्स तक जाते हैं, फिर उमर साहब बयान देते हैं। अब बीजेपी पे हमने ये सवाल खड़ा किया है तो कहीं ना कहीं कोई सच्चाई तो है। हाँ, अब चोर खुद थोड़ा कहेगा मैं चोरी करता हूँ, तो अब चोर मचाए शोर, बीजेपी का हाल वही है, तो इसलिए अब वो शोर मचा रहे हैं तो मचाने दीजिए। लेकिन इतनी जरूर है कि आज बीजेपी को उमर साहब ने, जम्मू कश्मीर की बीजेपी को उमर साहब ने एक्सपोज कर दिया।
8: आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने एक बेहद ही गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय बयान दिया है, जब उन्होंने बगैर किसी तथ्य के आधार पर यह अनर्गल आरोप लगाने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई ने इस वक्तव्य की तीव्र निंदा करते हुए उनसे सीधे सीधे कहा है कि या तो वो सबूत प्रस्तुत करें अथवा वो माफी मांगे।
9: बहुत ही भ्रमित करने वाला बयान कि उनकी सरकार को गिराने की साजिश हो रही है और 20 करोड़ 30 करोड़ का इल्ज़ाम जो उन्होंने लगाया है ये पूरी तरह से बेबुनियाद है, आधारहीन, तथ्यहीन है, ये मिसलीडिंग है और बेसलेस एलिगेशंस हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो ज़बरदस्त हंगामा उठा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्रियों के खिलाफ, शायद उस भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने की ये कोशिश है। उमर अब्दुल्ला साहब का ये बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सत्य से बहुत दूर है, भ्रमित करने वाला है।
0: And there's a rift in Punjab Congress that has intensified after the Channi faction met. Channi faction met the Punjab Congress in charge Bhupesh Baghel, demanding removal of the current Punjab LOP Raja Wari. Channi demonstrated his strength at the meeting. 12 MLAs and 82 former candidates were present. Bhupesh Baghel assured that the message would be conveyed to party high command and also told media that there is no one upset and there is no infighting in Punjab Congress. MP Randhawa said that the party must reverse its decision sometimes and they don't want a compromise leader. Raja Waring told the media that he and Randhawa will sort out their problems very soon.
10: Dekho saryan ne apni gal keh li hai aur us gal de vichon Baghel saab ne saryan di gal sun li hai. ਦੇਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਨਵੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਵੇ ਕਰਨਗੇ।
11: हाईकमान का फैसला है, उस पे किसी का एतराज नहीं है, सब हाईकमान के साथ है। कुछ बातें हैं जिसको हमारे साथियों ने रखा और मैंने सभी साथियों से को विश्वास दिलाया कि जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होने के नाते मैं सभी के हितों का ध्यान रखूंगा। कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि उनके ऊपर किसी बड़े नेता का गौरव हस्त नहीं है, लेकिन यदि वो जीतने के लायक है निश्चित रूप से टिकट मिलेगी, ये मैंने विश्वास दिलाया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, कुछ बातें साथियों ने रखी है, उसको मैं हाई कमान तक पहुंचा दूंगा।
12: ये वो अगर आपको ही बता दिए फिर मीटिंग में क्या बोलेंगे? कोई शर्त नहीं है, नहीं बड़े राजा बड़े प्रेसिडेंट है, उसको आप ही आ जाना चाहिए था। मेरी कोई नाराजगी नहीं है, मैं उसके साथ ही रहा हूँ, तो उसको दिखाना चाहिए कि किसकी नाराजगी।
13: नहीं, कौन है कॉम्प्रोमाइज लीडर? उन्होंने नाम लिया?
14: नाम तो नहीं।
13: अगर नाम नहीं लिया तो फिर तुसी ये क्यों कह रहे हो कि कॉम्प्रोमाइज लीडर? तुसी मेरे वाल क्यों इशारा कर रहे हो? दूजी सुखजिंदर सिंह रंधावा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैं तो सुखजिंदर सिंह रंधावा नाल ते जां वो मेरे नाल साढ़े चार साल पौने पांच साल इकट्ठे रहे हैं, और जे कोई साढ़े चो कॉम्प्रोमाइज हुंदा तो असी इन्ना चिर इकट्ठे नहीं रह सकते सी जो उन्होंने बयान दिते। पर उन्हां दी गल बिल्कुल ठीक है कि कोई भी स्लीपर सैल पार्टी दे विच कॉम्प्रोमाइज लीडर नहीं होना चाहिए।
0: The Twisha death investigation has taken a significant turn. A major breakthrough has emerged in Twisha death case, with AIIMS submitting its final 11-page forensic report to CBI. The report is set to strengthen a crucial piece of evidence in the investigation, a gym belt allegedly linked to Twisha's death. Forensic experts have found that the injury pattern on Twisha's neck matches the belt recovered during the investigation. The report also states that skin tissue matching Twisha was detected on the belt, further reinforcing the evidentiary value. While the findings establish a possible link, the AIIMS report does not rule out any foul play at this moment. The exact cause and the circumstance of Twisha's death remain under investigation. The DMK has rejected BCK's push for a joint front with TVK against the BJP. The party has made it clear that there is no proposal to join hands with Vijay's TVK at the national level. DMK said BCK should direct the alliance proposal to Vijay, who has been calling DMK his main political rival. The party also continued its attack on Congress, alleging it was betrayed over political interests. DMK said that the Congress failed to act as a true India bloc partner, further highlighting growing differences within opposition. VCK chief has been battling and talking about the fact that perhaps DMK and TVK alliance on the national front is good for the state of Tamil Nadu.
14: Our leaders, look, this problem is between DMK and Congress. Actually, Congress backstabbed DMK just after the defeat. Just for a couple of ministership in the state politics, in the state government, they failed to view it as a national, what to say, point of view, national politics as India bloc, because they'll be losing if DMK is coming out of India bloc, that will cost him 22 MPs out of this. So VCK is trying to patch it up, but our leaders, I don't think they will go along with the VCK's proposal.
15: Right, he's that may be his view. But where he should say, he is with the TVK in the alliance now. He is a man, is a minister. He should talk to Vijay, not to us, or just express the public. He should talk to Vijay. Why should he talk to us? Vijay says that we are his main enemies. When Vijay's stand is that, how can we both be in the same alliance? So he may wish anything. It is Thirumavalan's view. But how is it possible when Vijay's attack is directly against DMK? What can we do?
0: Let's listen in to what VCK chief told Thirumavalan has said.
16: TVK enna solraga enga kolgai edirindraanga okay DMK enna solraga ivada naala naan eduthukkom thodandu edirkumraanga India bloc enna solrudhu avangala edirpadhu dhaan avasiyam illai. அப்போ ஏன் இங்கே ஒரே அணிக்கு வரக்கூடாது? இதுதான் திருமாவளவன் எடுத்து வந்திருக்கேன். என்ன தப்பு இது? கேரளாவில் காங்கிரஸும் இடதுசாரிகளும் பயங்கரமான மோதல். பினராயி விஜயன் ஆர்எஸ்எஸ் காரவனே பேசுகிறார். ராகுல் காந்தி அங்கே இந்தியா பிளாக்கில் கூட்டணியில் மார்க்சிஸ்டும் உட்கார்ந்து காங்கிரஸும் உட்கார்ந்து. மேற்கு வங்கத்தில் மம்தா பானர்ஜிக்கும் காங்கிரசுக்கும் சண்டை. ஆனால் இந்தியா பிளாக்ல ரெண்டு பேரும் வந்து ஒன்றா உட்காந்துருக்காங்க. தமிழ்நாட்டில் அப்படி ஒரு அரசியல் நடக்கக்கூடாதா? இதை திருமாவளவன் சொன்னால் உங்களால் அதை புரிந்து கொள்ள முடியாதா?
0: Now talking about what has happened so far as the Bengaluru delivery horror story is concerned. A routine parcel delivery turned into a nightmare for a Bengaluru woman after a delivery agent allegedly flashed his private parts inside her home. A Bengaluru woman has alleged that the delivery agent entered her home without permission, claiming he wanted to use the washroom. She accused that he flashed his private parts before leaving. It's a big NDTV impact. The police have arrested the accused and further investigation is underway. The delivery agent is facing three charges under Bharatiya Nyaya Sahita. These include allegations of sexual harassment, insulting and outraging a woman's modesty, unlawfully entering a residence. And the woman has claimed that despite a repeated request and refusal to allow him to enter the house, he entered her premises. The delivery agent allegedly forced his way inside, and moments later, after coming out, he exposed himself to her.
17: मैं नहीं छोड़ूंगी इसको. मैं पक्का पुलिस स्टेशन जाऊंगी और इसके खिलाफ मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी. और फ्लिपकार्ट मिंत्रा रिक्वेस्ट हूँ कि किस टाइप के डिलीवरी बॉय आप लोग हायर करते हो, क्या आप लोग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं करते हो? पैसे लेके पेमेंट कर रही थी, मेरे को बोलता मैम मेरे को वॉशरूम जाना है। मैं बोली नहीं भैया मैं अलाउड नहीं करूँगी, सॉरी। बहुत फोर्स करने लगे, नहीं मैम प्लीज प्लीज प्लीज मेरे को जाना है, बहुत इमरजेंसी, थोड़ा करना और एक दिन मिक्स करके बात करना। मैं बोली नो सर मैं आपको नहीं अलाउ करूंगी, आई एम सॉरी, बहुत फोर्स किया। तो बोली नहीं सर मैं अकेले रहती हूँ, मेरे घर में फैमिली भी नहीं है अभी, मैं आपको नहीं अलाउ करूंगी, मैं किसी को नहीं अलाउ करती हूँ, अभी इनका सिचुएशन अच्छा नहीं चल रहा, आई एम सॉरी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इतना फोर्स किया मैं नहीं नहीं बोली, उसके बाद मैं दरवाजे के बंद करे थे, अंदर शूज निकाल के फोर्सफुली वॉशरूम चले गया, मैं उसको मना नहीं करी, फोर्सफुली चले गया।
0: We'll continue tracking that story and much more on the other side of a quick break.
18: Launch control, 0 to 100.
19: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
20: This car makes no sense, yet it makes every sense.
21: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
19: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.

0: The Delhi politics has once again turned into a battle over faith and optics. Arvind Kejriwal today participated in a Sundarkand part in Delhi, but BJP has launched a sharp attack, calling the event a political gimmick. AAP said that the prayers were organized in keeping with the tradition and were meant to seek blessings and as safeguard religion. BJP has alleged that Kejriwal becomes Chunavi Hindu whenever elections approach, claiming that the move is aimed at protecting and projecting AAP as a Hindu favorable party ahead of the UP polls. AAP has hit back, saying party has been organizing Sundarkand part every Tuesday, insisting prayers have nothing to do with elections. Listen in to some reactions on the story.
1: Kejriwal sahab rajnitik Hindu hain. आज उनको भगवान राम भी याद आ रहे हैं. इन्होंने भी अवसरवादी भगत बनते हुए दिल्ली में सुंदरकांड पाठ 2200-2400 जगह पे होगा, हर महीने के पहले मंगलवार में होगा. कब कहा था ये? जब 2024 का चुनाव आने वाला था तो जनवरी 2024 में इन्होंने कहा, और ये कहा था कि हम लंबा चलाएंगे इसको. कितना लंबा चलाए इसका जवाब भी केजरीवाल साहब दे दें. ये केवल और केवल राजनीतिक हिंदू हैं. बगुला भगत केजरीवाल, इस समय उनको फिर राम याद आया है.
2: अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं, और ये हम पहली बार नहीं बोल रहे. जब जब चुनाव आते हैं, अरविंद केजरीवाल के जो कर्म होते हैं वो प्रूफ कर देते हैं कि वो चुनावी हिंदू हैं. आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और एक कैंपेन चलाने की बात कर रहे हैं कि हम लोग जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसको लेके हम सिग्नेचर कैंपेन करेंगे. ये सब दिखाता है कि चूंकि वहां उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं, इसलिए आज अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा गैंग चुनावी हिंदू बनकर हिंदू बनने का एक सॉन्ग रच रहा है.
3: आप लोगों ने सुंदरकांड का ये जो आयोजन किया है राम मंदिर मुद्दे को उठाते हुए, बीजेपी लगातार बोल रही है कि आप लोग चुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व का लाइन पे काम करना शुरू कर देते हैं. बीजेपी के आरोपों पे क्या आपका जवाब हो?
4: देखिए, कोई चुनाव है ही नहीं दिल्ली में. तो अभी एक साल पहले चुनाव हुआ है दिल्ली में, चार साल बाद चुनाव है. वो कौन से चुनाव की बात कर रहे हैं? और अगर किसी और राज्यों की बात कर रहे हैं तो भारत में तो हर साल कम से कम 4-5 राज्यों में हर साल चुनाव होते हैं. और अरविंद केजरीवाल ने, मुझे लगता है कि भारत में पहली बार ऐसा हुआ, लाखों बुजुर्गों को तीर्थयात्रा पे भेजा. तब कौन से चुनाव थे? क्या भारतीय जनता पार्टी चंदा चोरों के साथ खड़ी है? अगर चंदा चोरों के ऊपर कोई बात हो रही है, उनको फांसी की सज़ा मांगी जा रही है, उन पे कार्रवाई की मांग हो रही है, तो भाजपा के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्या वो चंदा चोरों के साथ खड़े हैं?
5: पहली बार नहीं करा रहे, हम तो हर मंगलवार को पार्टी ऑफिस सुंदरकांड कराते थे. तो अब ये समय आ गया है कि ऐसे राक्षस जो सनातन धर्म का चादर का सनातनी बन रहे थे, उससे हमारा धर्म बचे. आज हम ये पूजा अर्चना भी करेंगे. अब देखिए, अगर ये सनातनी होते तो उनको खुशी होती ना कि भाई सनातन धर्म और फैल रहा है, हर जगह प्रभु का नाम लिया जा रहा है. लेकिन नहीं, वो बिलबिला रहे हैं.
0: जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटिक्स हैज इरप्टेड इनटू अ फ्रेश वॉर ऑफ वर्ड्स. Chief Minister Omar Abdullah has alleged that National Conference MLA from Jammu was offered between 20 to 30 crore to defect. Omar claims the alleged offer also included a cabinet berth and a promise of restoring Jammu and Kashmir statehood if the MLA switched sides. The BJP has strongly denied allegations. BJP leader Ravinder Rena has dismissed the claims as baseless and misleading and challenged Omar Abdullah to make any evidence public.
6: आज ये बीजेपी वाले कहते हैं हम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे. अरे ना, आपकी बात पे यकीन कौन करेगा? आप तो साजिश करते हुए थकते नहीं हो, आप जमात को तोड़ते हुए थकते नहीं हो. इस मुल्क के किस कोने में आपने जमातों को नहीं तोड़ा? हम किस मुंह से, आप किस मुंह से कहोगे कि झूठ हम बोल रहे हैं? देखिए महाराष्ट्र का हाल, क्या किया आपने शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे साहब की पार्टियों को. देखिए वेस्ट बंगाल का हाल, क्या किया आपने ममता बनर्जी की पार्टी को. देखिए आम आदमी पार्टी हमारे हमसाये में पंजाब में, कितने एमपी लिए आपने वहां से.
7: उमर साहब उन लीडरों में से लीडर नहीं जो झूठ मारते हैं। उमर साहब जो बात कहते हैं पहले उसके पूरा फैक्ट्स तक जाते हैं, फिर उमर साहब बयान देते हैं। अब बीजेपी पे हमने ये सवाल खड़ा किया है तो कहीं ना कहीं कोई सच्चाई तो है। हाँ, अब चोर खुद थोड़ा कहेगा मैं चोरी करता हूँ, तो अब चोर मचाए शोर, बीजेपी का हाल वही है, तो इसलिए अब वो शोर मचा रहे हैं तो मचाने दीजिए। लेकिन इतनी जरूर है कि आज बीजेपी को उमर साहब ने, जम्मू कश्मीर की बीजेपी को उमर साहब ने एक्सपोज कर दिया।
8: आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने एक बेहद ही गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय बयान दिया है, जब उन्होंने बगैर किसी तथ्य के आधार पर यह अनर्गल आरोप लगाने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई ने इस वक्तव्य की तीव्र निंदा करते हुए उनसे सीधे सीधे कहा है कि या तो वो सबूत प्रस्तुत करें अथवा वो माफी मांगे।
9: बहुत ही भ्रमित करने वाला बयान कि उनकी सरकार को गिराने की साजिश हो रही है और 20 करोड़ 30 करोड़ का इल्ज़ाम जो उन्होंने लगाया है ये पूरी तरह से बेबुनियाद है, आधारहीन तथ्यहीन है, ये मिसलीडिंग है और बेसलेस एलिगेशन हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो ज़बरदस्त हंगामा उठा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्रियों के खिलाफ, शायद उस भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने की ये कोशिश है। उमर अब्दुल्ला साहब का ये बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सत्य से बहुत दूर है, भ्रमित करने वाला है।
0: And there's a rift in Punjab Congress that has intensified after the Channi faction met. Channi faction met the Punjab Congress in charge Bhupesh Baghel, demanding removal of the current Punjab LOP Raja Wari. Channi demonstrated his strength at the meeting. 12 MLAs and 82 former candidates were present. Bhupesh Baghel assured that the message would be conveyed to party high command and also told media that there is no one upset and there is no infighting in Punjab Congress. MP Randhawa said that the party must reverse its decision sometimes and they don't want a compromise leader. Raja Waring told the media that he and Randhawa will sort out their problems very soon.
10: Dekho saryan ne apni gal keh li hai aur us gal de vichon Baghel saab ne saryan di gal sun li hai. देखो हमेशा मैं भी एक स्टेट दे विच सैकटरी हैगा, सानू सारे ही कहिंदे आ, पर असी अप्रोप्रिएट लैवल ते जाके वो कन्वे करदे कि आ प्रॉब्लम्स हैगी आ, इहदा सोल्यूशन जिहड़ा आ इदां दा सोल्यूशन हैगा, और मेरा ख्याल है कि वो सारियां चीजां जिहड़ियां कन्वे करनगे।
11: हाई कमान का फैसला है, उस पे किसी का एतराज नहीं है, सब हाई कमान के साथ है। कुछ बातें हैं जिसको हमारे साथियों ने रखा और मैंने सभी साथियों से को विश्वास दिलाया कि जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होने के नाते मैं सभी के हितों का ध्यान रखूंगा। कोई व्यक्ति ये ना सोचे तो उनके ऊपर किसी बड़े नेता का गौरव हस्त नहीं है, लेकिन यदि वो जीतने के लायक है निश्चित रूप से टिकट मिलेगी, ये मैंने विश्वास दिलाया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, कुछ बातें साथियों ने रखी है, उसको मैं हाई कमान तक पहुंचा दूंगा।
12: ये वो अगर आपको बता दिए फिर मीटिंग में क्या बोलेंगे? कोई शर्त नहीं है। नहीं, बड़े राजा बड़े प्रेसिडेंट है, उसको आप ही आ जाना चाहिए था। मेरी कोई नाराजगी नहीं है, मैं उसके साथ ही रहा हूँ, तो उसको देखना चाहिए कि किसकी नाराजगी
13: है। नहीं, कौन है कॉम्प्रोमाइज लीडर? उन्होंने नाम लिया?
14: नाम तो नहीं।
13: अगर नाम नहीं लिया तो फिर तुसी ये क्यों कह रहे हो कि कॉम्प्रोमाइज लीडर? तुसी मेरे वाल क्यों इशारा कर रहे हो? दूजी सुखजिंदर सिंह रंधावा बिल्कुल ठीक कह रहे ने, क्योंकि मैं तो सुखजिंदर सिंह रंधावा नाल ते जां ओ मेरे नाल साढ़े चार साल पौने पांच साल इकट्ठे रहे, और जे कोई साडे चो कॉम्प्रोमाइज़ हुंदा तां असीं इन्ना चिर इकट्ठे नहीं रह सकदे सी जो उन्हां दी उन्हां ने बयान दित्ते। पर उन्हां दी गल बिल्कुल ठीक है कि कोई भी स्लीपर सैल पार्टी दे विच कॉम्प्रोमाइज़ लीडर नहीं होना चाहिए।
0: The Twisha death investigation has taken a significant turn. A major breakthrough has emerged in Twisha death case, with AIIMS submitting its final 11-page forensic report to CBI. The report is set to strengthen a crucial piece of evidence in the investigation, a gym belt allegedly linked to Tushar's death. Forensic experts have found that the injury pattern on Tushar's neck matches the belt recovered during the investigation. The report also states that skin tissue matching Tushar was detected on the belt, further reinforcing the evidentiary value. While the findings establish a possible link, the AIIMS report does not rule out any foul play at this moment. The exact cause and the circumstance of Tushar's death remain under investigation. The DMK has rejected BCK's push for a joint front with TVK against the BJP. The party has made it clear that there is no proposal to join hands with Vijay's TVK at the national level. DMK said BCK should direct the alliance proposal to Vijay, who has been calling DMK his main political rival. The party also continued its attack on Congress, alleging it was betrayed over political interests. DMK said that the Congress failed to act as a true India bloc partner, further highlighting growing differences within opposition. VCK chief has been battling and talking about the fact that perhaps DMK and TVK alliance on the national front is good for the state of Tamil Nadu.
15: Our leaders, look, this problem is between DMK and Congress. Actually, Congress backstabbed DMK just after the defeat. Just for a couple of ministership in the state politics, in the state government, they failed to view it as a national, what to say, point of view, national politics, as India bloc, because they'll be losing. If DMK is coming out of India bloc, that will cost him 22 MPs out of this. So VCK is trying to patch it up, but our leaders, I don't think they will go along with the VCK's proposal.
16: Right, that may be his view. But where he should say, he is with the TVK in the alliance now. He is a man, is a minister. He should talk to Vijay, not to us, or just express the public. He should talk to Vijay. Why should he talk to us? Vijay says that we are his main enemies. When Vijay's stand is that, how can we both be in the same alliance? So he may wish anything. It is Thirumavaram's view. But how is it possible when Vijay's attack is directly against DMK? What can we do?
0: Let's listen in to what VCK chief told Thirumavalavan has said.
17: TVK enna solraga enga kolgai edirindraanga okay DMK enna solraga ivula naala naanga eduthukkom thodandu edirkumraanga India block enna solrudhu avangala edirpadhu dhaan avasiyam illai. அப்போ ஏன் இந்த ஒரே அணிக்கு வரக்கூடாது? இதுதான் திருமாவளவன் எடுத்து வந்திருக்கேன். என்ன கத்துருக்குது? கேரளாவில் காங்கிரஸ் இடதுசாரிகளும் பயங்கரமான மோதல். பினராயி விஜயன் ஆர்எஸ்எஸ் காரவனே பேசுறார். ராகுல் காந்தி அங்கே இந்தியா பிளாக்கில் கூட்டணியில் மார்க்சிஸ்டும் உட்கார்ந்து காங்கிரஸும் உட்கார். மேற்கு வங்கத்தில் மம்தா பானர்ஜிக்கும் காங்கிரசுக்கும் சண்டை. ஆனால் இந்தியா பிளாக்ல ரெண்டு பேரும் வந்து ஒன்றா உட்காந்துருக்காங்க. தமிழ்நாட்டில் அப்படி ஒரு அரசு நடக்கக்கூடாதா? இதை திருமாவளவன் சொன்னா உங்களால் அதை புரிந்து கொள்ள முடியாதா?
0: Now talking about what has happened so far as the Bengaluru delivery horror story is concerned. A routine parcel delivery turned into a nightmare for a Bengaluru woman after a delivery agent allegedly flushed his private parts inside.

0: unlawfully entering a residence, and the woman has claimed that despite a repeated request and refusal to allow him to enter the house, he entered her premises. The delivery agent allegedly forced his way inside, and moments later, after coming out, he exposed himself to her.
1: मैं नहीं छोड़ूंगी इसको, मैं पक्का पुलिस स्टेशन जाऊंगी और इसके खिलाफ मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी और फ्लिपकार्ट मिंत्रा रिक्वेस्ट हूँ कि किस टाइप के डिलीवरी बॉय आप लोग हायर करते हो, क्या आप लोग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं करते हो, पैसे लेके पेमेंट कर रही थी, मेरे को बोलता मैम मेरे को वॉशरूम जाना है, मैं बोली नहीं भैया मैं अलाउड नहीं करूंगी, सॉरी बहुत फोर्स करने लगे, नहीं मैम प्लीज प्लीज प्लीज मैं कुछ आना ही बहुत इमरजेंसी, थोड़ा करना और एक दिन मिक्स करके बात करना, मैं बोली नो सर मैं आपको नहीं अलाउ करूंगी, आई एम सॉरी बहुत फोर्स किया, तो बोली नहीं सर मैं अकेले रहती हूँ, मेरे घर में फैमिली भी नहीं है अभी, मैं आपको नहीं अलाउ करूंगी, मैं किसी को नहीं अलाउ करती हूँ, अब इनका सिचुएशन अच्छा नहीं चल रहा, आई एम सॉरी ट्राई टू अंडरस्टैंड, इतना फोर्स किया मैं नहीं नहीं बोली, उसके बाद मैं दरवाजे के पास खड़ी थी, अंदर शूज निकाल के फोर्सफुली वॉशरूम चले गया,
0: we'll continue tracking that story and much more on the other side of a quick break.

0: The Delhi politics has once again turned into a battle over faith and optics. Arvind Kejriwal today participated in a Sundarkand part in Delhi, but BJP has launched a sharp attack, calling the event a political gimmick. AAP said that the prayers were organized in keeping with the tradition and were meant to seek blessings as safeguard religion. BJP has alleged that Kejriwal becomes Chunavi Hindu whenever elections approach, claiming that the move is aimed at protecting and projecting AAP as a Hindu favorable party ahead of the UP polls. AAP has hit back, saying party has been organizing Sundarkand part every Tuesday, insisting prayers have nothing to do with elections. Listen in to some reactions on the story.
1: Kejriwal sahab, rajnitik Hindu hain. आज उनको भगवान राम भी याद आ रहे हैं. इन्होंने भी अवसरवादी भगत बनते हुए दिल्ली में सुंदरकांड पाठ 2200-2400 जगह पे होगा, हर महीने के पहले मंगलवार में होगा. कब कहा था ये? जब 2024 का चुनाव आने वाला था, तो जनवरी 2024 में इन्होंने कहा, और ये कहा था कि हम लंबा चलाएंगे इसको. कितना लंबा चला इसका जवाब भी केजरीवाल साहब दे दें. ये केवल और केवल राजनीतिक हिंदू हैं, बगुला भगत केजरीवाल. इस समय उनको फिर राम याद आया है.
2: अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं, और ये हम पहली बार नहीं बोल रहे. जब जब चुनाव आते हैं, अरविंद केजरीवाल के जो कर्म होते हैं वो प्रूफ कर देते हैं कि वो चुनावी हिंदू हैं. आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और एक कैंपेन चलाने की बात कर रहे हैं कि हम लोग जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसको लेके हम सिग्नेचर कैंपेन करेंगे. ये सब दिखाता है कि चूंकि वहां उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं, इसलिए आज अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा गैंग चुनावी हिंदू बनकर हिंदू बनने का एक सॉन्ग रच रहा है.
3: लोगों ने सुंदरकांड का ये जो आयोजन किया है राम मंदिर मुद्दे को उठाते हुए, बीजेपी लगातार बोल रही है कि आप लोग चुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व का लाइन पे काम करना शुरू कर देते हैं. बीजेपी के आरोपों पे क्या आपका जवाब हो?
4: देखिए, कोई चुनाव है ही नहीं. दिल्ली में तो अभी एक साल पहले चुनाव हुआ है, दिल्ली में चार साल बाद चुनाव है. वो कौन से चुनाव की बात कर रहे हैं? और अगर किसी और राज्यों की बात कर रहे हैं, तो भारत में तो हर साल कम से कम 4-5 राज्यों में हर साल चुनाव होते हैं. और अरविंद केजरीवाल ने, मुझे लगता है कि भारत में पहली बार ऐसा हुआ, लाखों बुजुर्गों को तीर्थयात्रा पे भेजा. तब कौन से चुनाव थे? क्या भारतीय जनता पार्टी चंदा चोरों के साथ खड़ी है? अगर चंदा चोरों के ऊपर कोई बात हो रही है, उनको फांसी की सज़ा मांगी जा रही है, उन पे कार्रवाई की मांग हो रही है, तो भाजपा के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्या वो चंदा चोरों के साथ खड़े हैं?
5: पहली बार नहीं करा रहे, हम तो हर मंगलवार को पार्टी ऑफिस उत्तरकांड कराते थे. तो अब ये समय आ गया है कि ऐसे राक्षस जो सनातन धर्म का चादर का सनातनी बन रहे थे, उससे हमारा धर्म बचे. आज हम ये पूजा अर्चना भी करेंगे. अब देखिए, अगर ये सनातनी होते तो उनको खुशी होती ना कि भाई सनातन धर्म और फैल रहा है, हर जगह प्रभु का नाम लिया जा रहा है. लेकिन नहीं, वो बिलबिला रहे हैं.
0: जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटिक्स हैज इरप्टेड इनटू अ फ्रेश वॉर ऑफ वर्ड्स. Chief Minister Omar Abdullah has alleged that National Conference MLA from Jammu was offered between 20 to 30 crore to defect. Omar claims the alleged offer also included a cabinet berth and a promise of restoring Jammu and Kashmir statehood if the MLA switched sides. The BJP has strongly denied allegations. BJP leader Ravinder Rena has dismissed the claims as baseless and misleading and challenged Omar Abdullah to make any evidence public.
6: आज ये बीजेपी वाले कहते हैं हम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे. अरे ना, आपकी बात पे यकीन कौन करेगा? आप तो साजिश करते हुए थकते नहीं हो, आप जमात को तोड़ते हुए थकते नहीं हो. इस मुल्क के किस कोने में आपने जमातों को नहीं तोड़ा? हम किस मुंह से, आप किस मुंह से कहोगे कि झूठ हम बोल रहे हैं? देखिए महाराष्ट्र का हाल, क्या किया आपने शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे साहब की पार्टियों को. देखिए वेस्ट बंगाल का हाल, क्या किया आपने ममता बनर्जी की पार्टी को. देखिए आम आदमी पार्टी हमारे हमसाय में पंजाब में, कितने एमपी लिए आपने वहां से.
7: उमर साहब उन लीडरों में से लीडर नहीं जो झूठ मारते हैं। उमर साहब जो बात कहते हैं पहले उसके पूरा फैक्ट्स तक जाते हैं, फिर उमर साहब बयान देते हैं। अब बीजेपी पे हमने ये सवाल खड़ा किया है तो कहीं ना कहीं कोई सच्चाई तो है। हाँ, अब चोर खुद थोड़ा कहेगा मैं चोरी करता हूँ, तो अब चोर मचाए शोर, बीजेपी का हाल वही है, तो इसलिए अब वो शोर मचा रहे हैं तो मचाने दीजिए। लेकिन इतनी जरूर है कि आज बीजेपी को उमर साहब ने, जम्मू कश्मीर की बीजेपी को उमर साहब ने एक्सपोज कर दिया।
8: आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने एक बेहद ही गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय बयान दिया है, जब उन्होंने बगैर किसी तथ्य के आधार पर यह अनर्गल आरोप लगाने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई ने इस वक्तव्य की तीव्र निंदा करते हुए उनसे सीधे सीधे कहा है कि या तो वो सबूत प्रस्तुत करें अथवा वो माफी मांगे।
9: बहुत ही भ्रमित करने वाला बयान कि उनकी सरकार को गिराने की साजिश हो रही है और 20 करोड़ 30 करोड़ का इल्जाम जो उन्होंने लगाया है ये पूरी तरह से बेबुनियाद है, आधारहीन, तथ्यहीन है, ये मिसलीडिंग है और बेसलेस एलिगेशंस हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो जबरदस्त हंगामा उठा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्रियों के खिलाफ, शायद उस भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने की ये कोशिश है। उमर अब्दुल्ला साहब का ये बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सत्य से बहुत दूर है, भ्रमित करने वाला है।
0: And there's a rift in Punjab Congress that has intensified after the Channi faction met. Channi faction met the Punjab Congress in charge Bhupesh Baghel, demanding removal of the current Punjab LOP Raja Wari. Channi demonstrated his strength at the meeting. 12 MLAs and 82 former candidates were present. Bhupesh Baghel assured that the message would be conveyed to party high command and also told media that there is no one upset and there is no infighting in Punjab Congress. MP Randhawa said that the party must reverse its decision sometimes and they don't want a compromise leader. Raja Waring told the media that he and Randhawa will sort out their problems very soon.
10: Dekho saryan ne apni gal keh li hai aur us gal de vichon Baghel saab ne saryan di gal sun li hai. Dekho hamesha main vi ik state de vich secretary hega, sanu sare hi kehnde aa पर असी अप्रोप्रिएट लैवल ते जाके वो कन्वे करदे कि आ प्रॉब्लम्स हैगी आ, इहदा सोल्यूशन जिहड़ा आ इदां दा सोल्यूशन हैगा, और मेरा ख्याल है कि वो सारियां चीजां जिहड़ियां कन्वे करनगे।
11: हाई कमान का फैसला है, उस पे किसी का एतराज नहीं है, सब हाई कमान के साथ है। कुछ बातें हैं जिसको हमारे साथियों ने रखा और मैंने सभी साथियों से को विश्वास दिलाया, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होने के नाते मैं सभी के हितों का ध्यान रखूंगा। कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि उनके ऊपर किसी बड़े नेता का गौरव नहीं है, लेकिन यदि वो जीतने के लायक है निश्चित रूप से टिकट मिलेगी, ये मैंने विश्वास दिलाया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, कुछ बातें साथियों ने रखी है, उसको मैं हाईकमान तक पहुंचा दूंगा।
12: ये वो अगर आपको ही बता दिए फिर मीटिंग में क्या बोलेंगे? कोई शर्त नहीं है। नहीं, बड़े राजा बड़े प्रेसिडेंट है, उसको आप ही आ जाना चाहिए था। मेरी कोई नाराजगी नहीं है, मैं उसके साथ ही रहा हूँ, तो उसको दिखाना चाहिए कि किसकी नाराजगी
13: है। कौन है कॉम्प्रोमाइज लीडर? उन्होंने नाम लिया?
14: नाम तो नहीं।
13: अगर नाम नहीं लिया तो फिर तुसी ये क्यों कह रहे हो कि कॉम्प्रोमाइज लीडर? तुसी मेरे वाल क्यों इशारा कर रहे हो? दूजी सुखजिंदर सिंह रंधावा बिल्कुल ठीक कह रहे ने, क्योंकि मैं तो सुखजिंदर सिंह रंधावा नाल ते जां ओ मेरे नाल साढ़े चार साल पौने पांच साल इकट्ठे रहे, और जे कोई साढ़े चो कॉम्प्रोमाइज हुंदा तो असी इन्ना चिर इकट्ठे नहीं रह सकते सी जो उन्हां दी उन्हां ने बयान दिते। पर उन्हां दी गल बिल्कुल ठीक है कि कोई भी स्लीपर सैल पार्टी दे विच कॉम्प्रोमाइज लीडर नहीं होना चाहिए।
0: The Twisha death investigation has taken a significant turn. A major breakthrough has emerged in Twisha death case, with AIIMS submitting its final 11-page forensic report to CBI. The report is set to strengthen a crucial piece of evidence in the investigation, a gym belt allegedly linked to Twisha's death. Forensic experts have found that the injury pattern on Twisha's neck matches the belt recovered during the investigation. The report also states that skin tissue matching Twisha was detected on the belt, further reinforcing the evidentiary value. While the findings establish a possible link, the Ames report does not rule out any foul play at this moment. The exact cause and the circumstance of Twisha's death remain under investigation. The DMK has rejected BCK's push for a joint front with TVK against the BJP. The party has made it clear that there is no proposal to join hands with Vijay's TVK at the national level. DMK said BCK should direct the alliance proposal to Vijay, who has been calling DMK his main political rival. The party also continued its attack on Congress, alleging it was betrayed over political interests. DMK said that the Congress failed to act as a true India bloc partner, further highlighting growing differences within opposition. VCK chief has been battling and talking about the fact that perhaps DMK and TVK alliance on the national front is good for the state of Tamil Nadu.
14: Our leaders, look, this problem is between DMK and Congress. Actually, Congress backstabbed DMK just after the defeat. Just for a couple of ministership in the state politics, in the state government, they failed to view it as a national, what to say, point of view, national politics, as India bloc, because they'll be losing if DMK is coming out of India bloc, that will cost them 22 MPs out of this. So VCK is trying to patch it up, but our leaders, I don't think they will go along with the VCK's proposal.
15: Right, he's that may be his view. But where he should say, he is with TVK in the alliance now. He is a man, is a minister. He should talk to Vijay, not to us, or just express the public. He should talk to Vijay. Why should he talk to us? Vijay says that we are his main enemies. When Vijay's stand is that, how can we both be in the same alliance? So he may wish anything. It is Thirumavaram's view. But how is it possible when Vijay's attack is directly against DMK? What can we do?
0: Let's listen in to what VCK chief told Thirumavalavan has said.
16: TVK enna solraga enga kolgai edirindraanga okay DMK enna solraga ivula naala naanga eduthukkom thodandhu edirpunraanga India bloc enna solrudhu avangala edirpadhu dhaan avasiyam illai. அப்போ ஏன் இங்கே ஒரே அணிக்கு வரக்கூடாது? இதுதான் திருமாவளவன் எடுத்து வந்திருக்கேன். என்ன தப்பு இது? கேரளாவில் காங்கிரஸ் இடதுசாரிகளும் பயங்கரமான மோதல். பினராயி விஜயன் ஆர்எஸ்எஸ் காரவனே பேசுறார். ராகுல் காந்தி அங்கே இந்தியா பிளாக்ல கூட்டணியில் மார்க்சிஸ்டும் உட்கார்ந்து காங்கிரஸும் உட்கார்ந்து. மேற்கு வங்கத்தில் மம்தா பானர்ஜிக்கும் காங்கிரசுக்கும் சண்டை. ஆனா இந்தியா பிளாக்ல ரெண்டு பேரும் வந்து ஒன்னா உட்கார்றாங்க. தமிழ்நாட்டில் அப்படி ஒரு அரசியல் நடக்கக்கூடாதா? இதை திருமாவளவன் சொன்னா உங்களால் அதை புரிந்து கொள்ள முடியாதா?
0: Now talking about what has happened so far as the Bengaluru delivery horror story is concerned. A routine parcel delivery turned into a nightmare for a Bengaluru woman after a delivery agent allegedly flushed his private parts inside her home. A Bengaluru woman has alleged that the delivery agent entered her home without permission, claiming he wanted to use the washroom. She accused that he flushed his private parts before leaving. It's a big NDTV impact. The police have arrested the accused and further investigation is underway. The delivery agent is facing three charges under Bharatiya Nyaya Sahita. These include allegations of sexual harassment, insulting and outraging a woman's modesty, unlawfully entering a residence. And the woman has claimed that despite a repeated request and refusal to allow him to enter the house, he entered her premises. The delivery agent allegedly forced his way inside, and moments later, after coming out, he exposed himself to her.
17: मैं नहीं छोड़ूंगी इसको. मैं पक्का पुलिस स्टेशन जाऊंगी और इसके खिलाफ मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी. और फ्लिपकार्ट मिंत्रा रिक्वेस्ट हूँ कि किस टाइप के डिलीवरी बॉय आप लोग हायर करते हो, क्या आप लोग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं करते हो? पैसे लेके पेमेंट कर रही थी, मेरे को बोलता मैम मेरे को वॉशरूम जाना है। मैं बोली नहीं भैया मैं अलाउड नहीं करूँगी, सॉरी। बहुत फोर्स करने लगे, नहीं मैम प्लीज प्लीज प्लीज मेरे को जाना है, बहुत इमरजेंसी, थोड़ा करना और इंग्लिश मिक्स करके बात करनी। मैं बोली नो सर मैं आपको नहीं अलाउ करूंगी, आई एम सॉरी। बहुत फोर्स किया तो बोली नहीं सर मैं अकेले रहती हूँ, मेरे घर में फैमिली भी नहीं है अभी, मैं आपको नहीं अलाउ करूंगी, मैं किसी को नहीं अलाउ करती हूँ, अब इनका सिचुएशन अच्छा नहीं चल रहा, आई एम सॉरी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इतना फोर्स किया मैं नहीं नहीं बोली, उसके बाद मैं दरवाजे के बंद कर रही थी, अंदर शूज निकाल के फोर्सफुली वॉशरूम चले गया, मैं उसको मना नहीं करी, फोर्सफुली चले गया।
0: We'll continue tracking that story and much more on the other side of a quick break.

0: Optics. Arvind Kejriwal today participated in a Sundarkand part in Delhi, but BJP has launched a sharp attack, calling the event a political gimmick. AAP said that the prayers were organized in keeping with the tradition and were meant to seek blessings and as safeguard religion. BJP has alleged that Kejriwal becomes Chunavi Hindu whenever elections approach, claiming that the move is aimed at protecting and projecting AAP as a Hindu favorable party ahead of the UP polls. AAP has hit back, saying party has been organizing Sundarkand part every Tuesday, insisting prayers have nothing to do with elections. Listen in to some reactions on the story.
1: Kejriwal sahab, rajnitik Hindu hain. Aaj unko Bhagwan Ram bhi yaad aa rahe hain. Inhone bhi avsarvadi bhagat bante hue Delhi mein Sundarkand part 2200-2400 jagah pe hoga. हर महीने के पहले मंगलवार में होगा. कब कहा था ये? जब 2024 का चुनाव आने वाला था तो जनवरी 2024 में इन्होंने कहा, और ये कहा था कि हम लंबा चलाएंगे इसको. कितना लंबा चला इसका जवाब भी केजरीवाल साहब दे दें. ये केवल और केवल राजनीतिक हिंदू हैं, बगुला भगत केजरीवाल. इस समय उनको फिर राम याद आया है.
2: अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं, और ये हम पहली बार नहीं बोल रहे. जब जब चुनाव आते हैं, अरविंद केजरीवाल के जो कर्म होते हैं वो प्रूफ कर देते हैं कि वो चुनावी हिंदू हैं. आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और एक कैंपेन चलाने की बात कर रहे हैं कि हम लोग जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसको लेके हम सिग्नेचर कैंपेन करेंगे. ये सब दिखाता है कि चूंकि वहां उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं, इसलिए आज अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा गैंग चुनावी हिंदू बनकर हिंदू बनने का एक सॉन्ग रच रहा है.
3: आप लोगों ने सुंदरकांड का ये जो आयोजन किया है राम मंदिर मुद्दे को उठाते हुए, बीजेपी लगातार बोल रही है कि आप लोग चुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व का लाइन पे काम करना शुरू कर देते हैं. बीजेपी के आरोपों पे क्या आपका जवाब हो?
4: देखिए, कोई चुनाव है ही नहीं. दिल्ली में तो अभी एक साल पहले चुनाव हुआ है. दिल्ली में चार साल बाद चुनाव है, वो कौन से चुनाव की बात कर रहे हैं? और अगर किसी और राज्यों की बात कर रहे हैं तो भारत में तो हर साल कम से कम 4-5 राज्यों में हर साल चुनाव होते हैं. और अरविंद केजरीवाल ने, मुझे लगता है कि भारत में पहली बार ऐसा हुआ, लाखों बुजुर्गों को तीर्थयात्रा पर भेजा. तब कौन से चुनाव थे? क्या भारतीय जनता पार्टी चंदा चोरों के साथ खड़ी है? अगर चंदा चोरों के ऊपर कोई बात हो रही है, उनको फांसी की सज़ा मांगी जा रही है, उन पर कार्रवाई की मांग हो रही है, तो भाजपा के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्या वो चंदा चोरों के साथ खड़े हैं?
5: पहली बार नहीं करा रहे. हम तो हर मंगलवार को पार्टी ऑफिस उत्तरकांड कराते थे. तो अब ये समय आ गया है कि ऐसे राक्षस जो सनातन धर्म का चादर का सनातनी बन रहे थे, उससे हमारा धर्म बचे. आज हम ये पूजा अर्चना भी करेंगे. अब देखिए, अगर ये सनातनी होते तो उनको खुशी होती ना कि भाई सनातन धर्म और फैल रहा है, हर जगह प्रभु का नाम लिया जा रहा है. लेकिन नहीं, वो बिलबिला रहे हैं.
0: जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटिक्स हैज इरप्टेड इनटू अ फ्रेश वॉर ऑफ वर्ड्स. Chief Minister Omar Abdullah has alleged that National Conference MLA from Jammu was offered between 20 to 30 crore to defect. Omar claims the alleged offer also included a cabinet berth and a promise of restoring Jammu and Kashmir statehood if the MLA switched sides. The BJP has strongly denied allegations. BJP leader Ravinder Rena has dismissed the claims as baseless and misleading and challenged Omar Abdullah to make any evidence public.
6: आज ये बीजेपी वाले कहते हैं हम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे. अरे ना, आपकी बात पे यकीन कौन करेगा? आप तो साजिश करते हुए थकते नहीं हो, आप जमात को तोड़ते हुए थकते नहीं हो. इस मुल्क के किस कोने में आपने जमातों को नहीं तोड़ा? हम किस मुंह से, आप किस मुंह से कहोगे कि झूठ हम बोल रहे हैं? देखिए महाराष्ट्र का हाल, क्या किया आपने शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे साहब की पार्टियों को. देखिए वेस्ट बंगाल का हाल, क्या किया आपने ममता बनर्जी की पार्टी को. देखिए आम आदमी पार्टी हमारे हमसाये में पंजाब में, कितने एमपी लिए आपने वहां से.
7: उमर साहब उन लीडरों में से लीडर नहीं जो झूठ मारते हैं। उमर साहब जो बात कहते हैं पहले उसके पूरा फैक्ट्स तक जाते हैं।